एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 26वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 17 जुलाई सन 2026। श्रोताओं, इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 5:56 और ठीक 30 सेकंड हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं को सादर वंदे सुप्रभात।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से रिले हिंदी में समाचार। 6:05 से आप सुन सकते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित चिंतन और भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे और शिलान्यास करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
1: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाएं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वे आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केरलम में 6 पुनर्निर्मित अमृत रेलवे स्टेशनों के साथ देशभर के 75 अन्य अमृत स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। केरलम के इन स्टेशनों से राज्य में रेलवे के बुनियादी ढांचे और यात्रियों की सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होने की संभावना है। इन उन्नत स्टेशनों में आधुनिक प्लेटफॉर्म, बेहतर भवन, आधुनिक प्रतीक्षा कक्ष और यात्रियों के लिए उन्नत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इनका उद्देश्य यात्रियों को अधिक आरामदायक यात्रा का अनुभव प्रदान करना है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक में सदन में अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगा। इस बैठक में एनडीए के विधायी एजेंडे, गठबंधन के सहयोगियों के बीच समन्वय और सत्र के दौरान विपक्ष का सामना करने के लिए एकीकृत रणनीति पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से अधिक परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। उत्तर प्रदेश में आज माय भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया करेंगे। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 से बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।

0: श्रोताओं नमस्कार। चिंतन में आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो है फुटपाथ। फुटपाथ अर्थात सड़क के दोनों किनारों पर पैदल चलने वालों का सुविधाजनक रास्ता। यूं तो हम लगभग हर शहर में कुछ बड़ी सड़कों और महत्वपूर्ण रास्तों पर पैदल चलने वाले आम लोगों के लिए फुटपाथ बने देखते हैं, लेकिन हमारे अपने देश में जहां हम ट्रैफिक नियमों की पालना करने में भी कोताही बरतते हैं, वहां फुटपाथ पर पैदल चलने के बजाय हम सड़क पर चलना अपनी शान समझते हैं। फुटपाथ पर चलने से हम दुर्घटनाओं से बचे रहते हैं, वहीं सड़क पर चलते हुए यदि कोई मामूली टक्कर हमें लग जाए तो हम सामने वाले से लड़ने से भी नहीं चूकते। स्थानीय प्रशासन अपने शहर का सौंदर्यकरण करते समय फुटपाथ की विशेष सजावट करते हैं ताकि शहर सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे। साथ ही फुटपाथ पर छायादार पेड़ भी लगाए जाते हैं जिससे राहगीर को सुकून भरी छाया में दो घड़ी आराम का मौका भी मिले। लेकिन हम जितना सुधार की कोशिश करते हैं उतना ही बिगाड़ने में भी योगदान देते हैं। थड़ी ठेले वाले और अन्य फुटकर व्यवसायी फुटपाथ पर ही अपना व्यापार चलाते हैं जिससे राहगीरों को पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं मिल पाता। इसके अलावा अक्सर अपनी गाड़ी को भी हम फुटपाथ पर ही खड़ी कर देते हैं जो कि गलत है। फुटपाथ दिन में जहां राहगीरों को आरामदायक रास्ता देते हैं वहीं रात होने पर मजदूरों की विश्राम स्थली बन जाते हैं। हालांकि फुटपाथ पर सोना खतरनाक हो सकता है लेकिन फिर भी फुटपाथ लोगों के लिए शरण स्थली के रूप में सामने आते हैं। आइए हम अपने शहर के सौंदर्य को बचाएं और फुटपाथ के माध्यम से पैदल चलने वालों के लिए एक सुगम रास्ता बचा कर रखें।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये अमीर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। लीजिए अब सुनिए अगली भक्ति रचना।

हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 6:30 हुए हैं। प्रस्तुत है सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का।

प्रस्तुत है रामचरितमानस के बालकांड का ये अंतिम प्रकरण, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए श्री राम के यश की कथा कही है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सतीश भाटिया के संगीत निर्देशन में श्री रामचरित मानस गान का आज का प्रसंग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में जानकारी, हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय की। विविध भारती के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कार्यक्रम आप सुन सकते हैं सवेरे 7:30 पर, 10 बजे और दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक।

अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:45 पर आप सुनेंगे हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती की बात। आदिवासी लोक संगीत का प्रसारण समय रहेगा 6:50 पर। कलाकार हैं राधेश्याम और साथी।

7:20 पर प्रसारित होगा वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे विजय सिंह नाहटा से काव्य पाठ। दिल की जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से का प्रसारण समय रहेगा 8:15।

हमारे केंद्र से प्रसारित फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं हमारी प्रातःकालीन सभा में 11:30 पर और सायंकालीन सभा में आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे।

आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार और जिले की चिट्ठी आप सुन सकते हैं शाम 6:30 पर। 6:45 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7:00 आप सुन सकते हैं हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम चौपाल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हमारी सभा में प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। प्रस्तुत है हमारे किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती में बात।

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं आदिवासी लोक संगीत के अंतर्गत राधेश्याम और साथी कलाकारों के गाए लोक भजन।

दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं। दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज़ ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज़ ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: आदिवासी लोक संगीत अब यही संपन्न होता है।

0: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 7:20 हुए हैं। प्रस्तुत है वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम सुनेंगे विजय सिंह नाहटा से काव्य पाठ।
1: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मेरी पहली कविता है गिरती हुई बारिश। गिरती हुई बारिश बादल की कोख से खिरती, बूंद का मिट जाना है। झूमता हुआ पेड़ बीज का धरा को फोड़कर आने का उत्सर्ग है। हैहराता समुद्र, पहले बूंद फिर नदी और अंत में पहचान का मिट जाना है। काठ की नाव में बहता हुआ एक पेड़ अनाम वनस्पतियों और

जंगल का पानी पर मंजिल तक पहुंचना है। जीवन की किताब के खुले जिल्द इसे काल की महीन सुई क्षणांश के धागों से सिलती है। अनादि से कोई मुझ में बहता है और बहता हूँ घटना की उधर से, और यूं प्रशिक्षण किसी वृत्तांत का सदा के लिए अतीत में कवलित हो जाना है। ये महान पृथ्वी मुझे सौंप दी गई उत्तराधिकार में, यहाँ अगणित जन का मिट्टी में मिला हुआ सौष्ठव है। यह महान पृथ्वी मुझे सौंप दी गई उत्तराधिकार में, यहाँ अगणित जन का मिट्टी में मिला हुआ सौष्ठव है। बहुत से अनाम अज्ञात किरदारों के पौरुष से पोषित हूँ मैं, कृतज्ञ तो नहीं पर किस किस का कैसे आभार कहूँ। जब शब्द में अर्थ की दीप्ति नहीं, कुहासे में पथ की प्रतीति नहीं, तब क्या सहसा ये मेरी भाषा का पराजित हो जाना है, तब क्या सहसा ये मेरी भाषा का पराजित हो जाना है। अगली कविता है, इस ढलान पर घाटी के संकरे घुमाव पर यही मिलन का क्षण बिखरा पथ बीन रहा हूँ। एक हो गई छायाओं ने नव के सब शिखरों को, जैसा नव उजास से छुआ दीप्ति की जगमग को, जो काल पटल पर चीन रहा हूँ। यही पुरातन धन्य धाम पावन स्मृति का बेजान खंडहर्षम, मेरा तो तीर्थ यही होगा और होगा यही मुकाम। यही बुझेगी प्यास हृदय की और मुक्ति भी आत्मा की, जब तक होगी तो इस अरण्य में ही तो होगी। जहाँ मिल रहा क्षितिज वहीं पर आच्छादित वृत्तांत समूचा, मेरे मन का ये अतुलित विराट जो इन्हीं झाड़ियों में लिपटा सा, उसे शब्द की मंजूषा में अपलक रहा बटोर। इस ढलान पर घाटी के संकरे घुमाव पर यही मिलन का क्षण बिखरा पथबीन रहा हूँ। अगली कविता है, ऐसे भी जिया जा सकता था जीवन एक महागाथा की तरह, जबकि अंततः ऐसा न हुआ। ऐसे भी जिया जा सकता था जीवन एक महागाथा की तरह, जबकि अंततः ऐसा न हुआ। अर्थहीन भ्रामक मसलों में जकड़कर रह गई तमाम चेष्टाएं, कुछ कुछ ऐसा ही हुआ। गोया कोई लहरों पर अटकेलियां करता रहे था उम्र, समुद्र के असल में छिपे रत्नों की अनदेखी करता। गोया कोई लहरों पर अटकेलियां करता रहे था उम्र, समुद्र के असल में छिपे रत्नों की अनदेखी करता। केवल इसी जीवन में हुआ जा सकता था संबुद्ध, जीवन जगत से ऐन ऊपर उठकर एक अस्तित्व से दूसरे चिर अनस्तित्व में होकर दाखिल पहुंचा जा सकता था शाश्वत निष्कर्ष वाली उच्चतर पवित्र भूमि में। पर हम मुग्ध हुए बाहर फैले अथाह को निहारते, अचंभित एक निष्ठ से आत्मा की पगडंडियों को घूरते रहे अजनबी की तरह। आत्मा की पगडंडियों को घूरते रहे अजनबी की तरह। यह एक खून खराबा था खुद से खुद ही के खिलाफ, यह हमारी मूल्यांकन मेधा का नाकाफीपन था, या फिर रहा होगा प्रज्ञा का बेतुका निवेश। तत्व जो असल था वही प्राप्ति के सबसे करीब था, पर हमने उसे खोया आसान सी शर्तों पर। अगली कविता, घाट का खामोश पत्थर हूँ, यह इस कविता का शीर्षक है। नदी जब से नदी है देखता ही आ रहा जल की हजारों भंगिमाएं, और उसके वेग से जो गूंजता संगीत उसका नाद मुझ में गूंजता है। नदी जब से नदी है देखता ही आ रहा जल की हजारों भंगिमाएं, और उसके वेग से जो गूंजता संगीत उसका नाद मुझ में गूंजता है। रात को जब ठहरती है नदी लहरों पर दमकती ज्योत्सना की, अनगिनत चित्राम मेरी देह पर उत्कीर्ण है गोया। नदी बहती रहे गतिमान है इसी में साधना का फलित जैसे हो गया साकार। जब वह स्पर्श से जल की अजाने रास्तों को नापती है, और उन सुनसान सी वनवादियों से गुजरता है एक जीवन उन विहंगम से पथों की ओर, जिन पर पसरता ही जा रहा है मौन। कोटि सागर जिल मिलाते हैं नदी में, कोटि सागर जिल मिलाते हैं नदी में, और मुझ में जिल मिलाती है नदी। घाट का खामोश पत्थर हूँ, मुझी से बह निकलता है नदी के संग पूरी सभ्यता का दौर। मुझी से बह निकलता है नदी के संग पूरी सभ्यता का दौर। अगली कविता है, जल होना इसलिए नहीं कि वह गंगा जल हुआ और हुआ उसका मोल, जैसे हर विराट झुकता जड़ों की ओर, जल भी बहता अपनी परा में ऐन नीचे उपत्यकाओं में ढूंढ लेता यात्रा पथ। इसलिए नहीं कि वह गंगा जल हुआ और हुआ उसका मोल, जैसे हर विराट झुकता जड़ों की ओर, जल भी बहता अपनी परा में ऐन नीचे उपत्यकाओं में ढूंढ लेता यात्रा पथ।

0: चाहे झील हुआ, हुआ नदी या फिर समंदर, जा बैठा शिव जटा में या देव प्रक्षालन बन धन्य हो गया, चाहे प्यासे के अधर पर गिरा या हरि सीमा में प्रकट हुआ, बस बहते ही जाना है एक अविराम जलधार, अखंड पौरुष है जल होना, बस बहते ही जाना है एक अविराम जलधार, अखंड पौरुष है जल होना, तभी तो हुआ जीवन में अनमोल, तभी तो हुआ जीवन में अनमोल। अगली कविता है मनुष्य धर्म। वो अनगिन हाथ जो उलझे रहे ताउंड ऐसे सारहीन कामों में, जिनका कतई योग न था इस दृश्यमान दुनिया की कतिपय बेहतरी में, मसलन हत्याएं, लूटपाट, आतंक, नरसंहार, ध्वंस विध्वंस आदि इत्यादि, उठो उन हाथों को खींच कर लाओ भीतर तक किसी के दुख में शामिल बनाते, उठो उन हाथों को खींच कर लाओ भीतर तक किसी के दुख में शामिल बनाते, प्रेम में आकंठ डूबी इस पृथ्वी पर और रोप दो उन्हें खेतों की मेड़ पर, रोशनी की तरह एक रक्त बीज, उठो उठो मोड़ दो मुंह प्रचंड धारा का एक नए सपने की दिशा में, उठो उठो मोड़ दो मुंह प्रचंड धारा का एक नए सपने की दिशा में, शायद वक्त के इस मोड़ पर यही होगा तुम्हारा शाश्वत मनुष्य धर्म। अगली कविता है रात गिर रही। रात बाज की तरह झपट कर गिर रही, टूटे सपनों का शिकार साधती, रात बाज की तरह झपट कर गिर रही, टूटे सपनों का शिकार साधती, वह अंतिम व्यक्ति जा रहा लकड़ी के गट्ठर सर पर उठाए दुनिया के सारे वैभव को ठेंगा दिखाता, वह अंतिम व्यक्ति जा रहा लकड़ी के गट्ठर सर पर उठाए दुनिया के सारे वैभव को ठेंगा दिखाता, बस्ती के उदास चूल्हे अंगड़ाई ले रहे, भूखे बच्चों की पसलियों में तैर रहे अवसाद को कलात्मक बनाने वाला कोई सौंदर्य शास्त्र नहीं, विलाप को शब्द में जन्मने भाषा का गर्भाशय बांध है, वह व्यक्ति उदास की अंतिम चिंगारी बन आ रहा ऊंची प्राचीरों से घिरी दुनिया को, जिसे किरणों के प्रहार से तोड़कर होना है दाखिल, जहां तमाम संबोधन मूक है, सारे विकल्प जंग खाए ताले से लटक रहे हवा में सनसनी की तरह, महज संघर्ष की उष्मा से औतक क्रोध में घूमता, तमाम चक्रव्यूह को भेदता, नए सपने की आदमकद शक्ल में जन्मना है जिसे पीर की किसी कोख में, और एक अप्रत्याशित संभावना सा कविता में उसी तरह है खिलना, जैसे यकायक किसी सुबह चट्टान को फोड़ बाहर निकल आता पीपल, जैसे यकायक किसी सुबह चट्टान को फोड़ बाहर निकल आता पीपल। अगली कविता है रोके न रुकेगा। देखो बाहर सनसनी है, एक गिरती हुई पत्ती की खड़खड़ाहट सुनती है साफ, इसे महसूस करो, बर्फ गिर रही रात से कहीं कोई शोर गूंजता, बज उठा तूर्य, कुछ लोग आ रहे जुलूस की शक्ल में लामबंद, कहीं हो रहा सड़क पर लयबद्ध मार्च पास, इसे उत्सव की तरह होने दो, कुछ लोग झंझोड़ देना चाहते युगों से जमी उदासी को, हवा में गूंजती जयत ध्वनियां इतिहास के इस क्षण भविष्य की पुख्ता नींव रखने को आतुर, देखो कुछ लोग चाहते बदलना जड़ों से क्षितिज तक, इस विचार को श्वास की तरह आवाजाही करने दो, जैसे कि हम रीते हैं उतने लय हुए जाय के तराजू पर कसौटियों पर कसे जाकर पाक साफ, आधे अधूरे जितने भी हुए अंततः भरपूर न हुए सत्य के पैमानों पर, इस निर्वाक को अनुताप से भरने दो, देखो कुछ सपने कसमसा कर फूट रहे आत्मा की भूमि से, देखो इस पल को पूरी आभा में निहारो, सूरज को देखो जैसे कि रोके न रुकेगा युग के रथ का पहिया, किसी जड़वत चट्टान से खिसककर लुढ़क आएगा बदलाव का पत्थर धरी पत्तों सा, और छा जाएगा डांप ही लेगा उबड़ खाबड़ वन प्रांतर, वही वही सबसे ज्वलंत होगा एक वृत्तांत, उस पर खुदे होंगे बसंत और पतझड़ के कालजयी आख्यान, वही वही सबसे ज्वलंत होगा एक वृत्तांत, उस पर खुदे होंगे बसंत और पतझड़ के कालजयी आख्यान।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे वातायन के अंतर्गत विजय सिंह नाहटा से काव्य पाठ। ये कार्यक्रम अभी ही संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। 7:30 और वक्त हो चला है विविध भारती के कार्यक्रमों का।

0: हम हैं राही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी को सविता सिंह का नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं घरौंदा फिल्म के इस गाने से।
1: एक दीवाना शहर में,
2: एक दीवाना नहीं एक दीवानी भी।
1: दो दीवाने शहर में।

घरांदा फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आवाजें रूना लैला और भूपेंद्र की थी, गुलजार के बोल थे जयदेव का संगीत। हमें राय प्यार के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं चितचोर फिल्म का।

हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। चितचोर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे यसुदास और हेमलता की आवाजों में। रविन्द्र जैन थे गीतकार और संगीतकार। आज अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की शुभ और मंगल कामनाएं सुनते हैं।

0: गोपाल कृष्ण फिल्म का ये गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें यशुदास और हेमलता की थी, गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: नसीर तो ज्यादा माना स्मार्ट बंदा, कुछ थोड़ा सा रोबीला, और फारूक तो बहुत नेक बंदा, बड़ा प्यारा शरीफ। तो मैंने स्क्रिप्ट दोनों को पढ़ने दिया। नसीर ने कहा वो ये तो मैं हूँ ना बासु, और फारूक ने कहा वो तो ऑब्वियसली

0: राजा राम मैं हूँ। मैंने कहा ना, तुम लोग क्या चाहते हो आखिर? तुम्हें कोई चैलेंज नहीं चाहिए? वही घिसा पिटा रोल करने में क्या मजा है? हाँ, वही करते रहोगे।
1: इस जुलाई विविध भारती पर आ रहा है कौन?
2: कौन लाया? कौन लाया?
3: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
4: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
3: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सितारा फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी लता मंगेशकर और भूपिंदर सिंह के, गीतकार थे गुलजार और संगीतकार आरटी बर्मन। हम हैं राही प्यार के। अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 8 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले समाचार प्रभात। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

0: तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस प्रोजेक्ट के साथ भारत ने एक नया वैश्विक कीर्तिमान स्थापित किया है और उन कई देशों से आगे निकल गया है जो अभी इस तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं। जहां जर्मनी और चीन जैसे देश आमतौर पर 2 या 3 कोच वाली छोटी हाइड्रोजन

0: ट्रेन चलाते हैं, वहीं भारत ने 10 कोच वाली ट्रेन विकसित की है। इस ट्रेन की क्षमता लगभग 2600 यात्रियों को ले जाने की है, जो दुनिया भर की अन्य हाइड्रोजन ट्रेनों की तुलना में सबसे ज्यादा है। 3200 हॉर्स पावर की क्षमता के साथ यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करके ट्रेन को आगे बढ़ाती है। इस प्रक्रिया में केवल जल वाष्प उप उत्पाद के रूप में उत्पन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रेल संचालन के दौरान कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, जींद।
1: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। जींद के बाद वे चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने के बाद SCS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहेब और श्री अनंतपुर साहेब रेलवे स्टेशनों सहित 20 राज्यों के 74 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का जलंधर से ही वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। इन स्टेशनों का पुनर्निर्माण दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन पुनर्विकास प्रोग्राम में से एक अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत किया गया है। वह जलंधर कैंट रेलवे स्टेशन से संत रविदास एक्सप्रेस ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। यह भारत के दो सबसे पवित्र आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्रों अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली डायरेक्ट रेलगाड़ी है, जो हफ्ते में 3 बार चलेगी। प्रधानमंत्री नंगल डैम तलवाड़ा मुकेरिया नई रेल लाइन प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर दौलतपुर चौक करतौली नई रेल लाइन का भी उद्घाटन करेंगे और करतौली अम्बाला ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वे आज तीनों राज्यों के लोगों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने को लेकर उत्साहित हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं का लोगों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इनका सबसे अधिक लाभ देश की युवा शक्ति को मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। इनमें केरल के 6 रेलवे स्टेशन शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी तो परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने स्टार्टअप नीति और इसके कार्यान्वयन के लिए नीतिगत ढांचे को मंजूरी दे दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस नीति के तहत नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा।
4: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक

0: स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे, साझेदारियां विकसित करेंगे और युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रेरित करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में लागू की जाएगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुश्त वित्तीय सहायता भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। दीपेंद्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी का परिणाम घोषित कर दिया है। 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर उपलब्ध हैं। एजेंसी ने कहा है कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष भारत के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में स्थित 5,440 केंद्रों पर लगभग 20 लाख उम्मीदवारों ने पुनर्परीक्षा दी थी। गुजरात आतंकरोधी दस्ते एटीएस ने प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक कथित आतंकी मॉड्यूल की जांच के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार इन आरोपियों को पाटन जिले के खड़ियाल गांव से गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के नाम इस महीने की शुरूआत में गिरफ्तार किए गए जैश ए मोहम्मद के 8 कथित सदस्यों से पूछताछ के दौरान सामने आए थे। जिला न्यायालय ने सभी आरोपियों को 24 जुलाई तक एटीएस की हिरासत में भेज दिया है। गृहमंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, शासन, कानून व्यवस्था और विकास से संबंधित कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। श्री शाह कल सिलीगुड़ी में जुमाकांच सीमा चौकी का दौरा करेंगे और 18वीं बटालियन सीमा चौकी पर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गृहमंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा संबंधी मुद्दों पर एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके बाद अगले 2 दिन चिंतन शिविर का आयोजन होगा। इसका आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय कर रहा है। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया करेंगे। केरलम में आज से रमाण मास का शुभारंभ हुआ। केरलम में मलयालम पंचांग के कंगंडम महीने को रमाण मास के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान श्रद्धालु आध्यात्मिक शक्ति और मानसिक शांति के लिए रमाण का पाठ करते हैं। आज से करगिंडम महीने की शुरुआत हो गई है। इसके साथ ही आज से राज्य के अनेक घरों और मंदिरों में प्रतिदिन रमाण पाठ होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बात की और उनके और पिता अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कतर के अमीर की अमर विरासत दोनों देशों को उनकी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने में मार्गदर्शन करती रहेगी। उन्होंने भारत और कतर में भारतीय समुदाय के प्रति स्नेह और भारत कतर संबंधों के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता को भी याद किया। ब्रिटेन के ब्रैडफोर्ड में पाकिस्तानी वाणिज्य दूतावास के बाहर कश्मीरी प्रवासियों ने पाकिस्तान के विरोध प्रदर्शन किया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में दमन की ओर ध्यान देने की अपील की। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सुरक्षा बलों ने लोगों की हत्या, जबरन हिरासत, घरों पर छापेमारी और आम नागरिकों, महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा की है। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने वामपंथी चरमपंथी आतंकवादियों को देश में प्रवेश करने से रोकने के लिए नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि यह नीति ऐसे तत्वों को रोकने के लिए है जो हिंसक गतिविधियों के जरिए लोगों की सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और राजनीतिक प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल देखने के लिए रविवार को न्यूयॉर्क न्यू जर्सी स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फाइनल मुकाबला मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जाएगा। फुटबॉल विश्व कप संयुक्त रूप से राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया और न्यू जर्सी में होने वाले फाइनल के साथ इसका समापन होगा। फुटबॉल में भारत की महिला टीम को एएफसी अंडर 17 अगले वर्ष होने वाले एशियन कप क्वालिफायर के ग्रुप ई में मलेशिया, सीरिया और इराक के साथ रखा गया है। भारत लगातार दूसरी बार महिला एशियन कप के लिए क्वालिफाई करने की कोशिश करेगा। इंग्लैंड

0: दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पूरी टीम 44 ओवर में 233 रन पर सिमट गई। जवाब में इंग्लैंड ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। श्रृंखला का अंतिम मैच रविवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
1: धन्यवाद फरहत। नीट पेपर लीक के बाद अभूतपूर्व सुरक्षा के बीच आयोजित नीट यूजी 2026 का परिणाम घोषित होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है नीट यूजी का परिणाम जारी, सफल होने वालों में 58% छात्राएं। अमर उजाला के शब्द हैं पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पंशुल अव्वल, 19 बच्चों को 700 से अधिक अंक। अमरीका और ईरान के बीच ताजा सैन्य संघर्ष को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठाया। जनसत्ता ने इस खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है होर्मुज पर जहाजों में भारतीय नागरिकों की तैनाती पर रोक, नौवहन प्रशासन महानिदेशालय का निर्देश। पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा में भगदड़, 1 श्रद्धालु की मौत, लोकसत्य की सुर्खी है। पत्र लिखता है खराब मौसम और बारिश के बाद उमड़ी 10 लाख की भीड़। राजधानी में 16 साल के बाद सबसे लंबा मानसून ब्रेक। दिल्ली में अगले 4-5 दिन और अच्छी बारिश होने की उम्मीद बेहद कम, हिंदुस्तान की सुर्खी है। दैनिक भास्कर ने अनुमान शीर्षक से खबर दी है दो नए सिस्टम से रफ्तार पकड़ेगा मानसून, 20 से उत्तर और मध्य भारत में तेज बारिश, 40 से अधिक देशों के साथ साझा समुद्री अभ्यास, 20 जुलाई से होगा, नवभारत टाइम्स की खबर है। पत्र लिखता है कोच्चि स्थित सदर्न नेवल कमांड में होगी ऑपरेशन की शुरुआत। लोकसत्य ने साइबर अपराध पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, शीर्षक दिया है डिजिटल भारत पर साइबर अपराध का साया। पत्र लिखता है साइबर अपराध की सबसे चिंताजनक बात है कि इसकी कोई भौगोलिक सीमा नहीं होती, दुनिया के कई देशों में बैठे अपराधी भारत के नागरिकों को अपना निशाना बना रहे हैं, ऐसे में सभी को सावधान रहना जरूरी है।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 400 करोड़ रुपए के स्टार्टअप और इसके नीतिगत ढांचे को मंजूरी दी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट यूजी पुनर्परीक्षा के परिणाम घोषित किए। गुजरात आतंकरोधी दस्ते ने आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े 5 लोगों को पाटन जिले से गिरफ्तार किया। और क्रिकेट में इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 8:15 हुए हैं। लीजिए सुनिए दिल के जज्बातों पर आधारित कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मीनाक्षी उपाध्याय का शुभेच्छा भरा नमस्कार। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। जी हाँ श्रोताओं, वक्त गुजर जाता है मगर कुछ लम्हे अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं, कुछ चेहरे दूर हो जाते हैं मगर दिल के आईने में हमेशा मुस्कुराते हैं। जिंदगी एक लंबा सफर है और इस सफर में न जाने कितने लोग मिलते हैं, कितने ही बिछड़ जाते हैं। कुछ आवाजें खामोश हो जाती हैं, कुछ कदम थम जाते हैं मगर यादों का सिलसिला अनवरत चलता रहता है। यादें चुपचाप हमारे दिल की गलियों से गुजरती रहती हैं। कुछ रिश्ते साथ चलकर भी बिछड़ जाते हैं, कुछ लोग दूर होकर भी दिल में बस जाते हैं। फासले जिस मोहब्बत को मिटा न सके उसे ही

यादें कभी होठों को मुस्कान दे जाती है तो कभी आंखों को नम कर जाती है। बचपन की निश्चल हंसी, माँ की ममता, पिता का स्नेह, दोस्तों के साथ बिताए अनगिनत पल, स्कूल की शरारतें, ये सब मिलकर यादों का ऐसा कारवा बनाते हैं जो उम्र भर के उम्र के हर मोड़ पर हमारे साथ चलते हैं। गुजर जाते हैं खूबसूरत लम्हे मुसाफिरों की तरह, यादें वही खड़ी रह जाती है रुके रास्तों की तरह। एक उम्र के बाद उस उम्र की यादें रह जाती हैं, लेकिन वो उम्र फिर उम्र भर नहीं आती।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: वाह जी राम जी, वाह जी राम जी।
2: श्रोताओं, यादों का काफिला उम्र के हर पड़ाव पर हमारा हम सफर बनकर चलता है। कभी किसी पुराने गीत की धुन, पुराने खतों की हल्की सी खुशबू, किसी राह का मोड़ या किसी शहर की हवा, अचानक यादों की बारात हमारे सामने ले आती है और फिर लगता है जैसे बीता हुआ कल आज की दहलीज पर आकर बैठ गया। यादों की किताब का हर पन्ना बोलता है, बीता हुआ हर लम्हा आज भी दिल टटोलता है। जो बिछड़ गए वे कहां बिछड़ पाए हैं, यादों के शहर में आज भी उनके दीप जलते हैं।

श्रोताओं, यादों का कोई मौसम नहीं होता, फिर भी हर मौसम में चली आती है। कभी बारिश की बूंदों में घुल जाती है तो कभी ठंडी हवाओं संग गुनगुनाती है। समय आगे बढ़ता रहता है, कैलेंडर बदलते रहते हैं, लेकिन दिल की किताब में कुछ पन्ने कभी पुराने नहीं होते। वे हर बार नए से लगते हैं, जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें प्यार से पलटा हो। वक्त की शाखों पर यादों के घने साए हैं, खामोश निगाहें दिल में गहरे सवाल साए में ठहरे हैं, कई अनकहे हाल। ये मंजर, ये लम्हे कुछ याद दिलाते हैं जिंदगी।

श्रोताओं, यादें टूटे हुए हौसलों को फिर से जोड़ती है और ये एहसास दिलाती है कि जो पल सच्चे मन से जिए गए हैं वे कभी नहीं खोते, वे बस स्मृतियों की रोशनी बनकर जीवन को आलोकित करते हैं। तो श्रोताओं, आज अपने दिल की उस खिड़की को थोड़ा सा खोलिए जहां यादों का कारवां आज भी दस्तक दे रहा है। उन लम्हों को महसूस कीजिए जिन्होंने हमें गढ़ा है, सवारा है और जीवन को नया अर्थ दिया है। वक्त की धूप हो या तेज हो आंधिया, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं मिटते। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है।

यादों का काफिला कभी नहीं रुकता, वह हर धड़कन के साथ चलता है और हर सांस से यही कहता है, जिंदगी गुजर जाती है पर यादें हमेशा हमारे साथ रहती है। इसी खूबसूरत एहसास के साथ मीनाक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कुछ दिल से, आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। लीजिए सुनिए राजस्थानी लोक संगीत।

सीमा मिश्रा और साथी कलाकारों के गाए इस गीत के साथ ही राजस्थानी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले हिंदी में प्रादेशिक समाचार। समाचारों के लिए कृपया कुछ पल प्रतीक्षा कीजिए।

प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। विदेश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे, इनमें राज्य के 8 स्टेशन शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले एक माह में करीब 2 लाख लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी। ये हाइड्रोजन फ्यूल से संचालित होगी। इस तकनीक में हाइड्रोजन को बिजली में बदला जाता है। इसके संचालन में कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। ये रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में ही डिजाइन और एकीकृत की गई ये रेलगाड़ी स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित की गई है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग ने देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसके साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां परिचालन में हैं। इनमें जर्मनी, जापान, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी आज ही पंजाब के जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन से देशभर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे।

0: भारत स्टेशन योजना के तहत इनका आधुनिकीकरण किया गया है। इनमें प्रदेश के 8 स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर होने वाले समारोह में केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहेंगे। इस योजना के तहत बाड़मेर रेलवे स्टेशन को लगभग 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया गया है। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: रेलवे स्टेशन का यह कायाकल्प भारतीय रेल की आधुनिक, सुरक्षित, पर्यावरण अनुकूल और यात्री केंद्रित रेलवे प्रणाली के विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह क्षेत्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त बनाने के अलावा भारत के पर्यटन मानचित्र पर थार नगरी की पहचान को और अधिक प्रभावी बनाएगा। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित यह रेलवे स्टेशन मरुस्थलीय इलाके में सामाजिक और आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार शहीद परिवारों, पूर्व सैनिकों और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। उन्होंने ये बात जयपुर में सैनिक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में कही। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सैनिकों और उनके परिजनों से जुड़े मामलों का संवेदनशीलता के साथ निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने भारतीय सेना की वीर गाथाओं और शौर्य के प्रतीकों से आमजन को परिचित कराने की योजना बनाने को कहा। साथ ही प्रदेश भर में शहीद स्मारकों के रखरखाव और उनके एक रूपीय मॉडल विकसित करने के निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मॉनसून तैयारियों की समीक्षा बैठक भी ली। उन्होंने नालों की समय पर सफाई, जल निकासी की समुचित व्यवस्था और बारिश के बाद टूटी सड़कों की जल्द मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में सभी गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों की सघन स्क्रीनिंग के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। 5 दिन के इस अभियान में गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच की जा रही है। वहीं ज्यादा जोखिम वाली गर्भावस्था के लिए अलग से ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। इस बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC ने सरकारी अस्पतालों में ऑपरेशन के बाद 8 महिलाओं और एक नाबालिग की मौत के मामले में राज्य के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। मीडिया रिपोर्ट का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। NHRC ने बताया कि मृतकों में 5 महिलाओं की मृत्यु भीलवाड़ा जिले के महात्मा गांधी अस्पताल में हुई, जबकि 3 महिलाओं और एक नाबालिग की मृत्यु बांसवाड़ा जिला अस्पताल में हुई। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। इसमें 11 लाख से ज्यादा परीक्षार्थी मेडिकल, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए उत्तीर्ण हुए हैं। सभी उम्मीदवारों के अंक NTA की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। NTA ने कहा कि परिणाम समय पर घोषित किए गए हैं ताकि उम्मीदवारों के लिए प्रवेश और काउंसलिंग कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता रहे। इस वर्ष पंजाब के आर्यन गुप्ता और हरियाणा के पांशुल बंसल ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर अखिल भारतीय स्तर पर संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया है। राजस्थान के 5 विद्यार्थियों ने भी शीर्ष 20 रैंक में जगह बनाई है। गौरतलब है कि 3 मई को आयोजित नीट UG परीक्षा पेपर लीक के कारण निरस्त कर दी गई थी। इसके बाद 21 जून को देश विदेश के 551 शहरों में 5,440 केंद्रों पर 13 भाषाओं में पुनः परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रदेश भर में आयोजित ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों के लंबे समय से लंबित कार्यों का निस्तारण किया गया। राज्य सरकार के अनुसार 12 जून से 15 जुलाई तक 18,953 सेवा शिविर लगाए गए। इनमें लगभग 10,500 ग्रामीण और 8,000 से अधिक शहरी शिविर शामिल हैं। ग्रामीण शिविरों में 1,90,000 से ज्यादा नामांतरण और 1,00,000 से अधिक पट्टों का वितरण किया गया। लगभग 17,500 रास्तों के प्रकरण सुलझाए गए। शहरी शिविरों में 42,252 पट्टे जारी किए गए। 13,000 से ज्यादा नामांतरण के मामलों का निस्तारण हुआ। शिविरों में कई अन्य

0: सरकारी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई। झालावाड़ में राजसखी मार्ट और कैफे शुरू किया गया है। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने इसका शुभारंभ किया। उन्होंने स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि ये कैफे केवल उत्पादों की बिक्री का केंद्र नहीं बल्कि ग्रामीण महिलाओं के हुनर, मेहनत और आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच है।
1: इस पूरे कैफे को और इस डिपार्टमेंटल स्टार को हमारी जो राजीव गांधी जो महिलाएं हैं वही संचालित करेंगी। सेल्समैन से लगा करके, कुक से लगा करके और रिसेप्शनिस्ट तक सारा का सारा ये कैफे राज सखी के नाम से जाना जाएगा और जो हमारी राजीव गांधी महिलाएं हैं वो इसे संचालित करेंगी। यहां पर जो राजीव गांधी महिलाएं हैं उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों का विपणन भी होगा, उनका एक तरह से शोकेसिंग भी होगी और जो भी आसपास जो यहाँ झालरापाटन में पर्यटक आते हैं उनको एक स्तरीय कैफे यहाँ मिलेगा।
0: राजस्थान पीसीपीएनडीटी टीम ने हरियाणा के डबवाली में डिकॉय ऑपरेशन कर भ्रूण लिंग परीक्षण से जुड़े एक दलाल को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन अकड़ तोड़ के तहत की गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर जोगाराम ने बताया कि आरोपित लंबे समय से राजस्थान और हरियाणा के सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय था। वो गर्भवती महिलाओं को हरियाणा ले जाकर अवैध भ्रूण लिंग परीक्षण कराने का काम करता था। टीम ने डिकॉय ग्राहक के जरिए उसे रंगे हाथों पकड़ा। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा है कि राजस्थान विधानसभा के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित विधायी गौरव यात्रा तथा पूर्व और वर्तमान विधायकों के ऐतिहासिक समागम की देश भर में सराहना हो रही है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के लिए उन्हें विभिन्न राजनीतिक दलों के वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधियों सहित अनेक गणमान्य लोगों के बधाई संदेश प्राप्त हुए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। देश भर के 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे। इनमें राज्य के 8 स्टेशन भी शामिल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, राज्य सरकार शहीद परिवार, पूर्व सैनिक और सेवारत सैनिकों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है। एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम घोषित किया। राजस्थान के 5 विद्यार्थी शीर्ष 20 में शामिल और राज्य में लगाए गए ग्रामीण सेवा शिविरों में पिछले माह में करीब 2 लाख लंबित प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। 9:10 हुए हैं। लीजिए सुनिए सुगम संगीत।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस दिए, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूँ विमलेश।
0: और मैं हूँ अजीत। नमस्कार, आइए सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में हमेशा ऐसी संगति चुननी चाहिए जो हमें ऊंचाइयों की ओर ले जाए और हमारी सोच को सकारात्मक बनाए। अच्छे लोग वही हैं जिनकी उपस्थिति से हमारे भीतर का श्रेष्ठ गुण प्रकट हो सकता है और जो हमें हर दिन और बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो सबसे पहला संदेश हमें मिला है भदोही उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार विद्यार्थी और उनकी छोटी बहन कोमल का।
2: शंकर प्रसाद खूंटे जी लिखते हैं, मैं दृष्टिबाधित हूं और बीएड स्पेशल एजुकेशन की पढ़ाई कर रहा हूं। मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद शंकर प्रसाद खूंटे जी। और अगला संदेश हमें मिला है गांव फरासी जिला हिसार से राजकुमार डूडी जी का।
2: गांव खिंदासर तहसील कोरायत जिला बीकानेर राजस्थान से कानाराम चौहान जी।
0: और शोभा राणे जी लिखते हैं ठाणे महाराष्ट्र से।
2: गांव ढोडरी घोटिया जिला मोहला मानपुर छत्तीसगढ़ से महेश कुमार निषाद, रम्मा रानी निषाद, निखिल कुमार निषाद और नैतिक कुमार निषाद।
0: आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर संदेशों।

0: के लिए तो प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। श्रोताओ एक बार फिर से हम प्रस्तुत हैं नई और रोचक जानकारियों के साथ।
1: श्रोताओ हम चर्चा कर रहे हैं पुस्तकों के क्रमिक उद्भव और विकास की। आज हम चर्चा करेंगे मुद्रण से आधुनिक पुस्तकों तक की यात्रा पर। श्रोताओ जिस आधुनिक पुस्तक को हम हाथ में लेकर आज पढ़ते हैं उसके पीछे लगभग 600 वर्षों का इतिहास है। हमने अब तक सुना कि मुद्रण कला के आने से पहले पुस्तकें हाथों से लिखी जाती थी। भारत में ताड़पत्र, भोजपत्र और बाद में कागज पर ग्रंथ और साहित्य लिखा जाता था।
0: जी हाँ श्रोताओ, यूरोप में चर्म पत्रों और कागज पर लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे मानव सभ्यता मुद्रण की ओर बढ़ने लगी। चीन में लगभग 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच लकड़ी के ब्लॉक्स बनाए जा चुके थे जिन पर अक्षरों को उकेर कर और उसमें स्याही लगाकर पूरे पृष्ठ की छपाई की जाती थी।
1: ये तकनीक हस्तलिखित तकनीक से कहीं अधिक तेज और सुविधापूर्ण थी। 11वीं शताब्दी में चीन में धातुओं या लकड़ी से अलग अलग अक्षरों को बनाया जाने लगा और उनसे शब्द और वाक्य बनाए जाने लगे। ये आधुनिक मुद्रण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
0: जी श्रोताओ, 15वीं शताब्दी को मुद्रण की दिशा में एक मील का पत्थर माना जाता है जब जर्मनी के ग्यूटेनबर्ग ने 1450 में छापने की मशीन का आविष्कार किया।
1: जी,
0: इसके द्वारा एक ही पुस्तक की सैकड़ों प्रतियां तैयार हो सकती थीं।
1: गुटेनबर्ग ने एक धातु का फार्मा बनाया जिसमें चल अक्षर थे। चल अक्षरों का अर्थ है उनके फार्मे में अक्षरों को वाक्यों के रूप में सजाया जाता था और उनमें स्याही पोतकर कागज पर छापा जाता था। छपाई के बाद उन्हीं धातु के अक्षरों को फिर से नए वाक्यों के अनुसार संयोजित कर लिया जाता था।
0: जी श्रोताओ, गुटेनबर्ग की मशीन से छपने वाली पहली पुस्तक बाइबल थी जिसे गुटेनबर्ग बाइबल कहा जाता है। यही तकनीक आधुनिक मुद्रण कला की नींव बनी।
1: इसके बाद हम सभी जानते हैं कि मानव सभ्यता ने एक शानदार मुद्रण तकनीक को देखा। अब डिजिटल मुद्रण का युग है जिससे कुछ ही समय में हजारों लाखों पृष्ठ छापे जा सकते हैं। इसके बाद आया ई बुक का जमाना जिसमें हम रह रहे हैं। पहले पुस्तकों को रखने के लिए विशाल पुस्तकालय हुआ करते थे, लेकिन अब हजारों पुस्तकें एक छोटे से डिवाइस में ही रखी जा सकती हैं।
0: जी तो श्रोताओ, कहा जा सकता है कि मिट्टी की पुस्तकों से पेपिरस तक, भोज और ताड़ पत्रों से होते हुए चर्म पत्रों तक, वहां से गुटेनबर्ग के छापे खाने और फिर डिजिटल पुस्तकों तक की पुस्तकों की यात्रा सच में अनूठी है।
1: जी बिल्कुल, सच में अनूठी है। तो श्रोताओ कैसी लगी आपको ये जानकारी जरूर बताइएगा। और अब सुनते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: गुटेनबर्ग ने छापने की मशीन का आविष्कार कब किया?
0: आप हमारे प्रश्न का उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर भेज सकते हैं।
1: फेसबुक, इंस्टा, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं सबसे पहले कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से बताया गया है कि हिमालय पर्वत की उत्पत्ति किन भौगोलिक कारणों से हुई और इसे मूड़दार पर्वत श्रृंखला क्यों कहते हैं।
2: साथियों नमस्कार, आइए करते हैं शुरुआत हिंदी के प्रख्यात कवि
3: विनोद कुमार शुक्ल जी की सुंदर कविता से।
2: उच्च हिमालय पर्वतराज, खड़ा पहनकर हिम का ताज,
3: ऊंचा मस्तक रख दिन रात, आसमान से करता बात।
2: हिमालय हमारा गौरव है, ऋषि मुनियों की तपोभूमि होने के कारण इसे देव भूमि भी कहा जाता है। यहाँ अनेक मठों और मंदिरों का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में भारत की आत्मा और गौरव का प्रतीक है। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये जिज्ञासा उठी कि आखिर कैसे बना हिमालय?
3: तो आइए सुनते हैं एक नाटक,
2: कैसे बना हिमालय।
3: आज रिद्धि,
2: नव्या
3: और रिदित
2: सब बहुत खुश है
3: क्योंकि उनका परिवार
2: हिमालय क्षेत्र के भ्रमण पर दार्जिलिंग जो जा रहा है।
4: चलो चलो, दार्जिलिंग चलना है, बड़ा मजा आएगा, मैं तो खूब एंजॉय करूंगी।
5: मैंने सुना है बहुत सुंदर जगह है।
4: मुझे बहुत इच्छा थी इस टूर पर जाने की।
5: कितना अच्छा लगेगा जब हम हिमालय की गोद में कुछ दिन बिताएंगे,
4: पहाड़ों पर भी चढ़ेंगे, बड़ा मजा आएगा। अरे अरे जल्दी से चलो, पैकिंग भी तो करनी है,
5: बहुत मजा आएगा।
3: जहाँ वे रुके हुए थे वहाँ से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी
2: माउंट एवरेस्ट

0: ड्रेस साफ साफ दिखाई पड़ रही थी।
1: वे सुंदर दृश्य का आनंद उठा ही रहे थे
0: कि उनके कमरे के बगल में ठहरे हुए
1: डॉक्टर आदित्य भी वहाँ गए।
0: बातचीत होने लगी। जब सबने अपना परिचय दे ही दिया तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर आदित्य जाने माने भूगर्भ शास्त्री है और अपने शोध कार्य के लिए यहाँ आए हुए हैं। चर्चा होने लगी। बस तो रिद्धि ने प्रश्न पूछ ही लिया।
2: सर, हमें कक्षा में टीचर बता रही थी कि हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, क्या पर्वतों का भी निर्माण होता है?
1: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने। भाई ये सच है कि पर्वतों का भी निर्माण होता है। तो सुनो, बहुत समय पहले की बात है, करीब 20 करोड़ साल पहले की बात है।
2: क्या 20 करोड़ साल?
1: तब हमारी धरती नई नई थी। तब हमारे महाद्वीप आज की तरह अलग अलग नहीं थे। सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी।
2: सारी धरती एक साथ जुड़ी हुई थी मतलब?
1: नव्या, अब ही थोड़ा सा धीरज तो रखो। अब बताता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बताओ कि हमारी पृथ्वी पर कितने महादेश हैं? विद्युत तुम बताओ।
3: ये तो बहुत आसान है। एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका।
2: रुको, मैं बताती हूँ।
1: तुम बताओ।
2: अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी तो है। ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया भी तो कहते हैं।
1: बिल्कुल सही रिद्धि। उस समय हमारी पृथ्वी पर एक शांत और विशाल महासागर था और महासागर का नाम था टैथिस महासागर। क्या नाम था?
2: टैथिस महासागर।
1: वाह,
2: ये जानना तो बहुत ही रोचक है। फिर क्या हुआ सर?
1: फिर हुआ ये कि पृथ्वी की आंतरिक गतिविधियों के कारण ये जुड़े हुए भूखंड धीरे धीरे एक दूसरे से अलग होकर खिसकने लगे।
2: अलग होकर खिसकने लगे?
1: अरे एक दूसरे से दूर होने लगे, कुछ एक दूसरे के पास भी आने लगे।
2: सर फिर तो वे बहुत तेज गति से खिसक रहे होंगे।
1: अरे नहीं नव्या, हर साल लगभग 3-4 सेंटीमीटर बस।
3: लेकिन सर हम तो बात कर रहे थे कि हिमालय कैसे बना।
2: सर ये बताइए ना, हिमालय कैसे बना?
1: बेटा मैं उसी विषय पर आ रहा हूँ। अच्छा अब आगे सुनो। उन दिनों हमारा भारत गोंडवाना नामक एक बहुत बड़े भूभाग का हिस्सा था, जहाँ उसका पड़ोसी अफ्रीका था। हजारों साल इसी तरह से निकल गए। समय के साथ साथ भूमि दो हिस्सों में बट गई। दोनों हिस्से एक दूसरे से दूर हो गए। वे दो हिस्से थे, लॉरेशिया यानी यूरेशियन प्लेट और गोंडवाना यानी इंडियन प्लेट।
3: यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट?
2: सर आप तो टैथिस सागर के बारे में भी तो बता रहे थे।
1: अरे वाह, तुमने तो मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया
2: जी।
1: देखो, विशाल और शांत महासागर ये एक प्राचीन महासागर था जो आज के भूमध्य सागर, अरब सागर और हिमालयी क्षेत्र के बीच फैला हुआ माना जाता है। इसी सागर की तलहटी भूमि की आंतरिक चाल के कारण गोंडवाना और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी।
2: फिर क्या हुआ सर, जब प्लेट्स एक दूसरे की ओर बढ़ने लगी?
1: बेटा उसके बाद गोंडवाना लैंड यानी भारतीय हिस्सा टैथिस सागर एक दिन यूरेशियन प्लेट के करीब पहुंच गया। इस यात्रा में उसे लाखों साल लगे, लेकिन एक दिन अचानक एक जोरदार आवाज आई। गोंडवाना यानी इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकरा गई।
2: अच्छा?
1: हाँ बच्चों, टक्कर इतनी जोरदार थी कि बीच की धरती की परतें मुड़कर ऊंची हो गई।
3: सर मैं कुछ बताऊँ इसके बारे में?
1: हाँ बेटा क्यों नहीं।
3: ठीक वैसे ही जैसे यदि किसी कालीन या चटाई को दोनों तरफ से धक्का दिया जाए तो बीच का हिस्सा उठ जाता है।
1: बहुत अच्छे। और इसी प्रक्रिया में तुम जानते हो आगे क्या हुआ? इसी प्रक्रिया में जन्मा हिमालय। तुम्हें पता है आज भी हिमालय

0: हिमालय की ऊंचाई लगातार बढ़ रही है, क्योंकि इंडियन या गोंडवाना प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट की ओर बहुत धीमी गति से खिसकती जा रही है। दोनों ओर से दबाव बढ़ने के कारण इस हिस्से यानी हिमालयी क्षेत्र की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसीलिए तो हिमालय को मोड़दार पर्वत कहते हैं।
1: अब समझ आया सर, इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ जाती होगी?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल है। हिमालय में अब भी प्रतिदिन बढ़ने की क्षमता है, इसके अलग अलग अनुमान हैं। आम तौर पर कह सकते हैं कि साल भर में लगभग 5 मिलीमीटर और एक सहस्राब्दी यानी 1000 वर्षों में लगभग 5 मीटर।
2: सर एक खास बात तो हम भूल ही गए, 33 सागर का क्या हुआ?
0: भाई यही तो सबसे रोचक बात है। सच ये है कि 33 सागर का क्षेत्र ही हिमालय पर्वत बन गया।
2: यानी क्या हम कह सकते हैं कि जहाँ कभी महासागर था वहाँ आज हमारा हिमालय है?
0: हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं।
1: लेकिन इसके क्या प्रमाण हैं?
0: भाई बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी आपने। भूविज्ञानियों को हिमालय की ऊंचाइयों में आज भी समुद्री जीवों के जीवाश्म, शंख, सीप, समुद्री घोंघे और कोरल की चट्टानें मिली हैं। ये सभी जीव समुद्र में ही पाए जाते हैं। इन खोजों से सिद्ध हो जाता है कि कभी न कभी वहाँ समुद्र रहा जरूर होगा। वहाँ की बहुत सी चट्टानें भी ऐसी हैं जो समुद्र में ही पाई जाती हैं, जैसे चूना पत्थर और शेल आदि। ऐसी चट्टानें समुद्र की तलहटी में ही मिलती हैं।
1: अच्छा तो ये बात है।
0: बिल्कुल। एक और खास बात तुम्हें बता दूं, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, ये बहुत विस्तृत और विशाल पर्वत श्रेणी है। इसकी लगभग 10 चोटियां हैं जो 8000 मीटर से भी अधिक ऊंची हैं। वैसे यदि सभी चोटियों की बात करें तो अलग अलग ऊंचाइयों की कुल 15000 चोटियां हैं, जिनमें सबसे ऊंचा है
3: माउंट एवरेस्ट।
0: सही जवाब। अच्छा बच्चों एक चीज और बताता हूँ, तिब्बती लोग इसे चोमोलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है जगत जननी, और पर्वत की उसी रूप में पूजा भी करते हैं। अच्छा बच्चों नेपाल के निवासी इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश की देवी।
1: सर मुझे आज की बातचीत से एक बात और समझ में आई।
0: भला वो क्या?
1: वो ये कि दबाव कितना भी पड़े हिमालय की तरह ऊंचा उठना मत छोड़ो।
0: बिल्कुल सही बात।
4: तो साथियों अभी आपने सुनी हिमालय के निर्माण की रोचक कहानी, कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। और अब आपके लिए कुछ प्रश्न, पता लगाइए कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। दूसरा प्रश्न है, हिमालय किन दो प्लेटों के टकराने से बना। कार्यक्रम में आपने सुना कि हिमालय की ऊंचाई प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, इस तथ्य से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस पर एक लघु निबंध या कविता लिखिए।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कैसे बना हिमालय। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, बाल कलाकार रिद्धि नव्या और रिदित, कलाकार दलजीत सचदेवा और प्रीति मोहन, नाट्य आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सुरेंद्र कुमार। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे बना हिमालय।

0: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। शीर्षक है स्वामी की दादी।
1: इस कार्यक्रम में स्वामीनाथन नामक एक बच्चे की सुंदर कहानी है, जिसमें उसके और उसकी दादी के बीच प्रेम और स्नेह के संबंध को बताते हुए संदेश दिया गया है कि बच्चों को अपने बड़ों और बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। कार्यक्रम मुख्य रूप से पारिवारिक मूल्यों के महत्व पर बल देता है।
2: बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थीं। उनका सामान था 5 दरियों, 3 चादरों, 5 तकियों वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े रहते थे। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रखे लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में अपने को बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था।
3: अच्छा जा जा।
2: बड़ी प्रसन्नता से भरकर वो बोला,
4: ओ दादी, तुम नहीं जानती राजन कितनी ऊंची चीज है।
3: अच्छा?
2: उसने दादी को राजम और मणि की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी कह सुनाई।
4: तुम्हें पता है उसके पास सचमुच की पुलिस की वर्दी है,
2: स्वामीनाथन बोला।
3: सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए,
2: दादी ने पूछा।
4: उसके पिता पुलिस अधीक्षक हैं। वो यहाँ की पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं।
3: अच्छा,
2: दादी काफी प्रभावित हुई।
3: उनका सच में काफी बड़ा दफ्तर होगा,
2: उन्होंने कहा। फिर उन्होंने उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रौबदार सब मजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले कांपते हुए खड़े रहते थे। उनसे डरकर खूंखार से खूंखार डाकू तक भाग खड़े होते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गईं, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय पर घटी घटनाओं को गडमड करती हुई।
4: बस काफी है दादी,
2: उसने रूखे स्वर में कहा।
4: मैं तुम्हें राजम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं?
3: सारे नंबर मिलते होंगे, है ना,
2: दादी ने पूछा।
4: अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं।
3: चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तुम्हें पता है

0: तुम्हारे दादा कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षकों को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे और फिर उनके जवाब इतने शानदार होते थे कि कभी कभी उनके अध्यापक उन्हें 200 नंबर तक दे देते थे। जब उन्होंने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था। मैं कई सालों तक उसे गले में पहनती रही। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। हाँ, जब तुम्हारी बुआ पैदा हुई। नहीं, तुम्हारी बुआ नहीं, तुम्हारे पिता। याद आया, तब बच्चा 10 दिन का था। अरे नहीं, मैंने पहले ठीक कहा था, तुम्हारी बुआ ही पैदा हुई थी। पता है वो मेडल अब कहाँ है? मैंने वो तुम्हारी बुआ को दिया और उस बेवकूफ ने उसे गलवा कर 4 चूड़ियां बनवा ली, और वो भी इतनी मामूली सी चूड़ियां कि मैं हमेशा कहती रही हूँ कि हमारे परिवार में उस जैसा महामूर्ख कोई नहीं। और
1: अब बस भी करो दादी, तुम बेकार की पुरानी कहानियां सुनाती रहती हो। क्या तुम राजम के बारे में नहीं सुनना चाहती?
0: बोलो
1: दादी। जब राजम छोटा सा लड़का था तो उसने शेर मारा था।
0: सच? बड़ा बहादुर लड़का है।
1: तुम ये बात मुझे खुश करने के लिए कह रही हो?
0: अरे नहीं नहीं,
1: तुम्हें यकीन नहीं हुआ होगा।
2: स्वामीनाथन ने बड़े उत्साह से कहानी शुरू की।
1: राजम के पिता इस जंगल में डेरा डाले हुए थे।
0: अच्छा।
1: राजम उनके साथ था। अचानक 2 शेर उन पर झपटे और एक ने पीछे से हमला करके पिता को गिरा दिया। दूसरे ने राजम का पीछा किया। राजम एक झाड़ी के पीछे छुप गया और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई?
2: उसने कहानी खत्म होने पर पूछा।
0: नहीं नहीं बेटा, सुन रही हूँ।
1: अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे?
0: 2 शेर राजम पर झपटे थे।
2: दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी के गलत जवाब से चिढ़ गया।
1: मैं तुम्हें इतनी जरूरी बातें बता रहा हूँ और तुम नींद में ना जाने क्या क्या उलझन कल्पना किए जा रही हो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। मैं जानता हूँ तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तुम राजम को पसंद नहीं करती।
0: अरे नहीं नहीं, वो तो बहुत प्यारा लड़का है।
2: दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजम को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण उसके मन में एक नया संदेह पैदा हुआ।
1: दादी, शायद तुम्हें शेर की कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा है।
0: मैं एक एक शब्द पर विश्वास करती हूँ।
2: दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा,
1: जो भी उसे झूठा कहेगा वो उसे गोली मार देगा।
0: अच्छा।
2: दादी ने इसका समर्थन किया।

0: और हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिसने वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी और बच्चे को खो दिया और अंत में उसे सब कुछ वापस मिल गया। उसने कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन खर्राटे लेने लगा।
1: तो हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी और बच्चे को इस तरह से खो दिया, लेकिन बाद में
0: दादी भी रुक रुक कर बोलने लगी, फिर वो भी सो गई।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम स्वामी की दादी, और अब इसी के साथ हम आज के कार्यक्रम को विराम देने की आपसे आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत को
1: और उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु, चेतना और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एनसीआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। सवेरे के 10 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, इस कार्यक्रम के जरिए देश भर में फैले हमारे श्रोता जुड़ते हैं विविध भारती से, हमारे इस कार्यक्रम से, और करते हैं अपने पसंदीदा गानों की फरमाइश। ये कार्यक्रम हम और आपको जोड़ने में एक सेतु का काम करता है और इससे आपका और हमारा जुड़ाव यकीनन और ज्यादा गहरा होता जा रहा है। तो चलिए सुनते हैं आज का ये कार्यक्रम हेलो फरमाइश। तो हमारे पहले कॉलर कौन है, जरा देखते हैं। हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती।
1: जी नमस्कार मैम।
0: नमस्कार, कौन जनाब फरमा रहे हैं, अपना नाम बताइए, कहाँ से बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं ग्राम बड़ा गाँव जिला गुना मध्य प्रदेश से आपका नियमित होता बोल रहा हूँ, मांगीलाल धाकड़।
0: मांगीलाल जी स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: मैं अच्छा हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: हम भी अच्छे हैं
1: जी मैम। आपके प्रोग्राम में सुन के बहुत खुश होता हूँ। विविध भारती बम्बई के कार्यक्रम में कम से कम 15-20 साल से लगातार जुड़ा हुआ हूँ।
0: अच्छा, सभी कार्यक्रम सुनते हैं?
1: जी जी मैम।
0: अच्छा, आपसे जब हम बात कर रहे हैं तो पीछे से मोरों की आवाज़ आ रही है।
1: जी जी मोर है, मैं अभी खेतता हूँ खेती बाड़ी पर।
0: अच्छा, मतलब आप अपने खेत में बैठ कर बात कर रहे हैं और वहाँ पर मोर आते हैं?
1: जी जी मोर आ रहे हैं, मोर बहुत पक्षी हैं, मोर हैं, कोयल हैं, सभी तरह की पक्षी नजर आते हैं हमारे गांव में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगता होगा ना?
1: जी जी मैम, अपने खेती बाड़ी में मक्का बो रहा थी, उसमें यहीं बैठा हूँ मैं, यहीं से बात कर रहा हूँ।
0: तो आपके शहर का या गांव का मौसम कैसा चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे गुना एमपी में मौसम मतलब अभी तो बादल हो रहे हैं, पानी भी बरसा था 2-4 दिन पहले।
0: अच्छा,
1: अभी तो अच्छा मौसम है।
0: चलिए, तो आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा ना?
1: जी नहीं, फसल का नुकसान नहीं है, बारिश की फसल है, मक्का है, कुछ नुकसान नहीं है इसमें।
0: तो ज्यादा मोर आते हैं क्या?
1: हाँ बहुत।

0: मोड़ है हमारे गांव में।
1: उनको खेतों में आने से कैसे रोकते हैं आप ताकि फसल को नुकसान नहीं हो?
0: बिल्कुल नहीं रोकते हैं, वो नुकसान नहीं करती हैं अभी, थोड़ी बहुत चौकती हैं, चौक के निकल जाती हैं।
1: चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके
0: और आपके प्रोग्राम में हेलो फरमाइश रहतनामा साकी सहेली और आपकी जो मंच आएगी तो ये पूरे कार्यक्रम सुनता हूँ मैं।
1: बहुत अच्छी बात है, आप हमारे नियमित श्रोता है और कार्यक्रमों को सुनते हैं विविध भारती के। आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: आज मुझे बंजारन का गीत है ये जीवन इतनी बार मिले हर बार मुझे साजन का प्यार मिले।
1: बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं आप, चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: हाँ, हम रहीम खान पठान बात कर रहे हैं।
0: कहाँ से बोल रहे हैं रहीम जी?
1: परवानी महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे है, मजों में है। 1975 से हम विविध भारती के कार्यक्रम सुन रहे हैं और आज भी सुन रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे जो श्रोता है वो इतने नियमित है कि हम कई बार हैरान हो जाते हैं जानकर कि विविध भारती के कार्यक्रमों के अलावा उनके जिंदगी में और कुछ है ही नहीं।
1: देखिए सर, खास तौर पे एक बात बताना चाहेंगे हम आपको, नहीं बल्कि हमारे सभी दर्शकों को,
0: श्रोताओं
1: को, कि देखिए आकाशवाणी एक ऐसी माध्यम है के जरिए से हमारा काम भी चलता है और हम प्रोग्राम भी सुन पाते हैं। रही दूसरी बात, अभी देखिए आज के तारीख में जवान बच्चे, बड़े बच्चे, छोटे बच्चे ज्यादा से ज्यादा मोबाइल की ओर जा रहे हैं और कम उम्र में उनको चश्मा लगने की संभावना हो रही है।
0: जी, आपने एक ज्वलंत समस्या की ओर हमारा ध्यान दिलाया है और वाकई ये समस्या हर घर में है कि बच्चे जो हैं मोबाइल से लगे रहते हैं और उनकी आंखों के अलावा उनके दिमाग में भी जो है, आप देखिए ना कितनी तरह की बातें घर कर गई हैं, जो बातें उस उम्र में

0: नहीं होनी चाहिए और इसलिए इतने क्राइम हम आजकल देख रहे हैं, सुन रहे हैं, छोटी छोटी उम्र में बच्चे क्राइम कर रहे हैं, ये सब मोबाइल की ही देन हो रही है।
1: हम ये चाहते हैं सभी माता पिताओं से, बच्चों को, बच्चे देश के भविष्य होने के कारण ऐसा है कि आपको बच्चों का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है और सबसे ज्यादा बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना है, मोबाइल में नहीं देना है। और हम बच्चों को पढ़ाई करेंगे अच्छे से अच्छे, जैसा आप अलाउ कर विविध भारती से बात करते हैं, हमारा देश पूरा आपकी आवाज सुनता है और हम तो रात दिन रेडियो के साथ ही रहते हैं। जैसा ही प्रोग्राम चलता है तो हम रेडियो लगा के बैठ जाते हैं, हमारा काम भी चलता है और रेडियो का प्रसारण भी चलता है।
0: बहुत बड़ा संदेश आपने दिया है कि बच्चे आखिर किस दिशा में जा रहे हैं।
1: हम यहाँ पे फरवरी महाराष्ट्र में हम बिल्डिंग आरसीजी बिल्डिंग वर्कर का काम करते हैं।
0: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रहीम साहब, कि आप खुद ये समझ रहे हैं कि आपको शिक्षा नहीं मिल पाई या नहीं ले पाए और आपको इतनी धूप में इतनी मेहनत का काम करना पड़ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। बिल्कुल, बहुत अच्छा संदेश आपने हमें दिया है। अब बताइए आपकी पसंद का कोई गीत।
1: हमें दीदी आज के इस प्रोग्राम में अमर अकबर अंतोनी फिल्म का गीत सुनना है, पर्दा है पर्दा पर्दे के पीछे, ये गीत सुनना है।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्ते मैडम जी।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना।
1: जी राम स्वरूप जयकवाल बोल रहे हैं, ग्राम भगौता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से।
0: राम स्वरूप जी स्वागत है आपका, कैसे हैं राम स्वरूप जी?
1: बढ़िया है आपकी कृपा से, आप कैसी हैं मैडम जी?
0: हम भी अच्छे हैं, और बताइए क्या चल रहा है इन दिनों?
1: हमारे यहाँ तो बारिश हो चुकी है मैडम जी, झमाझम बारिश हो गई, अभी दो तीन दिन से पानी का।

0: क्या है?
1: अरे वाह,
0: बहुत बादल हो रहे हैं,
1: ये तो बहुत अच्छी बात है ना
0: जी। गाना सुना दीजिए, फेरी मूवी का है और ओम नमः शिवाय ऐसे गाना है।
1: अच्छा चलिए, अच्छी बात है, तो सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्ते बहन जी।
0: नमस्ते।
1: मैं आपका शुभ चिंतक बाहुबली फुरसुले छत्रपति संभाजी नगर से संवाद कर रहा हूँ, मंदाकिनी जी।
0: जी जी।
1: विविध भारती तो मैं करीबन 30 साल से मैं जुड़ा हूँ। विविध कागज अनेक कार्यक्रम का प्रचलन होता था बहन जी, और जो एक मंथन कार्यक्रम रहता था उसमें तो हमारे विचारों को चालना और आपस में मेल जोल होता था बहन जी।
0: जी जी।
1: मेरी उम्र 84 चालू है, अभी तो मैं घर में ही बैठा हूँ आराम से, और आपसे गुफ्तगु करने का इंतजार कर रहा था। सौभाग्य से मेरी बात भी आपसे चालू है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता।
0: जी, बहुत अच्छा लगता है जब हमारे इतने पुराने श्रोता या यूं कहें इतने सीनियर श्रोता हमसे बात करते हैं।
1: ये मेरा जो शौक है, ये करीबन 30 साल पूर्व से मैं इस आकाशवाणी से जुड़ा हूँ, और आकाशवाणी ऐसी एक माध्यम है जिसके जरिए मनोरंजन तो होता ही है, मगर अपने जीवन में

0: कुछ नया सीखने का, कुछ नई बातें, स्वास्थ्य वर्धक, विज्ञान, कला, यह सब बातें हमको प्रदान की है और उससे सभी हमारे श्रोता बंधु पुलकित होकर तृप्त हो गए बहन जी।
1: बहुत अच्छी बात है। तो बताइए बाहुबली जी, आज कौन सा गीत हम आपको सुनवाएं?
0: फिर प्यासा का एक गीत में नगमा निगार ने समाज में फैली हुई दुराचारी, दुष्कर्मी, भरे भी धोखाधड़ी पर अपने अंतस की वेदना, दुख, पीड़ा को बड़े हृदय स्पर्शी शब्दों में बयां किया है। वो गीत के बोल है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया। इसमें कवि ने समाज में जो एक अवडंबर और समाज के प्रति जो विद्रोह और उसके प्रति जो शोषण होता है, सच्चाई को उसके ऊपर झूठ का आरोप करके जीतना चाहते हैं, तो इसके ऊपर कवि ने अपने दुख वेदनाओं को बड़ी सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है बेग
1: जी। बिल्कुल, एक कालजयी गीत आप सुनना चाहते हैं फिल्म प्यासा से, जिसे आवाज मोहम्मद रफी साहब ने दी है, और ये गीत जो है हमें झकझोर देता है और मेरी पसंद का भी ये गीत है। चलिए आप सबके साथ मिलकर हम भी इस गीत को सुन

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मैं पप्पू चंदेल बोल रहा हूँ, भोपाल से।
0: भोपाल से पप्पू जी बोल रहे हैं, स्वागत है आपका। कैसे हैं पप्पू जी?
1: बढ़िया हूँ मैं।
0: क्या कर रहे हैं इस समय?
1: ड्यूटी पर आ गए, बेकरी में।
0: अच्छा, बेकरी में काम करते हैं।
1: जी जी जी।
0: क्या समय है आपके आने का?
1: हमारा वही मतलब 11 से 11:30 तक ड्यूटी में आ जाते हैं।
0: और रात तक?
1: 9:30 बजे तक।
0: अच्छा, चलिए नौकरी आराम की है ना?
1: जी जी।
0: तो बताइए कैसा लगता है आपको अपने यहाँ काम करने में? बेकरी में क्या क्या आइटम बनते हैं?
1: सभी बनते हैं, मतलब केक है, पेस्ट्री है, अपना बिस्किट है, कुकीज है, सब मतलब ब्रेड है, सभी आइटम मतलब बेकरी आइटम जो है।
0: आप भी कुक का काम करते हैं?
1: जी जी, मैं केक बनाता
0: हूँ। अरे वाह, कौन सा केक ज्यादा चलता है आपके यहाँ?
1: नॉर्मली चलता है पाइन एप्पल ब्लैक फॉरेस्ट जो चलते हैं, मतलब वही ज्यादा। हाँ, लेकिन पाइन एप्पल जो है वो मतलब हमेशा ये
0: हर व्यक्ति को पसंद आ सकता है पाइन एप्पल का, है ना? एक दिन में कितने केक बना लेते हो आप?
1: बन जाते हैं, मतलब जैसा अपना ऑर्डर हो, मतलब जैसा डिमांड रहता है, मतलब।

0: सर से जैसे निकल मतलब अपने मार्केट के ऊपर ही है जैसा चल जाए।
1: कितना समय हो गया इस काम में आपको लगे हुए?
0: 20 साल हो गए, 2002 से लगा था।
1: 20 साल का अनुभव बोल रहा है आपका। चलिए बहुत अच्छा लगा। तो बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगे आज आप?
0: विधाता पिक्चर का मैम, आपका कुछ चंद लकड़ियों का विधाता पिक्चर का
1: गाने के बोल बताइए।
0: आपका कुछ चंद लकड़ियों का ऐसा कुछ।
1: चलिए आपकी पसंद का ही गीत सुनते हैं।

0: हेलो, फरमाइश कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: मैडम जी राम राम।
0: नमस्कार। राम राम, कैसे हैं?
1: दीदी बहुत बढ़िया है। मजाक नहीं जी बोल रहे हो?
0: हाँ जी हाँ जी, अपना नाम तो बताइए आप।
1: हम बोल रहे हैं मैडम जी श्रवण कुमार रणवा, गांव हीरावाली, जिला फाजिलका, पंजाब से।
0: कैसे हैं श्रवण जी?
1: बहुत बढ़िया।
0: चलिए अच्छी बात है। और कैसा चल रहा है आपके शहर का मौसम?
1: शहर नहीं, हमारा तो गाँव है जी फाजिलका के 10 किलोमीटर के साथ ही। गांव के अंदर अच्छा माहौल है, खेत में मकान बनाया अच्छा, ठंडा हवा का मौसम है, थोड़ा बरसात हो जाता है थोड़ा थोड़ा, और बढ़िया है। अच्छा धान धोन है, लग चुका है अभी।
0: क्या धान लगाया?
1: चावल।
0: चावल की खेती हो रही है आपके यहाँ?
1: हाँ जी हाँ जी, वो चावल जैसे पहले सन्ना पोत बीजा था, अब उसको उखाड़ कर दोबारा 30 दिन हो गया लगाए को।
0: अच्छा अच्छा, तो अभी खेती के अनुकूल है मौसम?
1: मैडम जी बरसात चाहिए, कोई परमात्मा से अरदास कर रहे हैं, और वैसे मौसम

0: अच्छा है।
1: मतलब और बारिश की आपको जरूरत है ना?
0: बिल्कुल जी, हमारे बरसात की बहुत ज्यादा आवश्यकता है यहाँ चावल के खेती के अंदर।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: तकरीबन चावल की गन्ने की खेती है हमारे यहाँ।
1: तो चावल की खेती में क्या ध्यान रखना होता है, ज्यादा से ज्यादा किस बात की सावधानी रखनी पड़ती है?
0: जैसे एक माँ आपके बच्चे का ध्यान रखती है ना, इस तरह हमें जमींदार को इसका ख्याल रखना पड़ता है।
1: ये बात तो खैर सही है।
0: दिन में 3 दफा घेरा लगाना, सुबह शाम दोपहर। क्या कोई कीट लग रहा है, कोई रोग लग रहा है, कैसा पानी पूरा हुआ कि नहीं, कहाँ खाद डालना है, कहाँ कम गिरा है, ध्यान रखना पड़ता है बच्चे की तरह।
1: बिल्कुल सही कहा आप। तो 3-4 महीने तक उसको पानी में रखते हैं लगभग, है ना?
0: नहीं जी, 4-5 दिन तक। उसके बाद में फिर एक दिन में पानी पूरा हो गया, दूसरे दिन कम पड़ गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर उसमें पानी घुमा दिया, ऐसे मतलब चलता रहता। 4-5 महीना पानी भरा नहीं रहना चाहिए।
1: अच्छा, भरा नहीं रहना चाहिए, लेकिन आपको लगभग ध्यान रखना पड़ता है 4-5 महीने तक कि फसल सूखने न पाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कि आप एक ऐसे किसान हैं जहां पर लहलहाती फसलों को आप देखते हैं।
0: हाँ जी, हाँ जी,
1: बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप अपने खेत खलियान का ध्यान रखिए और बताइए कौन सा गाना सुनवाएं आपको हम।
0: मैडम जी, क्रांति फिल्म से सुना दो, चना जोर गरम।
1: चलिए, तो खेती तो आप चावल की कर रहे हैं और गाना सुनना चाहते हैं चना जोर गरम। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: जय बजरंग छोटा संघ बस स्टैंड बंदा चाय वाले बोल रहे चाय भी दो दीदी।

0: चाय पी रहे हैं आप इस वक्त? चलिए आप पीजिए चाय और हमसे बात करिए।
1: चाय की दुकान है दीदी।
0: अरे चाय की दुकान है आपकी?
1: हाँ दीदी।
0: तो पहले नाम बताइए, फिर आपसे चाय बनाने के तरीके पूछते हैं, किस तरह की आप स्वादिष्ट चाय बनाते हैं।
1: लक्ष्मण रेखवाल।
0: लक्ष्मण जी कहाँ से बोल रहे हैं?
1: बंडा वेली जिला सागर मध्य प्रदेश।
0: स्वागत है आपका। अब बताइए आपकी चाय की दुकान कहाँ है, कैसी है, कितनी बड़ी है और कब से खोली आपने?
1: कम से कम 30 वर्ष हो गए चाय की दुकान को।
0: अच्छा 30 वर्ष से आप ही संभाल रहे हैं अपनी चाय की दुकान?
1: हाँ हम संभाल रहे हैं और भाइयों को भी करवा जा रहे हैं। 3 दुकानें हो गई हैं अब चाय की, और नाश्ता है, और नाश्ता भी आप खाना हो तो केक मलाई की बर्फी है, और समोसा है, जलेबी है, मंगोड़ी है, रसगुल्ला है, ये सब मिलेंगे हमारे पास।
0: हमारे तो मुंह में पानी आ गया ये सब सुन के, तो लग रहा है काश आपकी दुकान के सामने होते तो खा लेते थोड़ा। तो बताइए आपकी चाय की क्या खासियत है, कैसे बनाते हैं चाय और कैसे पसंद आती है लोगों को? आते हैं लोग चाय पीने बहुत?
1: हाँ बहुत आते हैं, और चाय ऐसी रहती है कि अच्छा दूध होगा तो चाय अच्छी बनेगी।
0: हाँ ऐसे तो नहीं एक ही भगोने में बार बार चाय को उबालते रहते हैं उबालते रहते हैं?
1: ऐसा नहीं होता है, साफ होते रहते हैं, और ये हमारी तो चाय रखती रहती है, धरी नहीं रहती है।
0: हाँ तो किसमें पिला रहे हैं चाय? कुल्हड़ में पिला रहे हैं या प्लास्टिक की गिलास में पिला रहे हैं?
1: गिलास में, कांच की गिलास भी है और कागज के डिस्पोजल भी है।
0: तो क्या डालते हैं चाय में फटाफट बताइए, और फिर अपनी पसंद का गीत सुनिए। कैसे बनाते हैं चाय?
1: हम चाय बिल्कुल अच्छी बने तो अच्छी खोला लेते हैं, उसमें शक्कर पत्ती इलायची भी डालते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट रहता है। जैसे ठंडों में अदरक डालते हैं
0: और गर्मी में इलायची।
1: हाँ हाँ
0: चलिए कौन सा गीत सुनवाएं आपको बताइए?
1: आज मोहरा पिक्चर है, ना तजरे की दाल ना मोतियों की हार, तुम कितनी सुंदर हो।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर गीत सुनना चाहते हैं। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: मैं नॉर्थ ईस्ट साउथ त्रिपुरा से विश्वजीत पाल बोल रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं बताइए अपने बारे में।
1: मैं तो ठीक हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं त्रिपुरा में रहती हूँ, मैं थोड़ा सा काम वगैरह घर में करता हूँ। मैं ब्लाइंड हूँ तो इसीलिए घर के साथ जो लोग रहते हैं ना, तो उसके साथ थोड़ा सा थोड़ा काम मिलजुल के करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो रेडियो तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपका कार्यक्रम हेलो फरमाइश है गीत, और जो 3 बजे गतिशैली कार्यक्रम आती है ना, तो उसको बहुत सुनते हूँ, बहुत अच्छा लगती है।
0: अच्छी बात है, आप कार्यक्रम सुनते हैं। तो अपने त्रिपुरा के बारे में बताइए, कैसा है आपका शहर, कैसा है ये जगह? प्राकृतिक रबड़ उत्पादक भी है आपके यहाँ तो त्रिपुरा?
1: हाँ, त्रिपुरा तो खेती राबड़ी खेती है, तो इसका तो ज्यादा लोग राबड़ी खेती करती है। तो हमारा इधर घूमने के लिए बहुत ही जगह है, तो इसके लिए पर्यटक आती है तो घूम के जाती है, बहुत अच्छा लगता है, हरियाली है।
0: कहाँ कहाँ घूमा जाए त्रिपुरा में बताइए।
1: त्रिपुरा में त्रिपुरा माँ सुंदरी टेम्पल है, इसके बाद और बहुत जगह है घूमने के लिए। मैं तो त्रिपुरा माया का मंदिर में गया था, तो बहुत अच्छी है मंदिर, घूमने के लिए बाहर से लोग आते हैं।
0: अरे वाह, क्या बात है। और आपके यहाँ पर क्या बांस और बेंत के भी काम होते हैं, उससे बनी वस्तुएं या फर्नीचर बनाए जाते हैं, सजावटी सामान?
1: त्रिपुरा में तो खेती में बहुत अच्छी है बांस का, जो
0: काफी अच्छे सजावटी सामान बनते हैं ना, और हथकरघे का, हथकरघा का भी काफी काम होता है त्रिपुरा में।
1: जी जी जी।
0: चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहेंगे आप?
1: मैं नाम फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, दम मरा दम मिटे जाए हम, हरे कृष्ण हरे राम।
0: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो फरमाइश विविध भारती
1: जी। नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम बताइए अपना, कौन बोल रहे हैं?
1: प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: स्वागत है आपका प्रेम जी, कैसे हैं?
1: मैं बहुत अच्छा हूँ और आपसे बात करके और भी अच्छा लग रहा है।
0: अच्छा, क्या करते हैं आप?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ और अभी खेत में ही काम कर रहे हैं हम। खरपतवार निकालने का दौरे चला रहे हैं और बरसात हो चुकी है तो सोयाबीन की फसल लगाई है हमने।
0: क्या तैयारी करनी पड़ती है?
1: और आपको बताऊँ जी, जैसे पहले तो खेत को गर्मी में कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, उसके बाद में ट्रैक्टर द्वारा अच्छी तरह से हंकाई जुताई होती है और फिर बरसात हो जाती है ना, तो उसमें फिर सोयाबीन की फसल लगाई जाती है।
0: अच्छा, और कितने दिन में फसल बनकर तैयार हो जाती है?
1: जी सोयाबीन की फसल हमारी मतलब आपको बताऊँ 2.5 से 3 महीने में पक के तैयार होके कटाई भी हो जाती है। उसके बाद में जो फिर बताऊँ आपको, जैसे भरपूर पानी हो जाता है ना, हर जगह कुएं नदियाँ तालाब भर जाते हैं, तो फिर सोयाबीन के बाद में गेहूँ लहसुन और मटर की फसल लगाते हैं।
0: अच्छा अच्छा, लगातार?
1: जी हाँ, लगातार होती दो फसल, उसके बाद में 3 महीने के लिए खेत को खाली छोड़ना पड़ता है गर्मियों में।
0: अच्छा, फिर उन 3 महीनों में क्या होता है?
1: उस समय खेत को खाली छोड़ दिया जाता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं ना,
0: हाँ?
1: जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं वो गर्मी में खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते हैं, फिर से मतलब जमीन की उर्वरकता बढ़ जाती है। और जैसे ज्यादातर मटर की फसल पैदावार होती है ना हमारे यहाँ पे, तो हम मंडियों में बेचते हैं।
0: तो आपको मटर की फसल सबसे अंत में करेंगे आप, है ना, जब सोयाबीन की फसल पक जाएगी, उसके बाद गेहूँ लहसुन और मटर की एक साथ करेंगे तीनों फसलें?
1: तीनों फसल एक साथ होती है।
0: अच्छा, फिर कटाई भी एक साथ ही होगी या इनमें अंतराल रहेगा?
1: हाँ, जैसे कि लहसुन और गेहूं की कटाई साथ में होती है और मटर तो 2.5 महीने में पक के तैयार हो जाता है।
0: तो फफूंद से बचाने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि जब आपने बीज बोए हैं फसल आएगी तो फफूंद भी लग जाती होगी कई बार?
1: जी जैसे तो बीज उपचार करके ही लगाया जाता है और उसके बाद में जब फफूंद होती है कभी कभार तो इल्लियां भी होती है सोयाबीन में मटर में लहसुन में, तो इसमें स्प्रे करना होता है रासायनिक कीट का, और वो भी मतलब ट्रैक्टर द्वारा होता है सब काम।
0: अच्छा,
1: ट्रैक्टर के साथ में मजदूर लगाने पड़ते हैं। मोबाइल ऐप के आने से हमें आपको बताऊँ स्पष्ट प्रसारण मिलता है और मतलब कहीं पर भी जाए ना तो साथ में हमारे विद्यार्थी चलता ही रहता है, उसमें हम सुनते हैं सखी सहेली हवा महल सेहतनामा के तहत जो पहले भी चलता था ना कार्यक्रम,
0: हाँ हाँ,
1: वो भी सुनते हैं। और पिटारा के तहत हमने काफी पहले भी पत्रावली जो कार्यक्रम आता था ना विद्यार्थी से जी, उसमें काफी लेटर लिखे।
0: बताइए, इतनी सारी बातें हो गई हैं आपसे, अब कौन सा गीत सुनवाएं आपको?
1: फिल्म मकान में प्यासा सावन और गाने के बोले मेघा रे मेघा मत परदेश जा।
0: बिल्कुल सही गाना है, चलिए अभी सुनते हैं आपकी पसंद का ही।

0: हेलो फरमाइश कार्यक्रम विविध भारती से।
1: मंदाजनी दीदी नमस्ते, मैं दूसरी बार बात कर रही हूँ आपके साथ मेरी।
0: अरे वाह क्या बात है, नाम तो बताइए अपना।
1: मैं विजय कुमार स्वामी, गांव बस्तवा, तहसील शोर, जिला कोल्हापुर, महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ दीदी।
0: स्वागत है आपका, कैसे हैं?
1: हाँ अच्छे हो, कैसे हैं?
0: हम भी अच्छे हैं। अच्छा बताइए क्या करते हैं आप विजय जी, बात तो हुई होगी आपसे।
1: मैं अभी सोशल वर्कर हूँ दीदी।
0: अच्छा,
1: उम्र अभी 63 है।
0: अच्छा तो समाज के लिए क्या काम करते हैं विशेष कोई?
1: दिव्यांग के लिए काम करता हूँ, जो कुछ सरकारी योजना आते हैं वो उनके तक पहुँचने का काम मैं करता हूँ।
0: उनको आप बताते हैं कि कौन कौन सी सरकारी योजनाएं उनके लिए लागू हुई हैं?
1: हाँ, वो बताने का, उनका पेंशन, वो जो कुछ करने का,
0: फिर उनकी मदद करते हैं। हाँ ठीक है।
1: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं विविध भारती के सभी कार्यक्रम बहुत बढ़िया और दीदी सभी सखी सहेली, हेलो सहेली, हेलो फरमाइश, गीत माला, सभी सदाबहार नगमे, अभी जो शुरू हो गए ना वो मन क्या है गीत, वो भी बढ़िया कार्यक्रम है।
0: उसके लिए आपने लिखा कोई खत? हमें
1: खत मैं लिखने, मैं ब्लैंड हूँ दीदी,
0: लेकिन कार्यक्रम सारे सुनते हैं ना?
1: हाँ सारे कार्यक्रम सुनता हूँ, दिन भर में रेडियो चालू रहता है, मैं कन्नड़ भी सुनता हूँ और इधर मराठी, हिंदी, इधर कोल्हापुर हमारे सांगली आकाशवाणी यहाँ पास में है वो भी सुनता हूँ। उसके बाद में 1 बजे से कोल्हापुर आकाशवाणी रिले करते हैं विविध भारती, शाम 6 बजे तक रहता है जी
0: वो सभी कार्यक्रम।
1: मैं AM पर सुनता हूँ विविध भारती का कार्यक्रम, जो हमारे राजकोट, अहमदाबाद, बड़ोदरा, उसके पर सुनता हूँ मैं।
0: क्या बात है, मतलब हर तरफ से आप विविध भारती को सुनते हैं?
1: ओ बिल्कुल,
0: कहीं न कहीं बैंड चेंज कर करके सुनते रहते हैं कि कहाँ से इस समय आने वाला है।
1: दो रेडियो मेरे पास आए, मैं 1970 से रेडियो का शौक है मुझे दीदी, और मैं पहले से मेरे जो ट्रांजिस्टर आते थे ना छोटे छोटे, वो लेके सुनता था।
0: वो अभी भी आपके पास है?
1: अभी भी नहीं, अभी वो नहीं है, अभी बड़े रेडियो, अपर्णा के 2 रेडियो है मेरे पास अभी।
0: अच्छा लगा आपसे बात करके, बताइए कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: पैसा फेंको तमाशे देखो, ममता जी और राजेश खन्ना का एक फिल्म है दुश्मन।
0: चलिए फिल्म दुश्मन का गीत सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपके साथ।

0: देखा, ये तमाशा देखोगे?
1: हाँ।
0: बाद में देखेंगे ना?
1: नहीं, मुझे अभी देखना है। तुम तो बोलते थे कि मैं लाफा मार के दिखाऊंगा।
0: बेटा यहाँ लाफा नहीं चलेगा, तमाशे वाला बदल गया, तो जो घर चले।
1: नहीं, मुझे अभी देखना है।
0: देखना?
1: हाँ।
0: चल बेटा।

0: मैं बडनेरा अमरावती महाराष्ट्र से हिम्मतराव श्रृंगारे बात कर रहा हूँ दीदी आपसे।
1: हिम्मत जी स्वागत है आपका।
0: कैसे दीदी आप?
1: अच्छे हैं, आप बताइए।
0: मैं भी अच्छा हूँ दीदी।
1: क्या बात है, अच्छी बात है। क्या कर रहे हैं इन दिनों?
0: मजदूरी का काम करता हूँ दीदी मैं।
1: अच्छा, जैसे
0: बिल्डिंग का काम होता है ना, वहाँ पर काम करता हूँ दीदी मजदूरी।
1: तो क्या टाइमिंग्स रहते हैं? सुबह 7:30 से पहुँच जाते हैं आप वहाँ पर और शाम के 7 बजे तक काम करते हैं?
0: शाम के 5 बजे छुट्टी हो जाती है, 10 बजे जाता हूँ मैं।
1: अच्छा, बहुत मेहनत होती होगी गर्मी में तो और भी।
0: हाँ दीदी, बारिश नहीं हो रही ना अभी इधर अमरावती में, कुछ कुछ जगह हो रही दीदी बारिश।
1: तो बताइए आप वहाँ काम करते हैं, फिर ये प्रोग्राम कब सुनते हैं जैसे आप अभी हमें कॉल कर रहे हैं?
0: अमरावती स्टेशन पे FM लगा रहता है, वो साइड पर सब मजदूर लोग सुनते हैं दीदी बडनेरा अमरावती में। तो अमरावती स्टेशन है हमारा 101.5 पर आता है, तो वहाँ विद भारती हमको क्लियर सुनाई देता है।
1: और बीच में कॉल करने की इजाजत है आपको जैसे अभी आप हमें कॉल कर रहे हैं?
0: हाँ, हम 11 बजे ड्यूटी से छुट्टी निकाल लेते हैं दीदी, आधा घंटा एक घंटे के लिए।
1: अच्छा बताइए, आज कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप?
0: फिल्म का नाम है धर्मा और गाने के बोले राज की बात कह दूँ तो की बात राज रहने दो।
1: अच्छा,
0: इशारों को इशारों में।
1: हाँ, ये कव्वाली है।
0: हाँ, मोहम्मद रफी साहब
1: और आशा भोसले की आवाज में।
0: आशा भोसले और बिंदु और प्रांत के ऊपर फिल्म आएगी, फिल्म कव्वाली दीदी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शानदार कव्वाली है।
0: और रेखा नवीन निश्चल इसमें अभिनेता थे, हीरोइन थी।
1: चलिए सुनते हैं आपकी पसंद की है कव्वाली।

ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध कि आगामी 2 माह तक हमें कॉल न करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभागिता का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर्स नोट कर लें। हमारे फोन नंबर्स हैं 02228670288, 02240024662। चलते चलाते हम आपको ये भी बता दें कि आज का सफर आपने तय किया अपने दोस्त मंदाकिनी जोशी के साथ। रिकॉर्डिंग इंजीनियर थे HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला वेंगुरलेकर का, और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम

0: के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। और अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है। 11 बजे हैं, प्रस्तुत है सुगम संगीत।

0: दोस्तों, आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माही चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माही चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे, यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल। आप सुन रहे हैं सुगम संगीत के अंतर्गत हरिहरण की गाई चुनिंदा गजलें।

प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

हरिहरन की गाई इस गजल के साथ ही सुगम संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी बांसवाड़ा का ये माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। 11:30 हुए हैं, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत।

शुरुआती गीत हम सुन रहे हैं एक दूजे के लिए फिल्म से, लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आर रहमान के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे हैं बॉम्बे फिल्म से ये गीत, हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में, शब्द रचना महबूब की।

अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं क्रिमिनल फिल्म से कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। इंदिवर के बोल हैं एम एम करीन का संगीत।

फिल्म संगीत का अंतिम गीत हमने लिया है तुम साथ हो फिल्म से, तमाशा फिल्म से, अलका याग्निक और अरिजीत सिंह की आवाज में। इरशाद कामिल के बोल हैं ए आर।

तमाशा फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से बोल रहे हैं। दोपहर के 12

0: 11 बजने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। हाइड्रोजन से चलने वाली इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत में ही डिजाइन की गई ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है।
2: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ दो या तीन डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। जिंद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
1: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। जींद के बाद प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास से राज्य में रेल बुनियादी ढांचे और यात्री सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार होगा। गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाछ के सीमा चौकी स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन का दौरा करेंगे जहां वे प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे, वृक्षारोपण में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह का बीएसएफ कर्मियों से बातचीत का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री सिलीगुड़ी के उत्तरकन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकें करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक मामलों, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन और जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वे कोलकाता के लिए रवाना होंगे। भारतीय पुलिस सेवा के 1994 बैच के वरिष्ठ अधिकारी अनुराग कुमार को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार उनकी नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी और अगले आदेश तक लागू रहेगी। संसद का मॉनसून सत्र इस महीने की 20 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में होगी। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक हुर्मुस जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। महानिदेशालय ने यह सलाह खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी की है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज यादों की महफिल कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं कुछ खास गीत। जी हाँ, आज जानी मानी अभिनेत्री जरीना वहाब का जन्मदिन है, तो विविध भारती परिवार की ओर से हम उन्हें देते हैं ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और आज इस कार्यक्रम में हमने जरीना वहाब की फिल्मों से ही कुछ गीत चुने हैं, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल।

सावन को आने दो, ये था फिल्म का नाम जिसका गीत अभी आप सुन रहे थे जसपाल सिंह, कल्याणी मित्रा और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा था गौहर कानपुरी ने और धुन बनाई थी राजकमल ने। और ये आवाज है रूना लैला की, फिल्म का नाम घरोंदा, नक्श लायलपुरी की रचना और जयदेव की धुन

यशोदास की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म चितचोर का ये गीत। और लीजिए अब सुनिए एन दत्ता का संगीत, पंडित भरत व्यास की बोल, आवाज सुमन कल्याणपुर की और फिल्म का नाम गोपाल कृष्ण।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम में अब सुनिए गुलजार साहब की लिखी रचना राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में। इसे आवाज दी है आशा भोंसले ने और ये फिल्म है सितारा।

विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज आप सुन रहे हैं अभिनेत्री ज़रीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत। आइए सुनते हैं फिल्म नैया का गीत। इसे आवाज दी है हेमलता ने। गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन हैं।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: फिल्म दहलीज का दो गाना सुनिए। स्वर आशा भोंसले और महेंद्र कपूर के हैं, गीतकार हैं हसन कमाल और संगीत रवि का है।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत हमने नक्श लायलपुरी का लिखा हुआ चुना है। इसे संगीत में डाला है जयदेव ने, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है तुम्हारे लिए।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: एक और एक 11, जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आप सुनने वाले हैं। गाने वाले कलाकार मोहम्मद रफी और आशा भोसले, शब्दकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

ऐसे कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं सुलक्षणा पंडित और साथियों का गाया हुआ फिल्म जज्बात का गीत, शब्द महेंद्र देहलवी के और धुन राजकमल की।

इस गाने के साथ ही आज का यादों की महफिल कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज इस कार्यक्रम में आपने मशहूर अभिनेत्री जरीना वहाब की फिल्मों से कुछ गीत सुने थे।

ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर हम उपस्थित हो रहे हैं बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम सुरीला सफर। सुनने वालों को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज की इबारत पढ़कर आप सभी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, है ना? क्योंकि आज की इबारत बिल्कुल साफ इशारा कर रही है कि आज सुरीले सफर में होने क्या वाला है, है ना? हमारे श्रोताओं ने यानी हमारे दोस्तों ने पूरे के पूरे आज गीत लिख दिए हैं जो हमारे गीत इस कार्यक्रम में बजने वाले हैं। और जिन श्रोताओं ने इस इबारत को जब और गहराई से पढ़ा तो उन्होंने इस बात को भी समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं। जी हाँ, ये सभी बातें हम इसलिए बता पा रहे हैं क्योंकि फेसबुक पेज पर जब आप अपनी टिप्पणियां हमें लिख रहे हैं, हम उन्हें पढ़ रहे हैं, उन्हें पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, तब पता चल रहा है कि हमारे श्रोता आज बहुत खुश हैं। और इस इबारत में पूरे के पूरे गीत जो हमने आज चुने हैं आपके लिए, लगभग आपके वही गीत हमें भी नजर आ रहे हैं। और हाँ, जिन श्रोताओं ने, जैसा कि हमने कहा कि जिन श्रोताओं ने इस इबारत को और गहराई से पढ़ा और ये समझा कि उद्घोषक महोदया आज क्या कुछ नया लेकर आई हैं, तो वो समझ गए हैं कि आज हम लेकर आए हैं कुछ शीर्षक गीत। जी हाँ, शीर्षक गीत, जैसे फिल्म आवारा का गाना है आवारा हूँ, ऐसे ही कुछ गाने आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जो शीर्षक गीत हैं उस फिल्म का। और दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि ये शीर्षक गीत अक्सर फिल्म के मुख्य संदेश या केंद्रीय भाव पर आधारित होते हैं और कोई भी गीतकार गीतों के जरिए सीधे दर्शकों के दिलों से जुड़ना चाहते हैं और इन फिल्मों की आत्मा उनके गीत में नजर आ जाती है, जिन्हें शीर्षक गीत के माध्यम से और ज्यादा बताया जाता है। मतलब फिल्मों के शुरुआती और सुनहरे दौर में शीर्षक गीत लिखने की जो परंपरा थी वो बहुत सारे गीतकारों ने शुरू की, जैसे कि शैलेंद्र साहब, मजरू सुल्तानपुरी, साहिर लुधियानवी। इन्होंने मुख्य रूप से फिल्म के प्रचार और थीम को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए इसे अपनाया और शीर्षक गीत हमारे लिए रचा। तो चलिए, आज इस सुरीले सफर में आप सभी हमारे साथ हैं, हमें उम्मीद है, क्योंकि आज का ये सुरीला सफर बहुत साफ सुथरा है, पथरीला नहीं है, कांटों से भरा नहीं है, फूल ही फूल है। और हमें अपना मार्ग, अपना पथ पता है कि आज सुरीला सफर ये सफर कहाँ तक का है। तो चलिए, निकल पड़िए इस सुरीले सफर पर।

प्यार का सागर। जी हाँ, ये था फिल्म का नाम जिसका दो गाना अभी आपने मुकेश और आशा भोंसले की आवाजों में सुना। गीतकार प्रेम धवन थे और संगीतकार थे रवि। और हाँ, हम देखिए ना, इतनी खुशी में आज की इबारत आपको बताना ही भूल गए, क्योंकि जो श्रोता हमारे फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें बताना बहुत जरूरी है कि आज की इबारत क्या है। लेकिन जो श्रोता फेसबुक पेज से जुड़ गए हैं उसी इबारत को पढ़ने के बाद उन्होंने समझा कि आज का ये जो सुरीला सफर है उसमें क्या होने वाला है। हाँ, हम अपने नए श्रोताओं से ये जरूर कहना चाहेंगे कि www.facebook.com/vbsmumbai पर जाकर आप विविध भारती परिवार की जो टीम है, सदस्य हैं, उससे जुड़ सकते हैं, यानी विविध भारती परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, अपने विचार हम तक लिख सकते हैं। तो आज की इबारत है कि प्यार का सागर जब किसी की आंखों में उमड़ता है तो दिल किसी गहरे एहसास से लबालब हो जाता है, आंखों ही आंखों में बातें होने लगती हैं। यकीनन जब प्यार किसी से होता है तो प्यार का मौसम प्यार ही प्यार बरसाता है। आशिक दिल कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है, कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। सुनो, दिल ने फिर याद किया है तुम्हें, हाँ अब वो दिन दूर नहीं, बस समझो लग गई है महबूब की मेहंदी तुम्हारे हाथों में, यादों की बारात लेकर हम आ रहे हैं तुम्हारे राजकुमार। और हमारे श्रोताओं ने भी हमारी इबारत पढ़ने के बाद अपने विचार हम तक लिखे हैं। आप लिखते हैं कि आज गद्यांश पूरी तरह प्यार का सागर लेकर आया है। प्यार का एहसास एक ऐसी दिव्य और भावपूर्ण अनुभूति है जो जीवन को असीम लालित्य, सुंदरता और सार्थकता प्रदान करती है। ये केवल एक भावना नहीं बल्कि आत्मा का एक स्पंदन है जो दो हृदयों को एक अदृश्य डोर से बांध देता है। प्यार मन को कोमलता, धैर्य और गहरी शांति प्रदान करता है, जिससे जीवन की आपाधापी भी एक मधुर संगीत से प्रतीत होती है। इसके प्रभाव से ढलते सूरज की किरणें, बारिश की बूंदे और हवा का हर झोंका एक काव्यात्मक रूप ले सकता है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का एहसास सपनों का राज

कुमार, हाथों में मेहंदी, कुछ उमड़ते जज्बात और उस पल सिर्फ बस प्यार ही प्यार। एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत यानी एक छोटी सी सुखांत लघु कथा लग रही है। एक अनुरागिनी किशोरी है, उसके दिल में समाया प्यार का सागर आंखों में उतर आता है। उस मुग्धा की आंखें बोल उठती हैं, धीरे धीरे प्यार की रुत हमारे बाहर ले आती है। दिल बेकरार होता है, प्रीतम के बिना कुछ भी प्यारा नहीं लगता। और फिर वो दिन भी आता है जब यादों की पालकी में बैठकर अपने राजकुमार के नाम से लगी मेहंदी निहारते हुए उस प्रेमिका युवती का इंतजार संपन्न हो जाता है। इतनी सहज सुंदर प्यार भरे स्वप्निल अनुभूति के लिए धन्यवाद। आपको भी बहुत धन्यवाद इतनी प्यारी इबारत लिखने के लिए। एक श्रोता लिखते हैं कि चाहत की नदियां जब दिल के साहिल से टकराती हैं तो रूह में एक अजीब सी हलचल मच जाती है। खामोश निगाहें भी तब धड़कनों का हाल बयां करने लगती हैं। सचमुच जब जिंदगी में किसी खास की आमद होती है तो फिजाओं में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की खुशबू महकने लगती है। तब बेकरार दिल बस यही पुकारता है, ओ मेरे दिल के चैन तुम्हारे सिवाय इस जहां में मेरा कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। बहुत सुंदर आपने अपनी बात लिखी है, अपनी तहरीर लिखी है। एक श्रोता लिखते हैं कि तेरे नैनों की गहराई में उतरा हूं, जब से लगता है ये दिल बन गया है जैसे कोई प्यार का सागर बहती है जहां सदा अश्कों और जज्बातों की लहरें। मैं गा रहा हूं बस यही धुन, तू ही प्यार का सागर है, जब से छाई है तुम्हारे हुस्न की ये बहार। बदल सा गया है हर मौसम, बन गया है प्यार का मौसम मेरे राजकुमार। सज गई है हाथों में तुम्हारे चाहत की लकीर, जैसे सजी हो मेरे महबूब की मेहंदी। देखा दुनिया की इस भीड़ में गुम है मेरी दुनिया, क्योंकि मेरी आंखों में बसा है सिर्फ प्यार ही प्यार। खोया रहता है मैं अब तो बस तुम्हारे ख्यालों में, और दिल गुनगुनाता है चांद की चमक हुए तारों की छांव। इन हसीन नजारों में तुमसे अच्छा कौन है, तुम्हारी इस दिलकश अदा पर फिदा है सारा जहां, बस एक ही धड़कन गूंजे तुमसे अच्छा कौन है। अरे वाह, हम भी आपसे ये कहेंगे कि हमारे श्रोताओं से अच्छा कौन है। तो चलिए बढ़ते ही थोड़ा सा आगे और सुनते हैं आज का ये दूसरा शीर्षक गीत। आवाजें आशा भोंसले और किशोर कुमार की है। फिल्म का नाम है आंखों ही आंखों में। गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

तो ये गाना था फिल्म आंखों आंखों में का। आवाजें आशा भोसले और किशोर कुमार की थी। गीतकार थे हसरत जयपुरी और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। हमारे श्रोता लिखते हैं कि लालायत दिलों को लुभाती प्रेम रस से लबरेज इबारत है। हुस्नो इश्क को प्रीत की रीत का राहत दिखाती है। प्रेम रोग से पीड़ित दिलों को राहत प्रदान करते हुए प्रेयसी के हाथों की मेहंदी सजाकर अंततो गत्वा सुखद समापन करती है। यादों में ही सही बारात का जिक्र प्रेमी युगल को लाभान्वित करेगी। प्रेमारंभ से प्रेम बंधन तक का सफर तय करने का सुखद अनुभूति प्राप्त करने की हसरत लिए हम श्रोतागण भी आतुरता से इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल आप इंतजार करते हैं, हमें पता है, और इस सुरीले सफर में हमारे साथ रहते हैं अंत तक, हमें यह भी पता है। वहीं एक श्रोता लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर आज की इबारत हमारे सभी श्रोताओं ने लिख भेजी है। किसे पढ़ूं किसे नहीं समझ होता है, कई बार ऐसा लगता है क्या पढ़े और क्या ना पढ़ पाए। अच्छा, एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर लहरा रहा है, जब प्यार किसी से होता है तो दर्द सा दिल में होता है। आपने अच्छा उन गीतों को आपने लिख दिया है और कहा है कि आंखों आंखों में बातें होती हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और महबूब के हाथों में मेहंदी सजती है, यादों की बारात लिए सपनों का राजकुमार आता है। आज की इबारत एक पूरी प्रेम कहानी है जिसे हम सभी श्रोता आज की प्रस्तुता हमारे नाम से लिखा है आपने के मुखारविंद से सुनेंगे। बिल्कुल सुनेंगे और आप इस वक्त मुझे सुन भी रहे हैं, हमें सुन रहे हैं विविध भारती के जरिए। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में सब गाने लिख दिए गए हैं, इसलिए आज का सुरीला सफर बहुत ही आसान हो गया है। हमने आपसे क्या कहा था कि चलिए इस आसान सफर में हमारे साथ चलिए, आज डरिए मत, कहीं कुछ नहीं है, कांटे पथरीले पथ कुछ नहीं है, सब कुछ आसान है, सरल है। तो आप तैयार हो गए ना हमारे साथ चलने के लिए? कुछ श्रोता तो हमारे साथ चल भी दिए हैं। देखिए आप लिख भी रहे कि जब प्रेम सच्चा होता है तो आंखें ही दिल की आवाज बन जाती हैं, बिना कुछ कहे अनगिनत बातें हो जाती हैं, मेहंदी का रंग, यादों की बारात और दिल की पुकार सब मिलकर यही कहते हैं कि सच्चा प्रेम एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। यही इस इबारत का सबसे कोमल और दिल को छू लेने वाला एहसास है। नींद कहां आती है जब लग जाती है महबूब की मेहंदी हाथों में। और अब हम आपसे दो सवाल करने वाले हैं जिसका आपको हमेशा इंतजार रहता है ना? हमारा पहला सवाल आपसे बिल्कुल सीधा साधा कि आपको कौन से या कौन सा एक शीर्षक गीत का नाम लिखकर भेजिए। कौन सा शीर्षक गीत है जो आपको बेहद पसंद है? और हमारा दूसरा सवाल कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत वर्ष 1949 यानी 1949 में आई एक फिल्म में लिखा गया था, तो आपको बताना है कि वो फिल्म कौन सी थी और उसके गीतकार कौन थे, क्योंकि वो आगे चलकर महान गीतकार कहलाए। और सबसे बड़ी बात कि 1949 में आई इस टाइटल ट्रैक की सफलता इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन बहुत तेजी से, मतलब बहुत तेजी के साथ चलना शुरू हो गया था। तो आपको बताना है कि 1949 में आई इस फिल्म का नाम क्या है और उसके महान गीतकार कौन थे। तो अगला गीत जब प्यार किसी से होता है फिल्म का, आवाज हमने लता मंगेशकर की चुनी है, गीतकार हसरत जयपुरी हैं और संगीत दिया है

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने ये शीर्षक गीत सुना। फिल्म का नाम था जब प्यार किसी से होता है। हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि आज पहली बार मंदाकिनी जी की इबारत भी लंबी है। लंबी इबारत हो तो मैं कार्यक्रम नहीं सुनता, पर आज अवश्य सुनूंगा, क्योंकि मंदाकिनी जी की अविरल कलकल बहती नदी जैसी आवाज की वजह से क्या बात है। जैसे अरे लता मंगेशकर जी का हर गाना सुना जा सकता है उनकी आवाज की वजह से, चाहे गीत के बोल और संगीत कैसा भी हो, तब कोई भी गाना बुरा नहीं लगता। उसी प्रकार लंबी इबारत को भी बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन केवल आज तक। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी। लेकिन एक बात बताइए, इबारत तो बहुत छोटी सी थी। हम तो कोशिश यही करते हैं कि जितनी कम शब्दों में अपनी बात कही जाए वो ज्यादा बेहतर, और हमारी कोशिश ये भी रहती है कि हमारी इबारत थोड़ा सरल हो, ताकि हमारे श्रोता जो है परेशान नहीं हो और इस सुरीले सफर में हमारे साथ अंत तक बने रहे, है ना। एक श्रोता ने लिखा भी है इसके बारे में, आगे मैं उनके विचार पढ़ने वाली हूँ। बड़ा ही मस्त लिखा है उन्होंने। वही एक श्रोता अभी लिखते है कि आज का ये कार्यक्रम भीगतावासा प्यारा सा है। नमस्कार आपको, हमारा आज की इबारत तो पूरी प्यार से भरी है। आपके साथ पर एक बजे मजा दोगुना हो जाएगा, और आपने आज की टेक्स्ट से निकलने वाले संभावित शब्दों पर गाने भी लिखे हैं जो लगभग मुझे लगता है सारे ही सही हैं, ऐसा लग रहा है। एक आध गाना शायद नहीं हो सकता, बाकी आप खुद चेक कीजिएगा कि हमारी जो गानों की आज महफिल में हमने चुने हैं गीत वो

आपके गीतों से मेल खा रहे हैं या नहीं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत में प्रेम की गहराई का वर्णन खूबसूरती से किया है। फिल्मों के नाम को जोड़कर सुंदर गानों से इस एहसास को और मजबूत किया गया है। आपने भी फिल्मों के बहुत सारे नाम लिखे हैं, लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा तू प्यार का सागर है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि ये गाना फिल्म सीमा का है ना। और हमने आज चुना है शीर्षक गीतों का कार्यक्रम, यानी प्यार का सागर जब हमने गीत बजाया था तो उसकी फिल्म का नाम भी था प्यार का सागर, है ना, समझ आए ना आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में प्यार का सागर उमड़ने वाला है, वो भी किसी की आंखों में, और फिर आंखों ही आंखों में बात होगी, तो प्यार की बरसात होना बहुत ही लाजिमी है। दिल आशिकाना होकर किसी को याद करेगा तो महबूब की मेहंदी सुंदर हाथों में लग जाती है, क्योंकि यादों की बारात लेकर राजकुमार जी आने वाले हैं। प्यार का सागर देखा है किसी के, ये गीत तो जरूर बजना चाहिए, बज भी गया है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की भारत में फिल्मों के नाम और गीतों की पंक्तियां हैं, ये केवल हमारी भावनाओं का आईना ही नहीं बल्कि प्रेम की सच्ची भाषा है। इनमें प्रेम की मिठास, बिछड़ने का दर्द, मिलने की खुशी, यादों की गर्माहट है। जब दिल में प्यार का सागर हो, हाथों में महबूब की मेहंदी का रंग हो, साथ में यादों की बारात हो, तब जिंदगी किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं होती। कितना सुंदर लिखा है आपने, और मुझे लग रहा है कि जब आज प्रेम उमड़कर आया है इस सफर में, तो लोगों के दिल से प्रेम की बौछारें होने लगी हैं। यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रेम हमारी जरूरत है, ये प्यार है ना, ये स्नेह, ये इश्क, अलग अलग तरीके से किया गया जो प्यार है, अलग अलग रिश्तों में किया गया प्यार है, लेकिन मूल भाव उसका है प्यार, जिसकी हर इंसान को, हर प्राणी को बहुत जरूरत है। आप देखिए आपने कितने सुंदर विचार लिख डाले हैं आज प्यार पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और प्यार का मौसम फिल्म का ये शीर्षक गीत सुनते हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। इससे पहले हम अपने सवालों को एक बार फिर से दोहरा देते हैं। हमने आपसे पूछा था छोटा सा सवाल कि आपको कौन सा शीर्षक गीत पसंद है, किसी एक गीत का जिक्र आपको करना है। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि कहते हैं कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत 1949 में आई एक फिल्म से लिखा गया था, आपको बताना है ये फिल्म जो 1949 में आई थी वो कौन सी थी, इसके गीतकार जो कि महान गीतकार कहलाए वो कौन थे, क्योंकि उनकी भी ये पहली ही फिल्म थी। इतना हमने आपको क्लू दे दिया है, हिंट दे दिया है। और हाँ, 1949 में आई इस जो टाइटल ट्रैक की सफलता हुई वो इतनी बड़ी थी दोस्तों कि इसके बाद से ही टाइटल सॉन्ग्स का चलन तेजी के साथ शुरू हुआ। तो चलिए बढ़ते हैं आगे।

जी हाँ, ये है फिल्म का नाम प्यार का मौसम। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी हैं, संगीतकार हैं राहुल देव बर्मन।

हमारे श्रोता का लिखना है कि आज कुछ इस प्रकार के गीत बजने वाले हैं जो कि दिल की गहराइयों को छू जाएंगे, जिनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतनी गहराई से इस बात को समझा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इमारत की पहली सवा दो लाइन में चार फिल्मों के नाम और फिल्मी गीत लिखे गए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि आज तो इमारत में ही कई फिल्मों के नाम है, अब देखना है कि गीत कौन से सुनने को मिलते हैं। तो आपने देख लिया, सुन लिया ना कि आज हमने कौन से गीत चुने हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि इबारत पसंद आई, कम से कम फिल्मों के नाम तो क्लियर हैं, दिमाग को मेहनत कम और सुकून ज्यादा मिलेगा, ज्यादा उलझी हुई इबारत देने की कोई जरूरत भी नहीं होती है। ये गीतों के आनंद देने का लेने का कार्यक्रम है, कोई एमए हिंदी का पेपर नहीं जहां अनसीन पैसेज हल कराया जा रहा हो। अरे आपने इतना गंभीरता से ले लिया इस बात को, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे कार्यक्रमों में जब भी कोई इबारत लिखी जाती है तो गानों के आधार पर ही लिखी जाती है। कई बार आपको लगता होगा कि इबारत बहुत कठिन है और इसमें कौन से गाने बज जाएंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है जब आपको हिंट दी जाती है कुछ इबारतों में कि आज क्या बजने वाला है ना। तो इसे आप हिंदी का पेपर, एमए हिंदी का पेपर नहीं समझे। ये वाकई एक दिलचस्प प्रोग्राम है जहां सिर्फ हमें उस सुरीले सफर का आनंद लेना है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत से हमने जो शब्द चुना वो है प्यार। प्यार के बिना तो पूरी इबारत मानो सुनी। प्यार शब्द ने इस इबारत को बड़ा ही प्यारा बना दिया है। प्यार की सबसे खूबसूरत बात यही है कि जितना इसे बांटा जाए उतना ही दिलों में बढ़ता है। कुछ एहसास शब्दों में नहीं समाते हुए बस मुस्कान बनकर, चेहरों पर अपनत्व बनकर रिश्तों में उतर जाते हैं। कुछ रिश्ते नाम नहीं मांगते, बस अपनापन मांगते हैं। दो मीठे शब्द, एक सच्ची मुस्कान और दिल से निकला एहसास। बहुत गहरी बात आपने लिखी है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब दिल में प्यार का सागर उमड़ता है तो आंखों में ही अनकही बातें होने लगती हैं। फिर जीवन में प्यार का मौसम दस्तक देता है और मन बरबस कह उठता है, तुमसे अच्छा कौन है। बिछड़ने और मिलने के बीच भी दिल ने फिर याद किया कि मधुर धुनें दिल में गूंजती रहती हैं। जब रिश्तों की डोर और गहरी होती है तो हाथों में मेहंदी सजती है और खुशियों की यादों की बारात साथ लेकर सपनों का राजकुमार जीवन में प्रवेश करता है। यही तो प्यार की सबसे खूबसूरत कहानी है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर तरीके से आपने अपनी इबारत पेश की है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार कोई बड़ा इजहार नहीं बल्कि छोटी छोटी परवाहों का नाम है।

किसी की मुस्कान की वजह बन जाना, उसकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेना, हर हाल में उसका साथ निभाने की चाह, यही तो सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत पहचान। एक प्यारी सी बात, सच्चा प्यार फूलों की खुशबू की तरह होता है, उसे जोर से पकड़कर नहीं रखा जा सकता, लेकिन उसका एहसास लंबे समय तक दिल में महकता रहता है। सच मानिए, आपका ये प्यार भी हमारे दिल में महकता है। और देखिए, इसलिए तो हम अब जो गीत लेकर आए हैं उसमें सिर्फ प्यार होगा। हाँ, फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। आवाज मोहम्मद रफी की, शब्दकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।

जी हाँ, हमारे श्रोताओं ने हमारे सवालों का जवाब देना शुरू कर दिया है। एक श्रोता लिखते हैं कि शायद आपका जो सवाल है कि हिंदी फिल्मों में सबसे पहला शीर्षक गीत किस फिल्म के लिए लिखा गया, शायद फिल्म बरसात है और बरसात में हमसे मिले तुम सजन ये गीत हो सकता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्मी दुनिया का सबसे पहला शीर्षक गीत फिल्म बरसात से था और इसके गीतकार थे शैलेन्द्र। जी हाँ, और वहीं श्रोताओं ने और भी अपने सवालों के जवाब में लिखा है कि संजय दत्त, माधुरी दीक्षित और सलमान खान की फिल्म साजन जब रिलीज होने वाली थी उसके थोड़े दिन पहले ही साजन फिल्म का टाइटल सॉन्ग लिखा गया और फिल्माया गया और फिल्म में डाला गया था, यानी ये गीत इन्हें बेहद पसंद है फिल्म साजन का। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गाना है फिल्म नजराना का, जिसे मोहम्मद रफी ने गाया, गीतकार राजेंद्र कृष्ण और संगीतकार रवि है। बिल्कुल, आपने बहुत ही प्यारा गीत चुना है। एक प्यासा मुझे मैखाना दिए जाता है, जाते जाते भी ये नजराना दिए जाता है। बहुत सुंदर गीत है रफी साहब की आवाज में। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि शायद 1949 आई फिल्म बरसात पहली फिल्म थी जिसमें शैलेन्द्र जी ने बरसात में जब मिले हमसे तुम सनम तुमने ये गाना लिखा था। बिल्कुल सही जवाब है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सर्वाधिक शीर्षक गीत लिखने का रिकॉर्ड भी शैलेन्द्र के नाम पर ही है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों के जवाब हैं बूंद जो बन गई मोती, ये शीर्षक गीत सटीक इसलिए बहुत प्यारा लगता है, यानी बूंद जो बन गई मोती इस फिल्म का जो गीत है वो आपको पसंद है शीर्षक गीत। वहीं आप लिखते हैं कि दूसरा बरसात में हमसे मिले तुम सजन 1949 का पहला शीर्षक गीत है और गीतकार थे शैलेन्द्र। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 में सबसे पहली फिल्म बरसात में शैलेन्द्र जी ने बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम इस गीत की रचना की थी जिसे शंकर जयकिशन ने संगीतबद्ध किया था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत बहुत ही सरल और प्यारी है। एक श्रोता ने लिखा है जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात शीर्षक गीत मुझे पसंद है, पर इसके अलावा भी पसंदीदा गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, हम आपके हैं कौन ये गाना भी हमें बहुत पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि 1949 की प्रथम टाइटल संगीत राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म बरसात में मिले हमसे तुम सजन ये गीतकार शैलेन्द्र की रचना है जो सबसे पहली मानी गई है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि मेरा पसंदीदा शीर्षक गीत है दिल मेरा एक आस का पंछी, बहुत सुंदर गीत है ये। एक श्रोता लिखते हैं कि आपने मेरा मनपसंद गीत जब प्यार किसी से होता है बजा ही दिया है, ये गीत मुझे बहुत पसंद है। और एक श्रोता को दीवानो अरे दीवानो मुझे पहचानो, मैं हूं कौन मैं हूं डॉन डॉन, यानी डॉन फिल्म का गीत इन्हें बेहद पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि अखियों की झरोखों से आश्चर्य की बात है कि जिनकी आंखों की ज्योति बचपन से बुझी हुई थी ऐसे महान गीतकार और संगीतकार रविन्द्र जैन ने इसकी रचना की, ये गाना टॉप गाना था और इन्हें बहुत पसंद है ये गाना। और एक श्रोता को यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे जो हमारी लिस्ट में शामिल है, ये गाना बेहद पसंद है। और एक श्रोता को सफर फिल्म का गीत है जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, बहुत पसंद आता है। वहीं श्रोताओं को बहुत सारे गीत पसंद आए हैं, किसी को महबूब की मेहंदी फिल्म का टाइटल गीत बहुत पसंद है और किसी श्रोता को दिल एक मंदिर का टाइटल गीत पसंद है। वहीं श्रोता ने लिखा है कि आपके सवालों का उत्तर हमने दे दिया है फिल्म बरसात और सवाल के उत्तर यानी शैलेन्द्र। अरे हमने कोई प्रश्न पत्र थोड़ी रखा, ये तो हमारे कार्यक्रम के सवाल हैं जो हम सभी पूछते हैं अलग अलग तरीके से। कभी पूछा जाता है कि इस फिल्म का नायक कौन है, कभी पूछा जाता है नायिका कौन है, इस फिल्म में क्या था, आपने इस फिल्म को क्या देखा। तो हमारा सवाल भी इसी तरह से होता है कि आपकी पसंद का कोई शीर्षक गीत हो तो बताइए, या हमारी फिल्मी दुनिया में पहला शीर्षक गीत कब लिखा गया। तो इस तरह से ये सवाल जवाब ही इस कार्यक्रम को, इस सफर को अच्छा बनाते हैं, ऐसा हम मानते हैं और यकीनन आप भी मानते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म तुमसे अच्छा कौन है का शीर्षक गीत, रचनाकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन। कभी हम

तुम से अच्छा कौन है। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी में आग लगेगी पत्थर पिघल जाएगा। देखो तुमसे अच्छा

अनहोनी बात होगी। तुम जान हो तो तालम की और जान हमी पर दोगी। तुम जान हो तो आलम की और जान हमी पर दोगी। तुम जान हो तो आलम की और जान हमी पर दोगी। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा। पानी में आग लगेगी, पत्थर भी पिघल जाएगा। देखो तुम उससे अच्छा

प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए, प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए, प्यासे के पास नदी भी खुद प्यास बुझाने आए। कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा, पानी

लहर भी होगी जो आज है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी जो आज है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी जो आग है अपने दिल में वो आग उधर भी होगी कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा दिन भी आएगा पानी में आग लगेगी पत्थर भी पिघल जाएगा देखो तुमसे अच्छा

0: पत्थर भी पिघल जाएगा देखो तुमसे अच्छा कौन है देखो तुमसे अच्छा कौन है देखो तुमसे अच्छा कौन है
1: जी। तो हमारे श्रोता लिख रही हैं कि सुहाना सफर में सबसे शुरू हुआ नियमित सुनता हूं, इसमें बार बार वही घिसे पीटे गीत और विषय रिपीट हो रहे हैं। 70-80 के दशक गीत बिल्कुल नकार दिया, वही सुनकर बोरियत लगती है, जिसमें रहस्य शिक्षा प्रेरणा हो वर्तमान जीवन को लाभान्वित करे। आपको क्या आज के गीत भी पसंद नहीं आए बताइएगा हमें। हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसे गीत बजाए जाएं जो आपको अच्छे लगते हैं और कार्यक्रम में रोचकता लेकर आई है ना। आज के गीत आपको कैसे लगे इसके बारे में बताइएगा। हो सकता है आपकी पसंद हमारी पसंद से न मिलती हो, लेकिन हमारा उद्देश्य हमेशा बहुत ही सकारात्मक होता है कि हमारे श्रोताओं का हम उद्घोषक कितना अच्छा मनोरंजन कर सकते हैं, वही कोशिश हमेशा यानी हर बार होती है। एक श्रोता लिखते हैं कि जब तक खुद को प्यार का सच्चा मतलब न पता हो तो प्यार महबूब महबूबा मौसम झरना पानी पहाड़ फूल सावन ये सिर्फ शब्द होते हैं, लेकिन जब सच्चा प्यार होता है तो इन शब्दों में पूरा जीवन दर्शन होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज का कार्यक्रम बहुत ही सुरीला है, मैं ट्रेन का सफर कर रही हूं, ये सफर और साथ में विविध भारती का साथ सफर और भी सुरीला हो गया है। मौसम भी आज बहुत अच्छा है, बादल भी लुकाछिपी खेल रहे हैं, बहुत सुंदर। आप कार्यक्रम भी सुन रही हैं और प्रकृति को भी महसूस कर रही हैं, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। एक श्रोता लिखते हैं कि प्यार का सागर जब आंखों में उमड़ता है तो दिल गहरे

साथ से लबालब हो जाता है और तब यहां हृदय की भाव विवल अवस्था बन जाती है, जहां प्रियतम प्रेम में रस की अनुभूति को गहराई से महसूस करने लगता है और उनके आपस में संवाद शब्दों से नहीं होते, क्योंकि इस परिस्थिति में शब्द मौन हो जाते हैं। आंखों आंखों में जो संवाद होता है उसकी अलग भाषा होती है और किसी भी व्याकरण की सीमा से परे भाषा होती है। न कोई अल्प विराम, न पूर्ण विराम, बस आंखें बोला करती हैं और आंखें ही सुना करती हैं। क्या बात है, बहुत खूब। यहां प्रेम की अवस्था दिव्य रोशनी के साथ उनके प्रेम को एक अलौकिक आनंद से परिपूर्ण कर दिया करती है। यहाँ एक गीत की पंक्तियां साझा कर रहा हूँ। होठ झुके जब होठों पर सांस उलझी हो सांसों में, दो जुड़वा होठों की बात कहो इन आंखों में, मेरी जा मुझे जा न कहो। अरे वाह, फिल्म अनुभव का गीत आपने लिखा है और बहुत ही सुंदर आपने अपनी बात अपनी इबारत लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महबूब की मेहंदी हाथों में लगा लेते हैं।

की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और महबूब की मेहंदी हाथों में लगा लेते हैं। आवाजें लता मंगेशकर, हेमलता और साथियों की, आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की बोल।

कि आज सुरीला सफर अपने पूरी रफ्तार से मुकाम की ओर है। वाह वाह वाह, बहुत खूब। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम अंतिम गीत आपको सुनवा रहे हैं और उन सभी श्रोताओं से हम थोड़ा सा माफी मांगते हैं कि उनकी जो पसंद है उन्होंने लगातार, बहुत सारे श्रोताओं ने अपने शीर्षक गीतों की पसंद हम तक लिखी है, लेकिन कार्यक्रम में समय का अभाव है। अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम उन बातों को शामिल करें। बहरहाल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत, अंतिम पेशकश ये है।

जी, तो हमारी श्रोता लिख रही है कि आज आपके द्वारा प्रस्तुत की गई इबारत और गीतों में प्यारी प्यार से लबालब है और झलक रहा है। मेरी माता रानी से तहे दिल से प्रार्थना है कि सभी की झोली और जीवन में सच्चा प्यार बढ़े, ये मेरी दुआ है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की इबारत आपकी मधुर उत्स्फूर्त पेशकश और सभी शीर्षक गीतों को हम शीर्षक दे रहे हैं परिपूर्ति। वाह क्या बात है, धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। एक श्रोता लिखते हैं कि कोई एक गीत नहीं अपितु विषय के अनुसार विभिन्न प्रकार के गीत हमें प्रिय हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि तुमसे अच्छा कौन है, बल्कि विविध भारती से अच्छा कोई नहीं हो सकता। और एक श्रोता ने लिखा है

ये आवाजें किशोर कुमार और मोहम्मद रफी की थी। फिल्म का नाम था यादों की बारात। गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी थे, संगीतकार थे राहुल देव बर्मन।

जी हाँ, हमारे आंगन में भी इसी तरह हम नाचेंगे गाएंगे और नए सुरीले सफर पर फिर निकल पड़ेंगे किसी एक दिन और, है ना। तो तब तक के लिए यानी उस नए सुरीले सफर में चलने तक के लिए मंदाकिनी जोशी को दे दी इजाजत, फिर मिलूंगी। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम। इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जयघोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रिकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए इस श्रृंखला की 37वीं कड़ी।

0: वंदे मातरम, ये शब्द और इस गीत को व्यापक रूप से लोगों के सामने लाने का, या यों कह लें सबसे पहले जन जन तक पहुंचाने का श्रेय श्री अरविंद घोष को ही दिया जाना चाहिए। बंकिम चंद्र जी के साहित्य और वंदे मातरम में निहित दर्शन का, राष्ट्रवाद का प्रचार श्री अरविंद ने वंदे मातरम इस अखबार के माध्यम से बहुत असरदार तरीके से किया। वंदे मातरम के लिए लिखते हुए श्री अरविंद की साहित्य प्रतिभा कुछ अधिक ही जागृत हुई। वंदे मातरम पत्र के संपादक रहते हुए श्री अरविंद पर मुकदमा दायर हुआ, परंतु कागजों में आधिकारिक रूप से संपादक के तौर पर उनका नाम नहीं था, इसलिए न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो सका कि वंदे मातरम के संपादक वही हैं। उस मुकदमे के कारण श्री अरविंद को देश भर में सब जानने लगे और वंदे मातरम पत्र की बिक्री और भी बढ़ गई।
1: अगस्त 1907 के वंदे मातरम के अंक में उन्होंने नेशनल कॉलेज के छात्रों के सामने दिया गया अपना भाषण लेख के रूप में प्रकाशित किया था। उसमें उन्होंने कहा था,
2: हमारी मातृभूमि के इतिहास में आज ऐसा समय आ चुका है कि उसकी सेवा के सिवा अन्य सभी कुछ गौण हो जाता है और सभी की शक्तियों का उस एक ही जगह केंद्रित होना आवश्यक हो जाता है। यदि आप अध्ययन कर रहे हैं तो वो उसी के लिए करें। अपनी सारी शारीरिक और मानसिक शक्तियां मातृभूमि की सेवा के लिए खर्च करें। केवल उसी के लिए आप धनार्जन करें। आपकी महानता का उपयोग अंततः मातृभूमि के लिए ही होना चाहिए, इतना कि उससे देश बड़ा हो जाए, इतना बड़ा कि पूरे संसार के राष्ट्रों में उसका सिर सबसे ऊंचा रहे। प्राचीन काल में जैसे अन्य सभी देश मार्गदर्शन के लिए भारत की ओर ही देखते थे, वही जगह आपको उसे फिर से दिलानी होगी।
1: वंदे मातरम के लिए लिखा गया बहिष्कार की नैतिकता, ये लेख सरकार ने जब्त कर लिया और अलीपुर मुकदमे में सबूत के तौर पर पेश किया था। उस लेख में श्री अरविंद ने लिखा था,
2: राजनीतिक नैतिकता में न्याय और सात्विकता का स्थान है, ये सच है, परंतु वो नैतिकता एक योद्धा की नैतिकता होती है, धर्मगुरु की नहीं। अकारण किया गया आक्रमण अन्यायपूर्ण साबित होता है, दुष्ट हेतु से की गई उन्मत्त हिंसा भी निंदनीय है, लेकिन कोई तकनीकी नियम सभी कृतियों पर एक साथ लागू करना और उन्हें आपत्तिजनक कहना दर्शन का उपहास है, या उस दर्शन के किसी एक वाक्य की चौखट में संपूर्ण मानव जीवन को ठूंसने का प्रयास भी निंदनीय ही है।
1: उस समय भी वंदे मातरम इस समाचार पत्र के संपादक के रूप में श्री अरविंद नहीं बल्कि विपिन चंद्र पाल का ही नाम था। वंदे मातरम में लेखन के लिए संपादक के रूप में नाम वाले विपिन चंद्र पाल पर चल रहे मुकदमे का फैसला आया और उन्हें 6 महीने कारावास की सजा हुई। वो दिन था 26 अगस्त 1907। न्यायालय के बाहर हजारों नागरिक खड़े थे, भीड़ को विपिन चंद्र पाल के दर्शन हुए और सारी भीड़ वंदे मातरम का जय जयकार करने लगी।
0: वंदे मातरम के शब्दों का उच्चारण करते हुए लाठी चार्ज को सहजता से झेलने की तैयारी युवाओं में थी, परंतु आज कुछ अलग ही हुआ। निहत्थे लोगों पर बेतहाशा लाठी चार्ज करने वाले उस गोरे सार्जेंट पर भीड़ में से एक लड़का दौड़ कर गया और पल भर में उस लड़के ने उसे एक जोरदार घूंसा मारकर

0: जमीन पर गिरा दिया। आज तक सिर्फ जनता को मारने की आदत वाले उस गोरे सिपाही के लिए मार खाने का ऐसा अनुभव नया ही था। उस नन्हे लड़के को वहीं पकड़ लिया गया और 15 कोड़ों की सजा सुनाई गई। 15 साल के उस लड़के को सड़क पर लाया गया। सरेआम चौराहे पर उसकी नंगी पीठ पर चाबुक के कोड़े बरसने लगे। अत्यधिक वेदना होने पर भी उसके मुंह से चीखें या दर्द की कराहें नहीं निकल रही थीं, बल्कि हर कोड़े के साथ उस लड़के के मुंह से केवल यही शब्द निकल रहे थे, वंदे मातरम। फिर दूसरा कोड़ा, फिर वंदे मातरम।
1: आसपास की भीड़ क्रोधित हो गई थी। पीठ लहूलुहान हुआ वो लड़का अंततः बेहोश हो गया, परंतु होठ वंदे मातरम कहने के लिए हिलते ही रहे। उस लड़के का नाम था सुशील कुमार सेन। ये खबर पूरे कलकत्ता में फैल गई। सुशील कुमार के असामान्य धैर्य के सम्मान में 28 अगस्त को सभी महाविद्यालय बंद रखे गए। वरिष्ठ नेता सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने सुशील कुमार सेन को स्वर्ण पदक प्रदान किया। उस दिन कलकत्ता में लोग यही गीत गा रहे थे।

हे माँ, वंदे मातरम का उच्चारण करते हुए प्राणों का बलिदान करने में हमें जरा भी दुख नहीं होगा। क्या कोई पुलिस की लाठी का सामना करते हुए अपनी माँ को भूल जाएगा? हम सब इस प्रिय माता के ही

सात वर्ष बाद 1915 में क्रांतिकारियों की पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुए सुशील चंद्र ने वंदे मातरम कहते हुए ही मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये सारा प्रभाव था वंदे मातरम शब्दों का। वंदे मातरम इस

सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भ्रम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

छियासीवी कड़ी मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रिकर शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय वाचक स्वर जयंत पात्रिकर ममता सिंह सहभागी कलाकार यूनुस खान संगीतकार अजय पराड़ तकनीकी सहयोग किरण बंग प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे और प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।

0: जीवन अपना सुंदर सपना, कौन पराया कौन है अपना, प्यार सभी का अपने दिल में हो।
1: अभी आप सुन रहे थे देशगान, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दोपहर समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को होर्मुज जलडमरु मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा, व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान। और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: मोदी ने आज हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया। इस रेलगाड़ी का शुभारंभ रेलवे क्षेत्र में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन को अपनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 14,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। श्री मोदी ने 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। ये ग्रीनफील्ड कॉरिडोर 667 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और कटरा के बीच यात्रा का समय 14 घंटे से घटकर लगभग 6 घंटे हो जाएगा, जबकि दिल्ली अमृतसर की यात्रा का समय लगभग 8 घंटे से घटकर 4 घंटे हो जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्ष में भारतीय रेलवे में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने हाल के वर्षों में विकास के एक नए चरण को देखा है और प्रगति के पथ पर अग्रसर हुआ है।
1: 2 नए मेडिकल कॉलेज भी हरियाणा की सेवा के लिए समर्पित है। भिवानी में पंडित नेकीराम शर्मा मेडिकल कॉलेज और नारनौल में महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज और राव तुलाराम अस्पताल। इससे हरियाणा की स्वास्थ्य सेवा और सशक्त होगी। साथ ही इस यहाँ के नौजवानों के लिए डॉक्टर और अन्य मेडिकल प्रोफेशनल्स बनने के नए रास्ते भी बनेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि जींद भाजपा और एनडीए के सुशासन मॉडल का प्रतीक बनकर उभर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के शुभारंभ ने जींद को भारत के इतिहास में एक विशेष स्थान दिलाया है।
1: आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है। हम इस पर रिसर्च करते रहेंगे, लागत कम कैसे हो उसका तरीका ढूंढते रहेंगे, एफिशिएंसी कैसे बढ़े इस पर काम करते रहेंगे और बड़ी जांच पड़ताल करते करते एक के बाद एक कदम उठाते जाएंगे।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन के शुभारंभ को देश की तकनीकी प्रगति में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। श्री वैष्णव ने कहा कि ये उपलब्धि नरेंद्र मोदी सरकार के व्यापक रेलवे आधुनिकीकरण अभियान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि स्वदेशी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए दृढ़ राष्ट्र संकल्प का परिणाम है।
2: जींद में हाइड्रोजन बनाने का प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूँ।
0: भारत में डिजाइन और एकीकृत की गई इस ट्रेन को स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है। ये उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। जींद सोनीपत खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की परिचालन गति और 110 किलोमीटर प्रति घंटे की डिजाइन गति के साथ ये ट्रेन न केवल सुरक्षित है बल्कि 89 किलोमीटर के इस खंड पर तेज भी है। एक रिपोर्ट।
3: हाइड्रोजन से चलने वाली इस ट्रेन की शुरुआत होने के साथ ही भारत अब जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे उन चुनिंदा देशों की सूची में शामिल हो गया है जहां हाइड्रोजन ट्रेनें चल रही हैं। इस समय दुनिया में अभी ज्यादातर हाइड्रोजन ट्रेनें सिर्फ 2 या 3 डिब्बों की होती है और इन्हें छोटी दूरी की क्षेत्रीय मार्गों पर चलाया जाता है। इसके विपरीत भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन से चलने वाली इस 10 डिब्बों की ट्रेन तैयार की है जिसमें करीब 2,600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है जो ट्रेनों को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है जो हाइड्रोजन रिसाव, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। जींद से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दीपेंद्र कुमार।
0: संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के पूर्व कार्यकारी निदेशक और नॉर्वे के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहिम ने भारत की पहली हाइड्रोजन चालित रेलगाड़ी के शुभारंभ का स्वागत किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोलहिम ने इसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। प्रधान

0: मंत्री आज पंजाब के जालंधर से 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली रेल और सड़क बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं का उद्देश्य क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाना और आर्थिक विकास को गति देना है। प्रधानमंत्री आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देशभर के 75 पुनर्विकसित अमृत रेलवे स्टेशनों का भी उद्घाटन करेंगे। इनमें केरलम के 6 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय डीजीएमए ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है।
1: यह परामर्श खाड़ी क्षेत्र में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और हाल के दिनों में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमलों को देखते हुए जारी किया गया है। महानिदेशालय का कहना है कि इन घटनाओं से संघर्ष प्रभावित क्षेत्र में कार्यरत नाविकों और व्यापारिक जहाजों के लिए जोखिम काफी बढ़ गया है। समुद्री प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नाविकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण के साथ साथ भारतीय जहाजों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। आपातकालीन स्थिति में महानिदेशालय ने सभी नाविकों और जहाजों से महानिदेशालय संचार केंद्र या भारतीय नौसेना के सूचना संलयन केंद्र हिंद महासागर क्षेत्र से तत्काल संपर्क करने की सलाह दी है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति शर्मा।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज रात 3 दिन के दौरे पर पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे। श्री शाह कल राज्य के जुमागाज के सीमा चौक स्थित सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की 18वीं बटालियन से मिलेंगे और प्रहरी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। वे वृक्षारोपण अभियान में भाग लेंगे तथा कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री सिलीगुड़ी स्थित उत्तर कन्या में कई उच्च स्तरीय बैठकों का अध्यक्षता करेंगे। इन बैठकों में विभिन्न प्रशासनिक विषय, पश्चिम बंगाल में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन तथा जन्म मृत्यु पंजीकरण की स्थिति की समीक्षा की जाएगी। शाम को वह कलकत्ता के लिए रवाना होंगे। रविवार श्री शाह पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके अलावा वह कलकत्ता में राष्ट्रीय पुस्तकालय में नवनिर्मित वर्ल्ड म्यूजियम का उद्घाटन करेंगे। बाद में वह अमूल बंगाल डायरी का आधारशिला रखेंगे। संदीपन दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: संसद के मॉनसून सत्र से पहले सरकार ने इस रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक के दौरान सरकार संसद के दोनों सदनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग मांगेगी। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करने का कार्यक्रम है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र सम्मेलन भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, उनके आदान प्रदान, नवाचार और निवेश के लिए एक प्रमुख वैश्विक गंतव्य के रूप में देश की स्थिति को और मजबूत किया गया है। 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को मजबूत करना, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना तथा संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला को एक मंच पर प्रदर्शित करना था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 जुलाई से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ये किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की इन देशों की पहली यात्रा होगी। विदेश मंत्रालय के अनुसार ये यात्रा इन देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और पूर्वी यूरोप क्षेत्र के साथ सहयोग को नई गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। एक रिपोर्ट।
3: राष्ट्रपति मुर्मू 20 जुलाई को मोल्दोवा पहुंचेंगी, जहां वे राष्ट्रपति माया सैंडू से द्विपक्षीय वार्ता के अलावा संसद के अध्यक्ष इगोर ग्रोसू से मुलाकात कर व्यापार मंच को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति 21 जुलाई को उत्तरी मैसेडोनिया जाएंगी, जहां वे राष्ट्रपति गोर्डोना सिल्जनवोस्का दावकोवा, क्रिस्टिजन मिकोस्की और विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात करेंगी। राष्ट्रपति उत्तरी मैसेडोनिया की संसद और भारत उत्तरी मैसेडोनिया व्यापार मंच को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू 23 जुलाई से 2 दिवसीय रोमानिया यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे राष्ट्रपति निकोसोर डैंस सहित वहां के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगी। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोपीय

0: संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संघ ने पाकिस्तान से कहा है कि व्यापारिक लाभ पाने के लिए उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करना होगा। संघ ने कहा है कि जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंसेस प्लस के अंतर्गत पाकिस्तान को व्यापार लाभ 2027 से संशोधित जीएसपी ढांचे के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुपालन पर निर्भर करेगी। ये टिप्पणियां यूरोपीय आयोग और विदेश मामलों तथा सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि द्वारा तैयार की गई 2023-2025 अवधि की नवीनतम संयुक्त निगरानी रिपोर्ट में की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को अब भी भेदभाव, व्यक्तिगत हमलों, भीड़ हिंसा और पूजा स्थलों को नुकसान जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गिलगित बाल्टिस्तान विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें पाकिस्तान की संघीय सरकार से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को अस्थायी प्रांतीय दर्जा और संवैधानिक तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। दोनों पक्षों के समर्थन से पारित यह प्रस्ताव कल सत्र के दौरान सांसद जलाल अली शाह ने पेश किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर अमेरिकी चुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए एक व्यापक अभियान चलाने का आरोप लगाया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस से राष्ट्रीय टेलीविजन पर अपने संबोधन में चुनाव सुरक्षा से संबंधित खुफिया रिकॉर्ड को तत्काल सार्वजनिक करने की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 1% की वृद्धि दर्ज की गई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 771 अंक बढ़कर 77,957 पर, जबकि निफ्टी 195 अंक की बढ़त के साथ 24,268 पर कारोबार कर रहा था। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, उत्तराखंड, विदर्भ, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होने से पहले ही रद्द कर दिया गया। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला चीन की विश्व नंबर 4 चेन युफेई से होगा। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक पड़ाव पर पहुंच गई। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के भव्य रथ ग्रैंड रोड पर अपनी औपचारिक यात्रा पूरी करते हुए श्री गुंडीचा मंदिर के निकट स्थित पवित्र स्थल शारदाबली पहुंच गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के जींद में भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। 14,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने जहाज मालिकों को हुर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न करने के निर्देश दिए। यूरोपीय संघ ने पाकिस्तान में मानवाधिकारों की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा व्यापारिक लाभ पाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं का पालन करें। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज तेज बारिश का अनुमान और भारत की पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है।

0: चाचे चिक चिक चिक चा सच हूँ सपने तेरे।
1: फिल्म काला बाजार का गीत था ये, आवाज आशा भोसले की थी, शब्दकार शैलेंद्र थे और धुन सचिन देव बर्मन की थी। ये आवाज लता मंगेशकर और साथियों की फिल्म का नाम है जिस देश में गंगा बहती है। गीतकार हसरत जयपुरी हैं, संगीतकार शंकर जयकिशन हैं।
2: ओ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, ओ मैंने प्यार किया, ओए होए क्या जुर्म किया, तीनों को रंग हो गया गुलाबी गुलाबी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया। जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

बदलने का ये ढंग बहुत बेकार था, लाना भी कठिन था, चीजों का ले जाना भी दुश्वार था। इंसान ने तब मिलकर सोचा क्यों वक्त इतना बर्बाद कर, हर चीज की जो कीमत थी।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। श्रोताओं, इससे पहले आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म गर्लफ्रेंड का गीत। गीतकार साहिर लुधियानवी थे और संगीत दिया था।

फिल्म का नाम है चांद मेरे आजा, आवाजें लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की, गीतकार आई एस कपूर हैं और संगीत चित्रगुप्त का है।

0: ये आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था चांद मेरे आचा। जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। कार्यक्रम की अगली पेशकश इकबाल कुरैशी का संगीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म बिंदिया।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
3: यंग लोगों में जो होती है प्रॉब्लम, वो ज्यादा करके अर्ज इनकॉन्टिनेंस है, जो कभी कभी स्ट्रेस के कारण, कभी कभी कैफीन वगैरह ज्यादा पदार्थ लेने के कारण, ये सब चीजों से वो कंट्रोल नहीं कर सकते, जो काफी हद तक दवाई से कंट्रोल में आ सकता है, जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं।
2: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 20 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश, रोशन का संगीत, प्रेम धवन की रचना, आवाज आशा भोसले की, और फिल्म का नाम वल्लाह क्या बात है।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले की आवाज में फिल्म वल्लाह क्या बात है का ये गीत। और इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम हेलो सहेली के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

0: हेलो सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और श्रोताओं को आरती श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार। जब हो अपनों का साथ तो मजबूत रहते हैं हाथ, जीवन की हर कठिन राह आसान लगने लगती है जब परिवार, मित्र और शुभ चिंतकों का साथ मिलता है। अपने केवल सुख के साथी नहीं होते, बल्कि कठिन समय में हमारा सबसे बड़ा संबल बनते हैं। उनका विश्वास, स्नेह और प्रोत्साहन हमें हर चुनौती का सामना करने का साहस देता है। जब मन निराश होता है, तब अपनों का एक भरोसेमंद हाथ हमें फिर से आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही अपनापन रिश्तों को मजबूत बनाता है और जीवन में आत्मविश्वास का संचार करता है। इसलिए हमें अपने रिश्तों को प्रेम, सम्मान और विश्वास से सजोकर रखना चाहिए, क्योंकि अपनों का साथ ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी पूंजी है। चलिए देखें आज कौन से शहर से कौन सी हमारी सखी हमसे अपनी बातें करने वाली है। तो खत्म हुआ इंतजार, देखते हैं कौन और कहां से है आज की हमारी पहली कॉलर। हेलो सहेली।
1: हाँ जी, हेलो सहेली से बोल रहे हैं। मैं नीतू बोल रही हूँ, जोधपुर से मैडम।
0: अच्छा, जोधपुर से बोल रही हूँ, यानी कि राजस्थान से, है ना?
1: हाँ जी मैडम जी।
0: आपने बताया जोधपुर से रहती हैं, तो वहाँ पे क्या बहुत ही प्रसिद्ध चीज है, पहले तो ये बताइए हमें।
1: मैम जोधपुर का तो मिर्ची वड़ा बहुत फेमस है।
0: मिर्ची वड़ा यानी बहुत अच्छी चीज, मुझे बहुत पसंद है।
1: और मैम बारिश के मौसम में आप खाओगे ना, जब वहाँ पे खड़े खड़े, तो आप सोचोगे एक नहीं मैं चार खा लूं। हमारे
0: ये तो होता है, ये तो होता है। तो और ये तो चलिए खाने की चीज हो गई, वहाँ पे देखने लायक कौन सी चीज है?
1: मैम आप आइए मंडोर उद्यान देखिए, यहाँ का हमारे अच्छा देखिए, उम्मीद भवन जिसको बोलते हैं।
0: अच्छा हाँ, उम्मीद भवन बहुत सुना है इसके बारे में।
1: बहुत से सेलिब्रिटीज की यहाँ पे शादियाँ ऑर्गेनाइज होती है।
0: तब तो आपके जोधपुर में खूब चहल पहल होती रहती होगी सेलिब्रिटीज की, तो अच्छा लगता होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अभी हमारा नया एयरपोर्ट बनवाया गया है, रिनोवेशन हुआ है।
0: अरे वाह, बहुत बढ़िया बात है। तो यानी आने वाली ऐसी जगह है जिसको देखना चाहिए जाके जरूर, है ना?
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल। और बताइए आपके घर में कौन कौन है?
1: घर में मैम मेरे मम्मी है, मेरे पापा है, भाई है, भाभी है और मेरे दो भतीजियां हैं।
0: अरे वाह, तब तो भतीजियों के साथ खूब मस्ती चलती होगी, है ना?
1: बिल्कुल, उनका नाम ले।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए।
1: एक बड़ी वाली है हर्षिता और छोटी वाली है पुलकिता।
0: अरे
1: पुलकिता का आज 7th मंथ का बर्थडे है।
0: अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयां छोटी सी पुलकिता को, बहुत प्यारा नाम है, बहुत प्यारा नाम है, हर्षिता का भी और पुलकिता का भी। बहुत
1: दादा ने नाम रखे हैं, हर्षिता नाम रखा था।
0: हाँ जी,
1: तब सेकंड हुई है।
0: अच्छा, तो अच्छा।
1: पुलकिता रखेंगे
0: वही मतलब वही है, हर्ष उत्तर पुलकित हो ना। अच्छा, बहुत अच्छा नाम रखा है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, ये बताइए मुझे, आपके शौक क्या है?
1: मैं तो घर का काम करती हूँ।
0: घर के काम तो हम सभी करते हैं, लेकिन कुछ एक शौक होता है ना कि हम ये करें, इसमें हमें बहुत मन लगता है करने में, वो कौन सा काम है? वो डांस भी हो सकता है।
1: जॉब करती हूँ।
0: अच्छा, जॉब करती हूँ। अरे क्या बात है, आप सरकारी नौकरी में?
1: नर्सिंग ऑफिसर हूँ मैं।
0: बहुत बहुत बढ़िया बात है। तो सरकारी नौकरी में भी हमारी कुछ अपने जो शौक होते हैं, जैसे कोई डांस किसी को पसंद होता है, किसी को गाना गाना पसंद होता है, किसी मतलब अलग अलग चीजें होती है, किसी को खेल पसंद होता है, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, तो आपको क्या पसंद है?
1: मैम गाना तो मेरे को तो कोई आता नहीं, मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, साथ साथ वैसे गा लेते हैं, पर वो वाली सिंगिंग नहीं। लेकिन डांस का है तो वो शौक होता है, कभी कभी कर लेते हैं घर पे
0: जब थक के आते हैं आप, है ना, जॉब से।
1: बिल्कुल।
0: ये अच्छी चीज है, ये इस तरीके की जो चीजें होती है ना, वो हमें थोड़ा तरोताजा कर देती हैं थोड़ी देर के लिए, है ना?
1: हम
0: जो बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थक के आते हैं वहाँ पे, जो जॉब की परेशानियां होती हैं, वो सब चीजों से हम जब जूझ के आते हैं ना, तो एक कुछ थोड़े से जो पल होते हैं ना, वो हमें ऐसे होने चाहिए जो बिल्कुल हम उसमें अपने मन का काम करें, है ना?
1: बिल्कुल मैडम।
0: तो बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना चाहती हैं?
1: बारिश का मौसम है, मॉनसून सीजन है, तो मेघा रे मेघा रे।
0: अरे क्या गाना सुना आपने, बहुत बढ़िया गाना। तो सुनाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं केकता शेख बोल रही हूँ, गुजरात सूरत से बात कर रही हूँ मैं।
0: अच्छा, सूरत से बोल रही हैं आप
1: जी।
0: तो बताइए, आपको क्या करना अच्छा लगता है? पहले तो सूरत के बारे में बताइए कि वहाँ पे क्या ऐसी चीज है जो हम देखने आ सकते हैं वहाँ आपके पास।
1: सूरत में कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं,
0: अरे
1: ड्रेस
0: वाह,
1: बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं।
0: अच्छा, यहाँ वहाँ के कपड़े मशहूर हैं बहुत ज्यादा, है ना?
1: वहाँ के कपड़े बहुत मशहूर है,
0: अच्छा,
1: सब दूर दूर से हमारे एरिया में कपड़े खरीदने आते हैं।
0: अरे क्या बात बताई आपने, तो बहुत अच्छी चीज हमें पता चली है।
1: वो जो सलमा मैडम बेचते हैं ना, नए नए आए, उनकी आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। उन
0: बहुत
1: लोग
0: अच्छी
1: की,
0: बात है।
1: फिर नेहा जी की, फिर पूजा जी की, फिर आपकी, ममता दीदी की, इन सबकी आवाज बहुत अच्छी लगती है मुझे। बस सब तक पहुँचा देगा।
0: बिल्कुल, आप पहुंच गई सब तक आपकी आवाज। तो आप ये बताइए कि आपको खाने में क्या अच्छा लगता है सबसे ज्यादा?
1: मैडम मैं तो खाने में बिरयानी है, इतनी चीजें खा लेती हूँ, बिरयानी, दाल पुलाव, खिचड़ा। खिचड़ा हमारे में बहुत बनता है।
0: अच्छा, तो चलिए और बताइए, आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बहन है, मेरी मम्मी है, मेरा अब्बू है,
0: अरे वाह, तो सब लोग साथ में रहते हैं?
1: जी मेरी ऐसे शादी नहीं है, मेरी
0: हाँ,
1: दीदी की हो गई है।
0: अच्छा, आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: हेलो सहेली में मैं वो गाना पसंद करती हूँ, बॉडीगार्ड का।
0: अच्छा, आपको बॉडीगार्ड का गाना सुनना
1: कहानी है।

0: अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम हेलो सहेली में। तो देखते हैं कौन और कहां से है हमारी सखी जिनका कॉल लगा है अभी अभी। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए आप पहले तो अपना नाम और कौन से शहर से बोल रही हैं ये बताइए।
1: आरती जी, आप तो हमारे ही बेटी का नाम भी आरती ही है और वो आपका प्रोग्राम बहुत ही सुनती रहती है।
0: तो अच्छा लगता है।
1: बहुत अच्छा लगता है, 4 बजे तक सुनती रहती है और बोलती है मेरा नाम आया से गाना आया तो बहुत मजा आता है उसको। अच्छा। इसके लिए मुझे बोलती है कॉल लगा।
0: अच्छा तो कितनी बड़ी है आपकी बेटी?
1: मेरी

0: मंदबुद्धि की है ना, इसके लिए वो चल नहीं पाती।
1: अच्छा,
0: थोड़ी मंदबुद्धि की, अभी 30 साल की हुई, अभी अभी इसकी बर्थडे हुई गई।
1: अरे वाह, तो उसको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और बताइए, अब आपको मतलब क्या करना अच्छा लगता है अपनी बेटी के साथ? अब जब समय बिताती हैं तो किस तरीके से दिनचर्या रहती है?
0: मेरा उसको तो क्या है कि नक जो है ना वो रंगोना, शायद भी उखड़ जाए ना तो नक पॉलिश रंगवा लेती। चूड़िया तो 40-50 चूड़िया पहनती है।
1: अच्छा, और तो अच्छा लगता है, तैयार होना अच्छा लगता है।
0: हाँ, उसको तैयार होना, कपड़ा दो टाइम नहाना, खाना जो मांगे वो देना,
1: बहुत बहुत अच्छी बात
0: है। शरारत में हमारे पूरा दिन निकल जाता है।
1: नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज है अपने अपने आप से प्यार करना, है ना? अपने आप से प्यार करना सबसे पहले जरूरी होता है, और बहुत अच्छी चीज है। वो सजती है, संवरती है, अपने आप को अच्छा महसूस करती है, बहुत जरूरी है ये।
0: क्या है कि मेरा एक लड़का है बड़ा, और वो अभी शादी हुई, लड़की हुई, वो दूर रहता है, और अभी एक मेरी लड़की की शादी हुई प्रियंका।
1: अच्छा अच्छा,
0: आजवा रोड पे।
1: अच्छा अच्छा, बहुत बहुत आपको बताइए। और आपकी मतलब बेटी को ये तैयार होना अच्छा लगता है, उसे ड्राइंग करना अच्छा लगता है, कुछ ऐसी बनाना या कुछ इस तरीके की चीजें करना?
0: नहीं, ये सब नहीं। उसको तो क्या है कि वो गाना, रेडिया, वो अच्छा, सब बहुत पहले से सुनती रहती है। सलमान खान बहुत अच्छा लगता है, तो तेरे अच्छा, नाम का गीत सुनती है वो।
1: अरे वाह,
0: रोती है ना तो तेरे नाम का गीत सुना देते ना तो चुप हो जाए।
1: अच्छा, यानी उसे संगीत पसंद है। संगीत पता है आपको, एक बहुत अच्छी थेरेपी भी है।
0: हाँ, और आपका जो प्रोग्राम आता है ना वो सुनते हैं, उसमें से कुछ सीखना मिलता है, कोई खाना बनाना सीख लेते नए, कुछ बातें अच्छी सुनते तो किसी को बताते तो कोई खुश हो जाती।
1: बहुत अच्छी चीज है ये, बहुत ये समझ लीजिए बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आप तक हम पहुंच पाए। आपको अच्छा लगा जो हमारा प्रयास है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। अब बताइए, आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं जो आरती को पसंद है?
0: आरती को

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली
0: तो आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं बोल रही हूँ कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बोल रही हूँ।
0: अरे वाह,
1: सकीना है मेरा नाम। सकीना जी।
0: अच्छा, सकीना जी बोल रही हैं और बारामूला कश्मीर से बोल रही हैं। बहुत अच्छी बात है। तो बताइए अब अपने बारे में थोड़ा सा, आप क्या करती हैं और आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मैं घर में काम कर रही हूँ, पश्मीना का काम कर रही हूँ।
0: अरे वाह, पश्मीना का बहुत मशहूर है, कश्मीर का पश्मीना। एकदम नाम जुड़ा हुआ है कश्मीर के साथ में ना, पश्मीना का।
1: जी जी जी मैम
0: जी, तो आपके घर में कौन कौन है?
1: जी, मेरे घर में मेरी फैमिली है, मेरे 3 बेटे हैं, तो एक बेटा है, 3 बेटियां हैं।
0: अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो बताइए, बच्चे छोटे हैं आपके कि बड़े?
1: नहीं, अभी छोटे हैं
0: छोटे हैं, तो यानी आपको पूरा टाइम उनके साथ में लगना पड़ता होगा, है ना?
1: जी मैम।
0: आपको क्या करना अच्छा लगता है जब आपके बच्चे स्कूल गए होते हैं? मतलब आप जब अकेली होती हैं, आप कुछ कर नहीं रही होती हैं, तो आप क्या करती हैं अपने खाली समय में, जब कोई काम सब निपट जाता है घर का?
1: जब खाली में रहती हूँ ना, बस ये रेडियो सुनती हूँ और अपना काम करती हूँ। और क्या, ये पश्मीना से ज्यादा हम रखते हैं ना, घर का काम खत्म करके बस यही करते हैं।
0: नहीं, क्योंकि इसमें तो बहुत टाइम लगता होगा। अच्छा, आप इसे पश्मीना का क्या मतलब, शॉल बनाती हैं कि कोई
1: जी
0: ऊनी
1: मैम,
0: कपड़े?
1: शॉल बनाते हैं।
0: शॉल बनाती हैं, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है ये पश्मीना का शॉल तो, और वहां तो खूब अच्छे अच्छे तरीके के मिलते होंगे। अच्छा, पश्मीना के बहुत किस्में होती हैं कि एक ही मतलब
1: जी जी मैम,
0: होता है?
1: बहुत कस्में होते हैं पश्मीना की। जी,
0: अच्छा, तो आप सब तरह का बना लेती हैं?
1: दो
0: अच्छा
1: तीन
0: अच्छा
1: कस्म के बनाते
0: अच्छा
1: हैं।
0: तो ये आप मतलब अपने घर से ही उसको सेल करती हैं या फिर आप कहीं और देती हैं कि इसको?
1: नहीं, हम किसी और के जरिए ये काम करते हैं।
0: अच्छा, तो बहुत अच्छी चीज है, आप ये अपने अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं जो, है ना?
1: जी
0: क्योंकि
1: मैम।
0: बहुत जरूरी है, अगर आपको कुछ काम आता है तो उसका इस्तेमाल करना चाहिए ना, उसको आप अपने, जैसे कि हम अपने आप को थोड़ा सा और अच्छा कर सकें, है ना, थोड़ी सी मदद
1: जी
0: कर
1: जी
0: सकें,
1: मैम।
0: तो बहुत अच्छी चीज है आप जो कर रही हैं। घर में आप रह के इस तरीके से अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हैं। तो बताइए आज आपको कौन सा गीत सुनना है?
1: जी, मैं दिलवाले फिल्म है ना, उसका का कोई भी गीत मैं सुनना चाहती।
0: दिल वाले फिल्म का कोई भी गीत सुनवा दें आपको, है ना?
1: जी जी मैम।
0: चलिए, आपसे बात
1: थैंक
0: करके बहुत अच्छा लगा हमें, तो सुनाते हैं आपको
1: यू
0: आपके
1: मैम।
0: पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते, आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: हम रेखा मुखर्जी, वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद सातवी से बोल रहे हैं।
0: तो बंगाल में सबसे ज्यादा देखने लायक क्या चीज है जो हम वहाँ पर आकर देख सकते हैं?
1: यहाँ पर बहुत कुछ मिल सकते हैं जी।
0: जी बताइए।
1: यहाँ पर नवाब पैलेस है, रसगुल्ला भी है, यहाँ का मुर्शिदाबाद सिल्क भी विख्यात है,
0: अच्छा।
1: फेमस है, यहाँ का आम भी फेमस है।
0: अरे हाँ, मुर्शिदाबाद का आम और सिल्क।
1: फेमस है।
0: बहुत बहुत, ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं? आप हाउसवाइफ हैं या आप जॉब करती हैं?
1: हाँ हाँ जी, हम हाउस वाइफ है। हम लोग जो रेडियो में जो सुबह सकाल होता है ना,
0: हाँ,
1: उसी में हम लोग मैसेज भेजते हैं। जब
0: अच्छा।
1: हम लोग को लाइव फोन में जब नहीं मिलते हैं
0: हाँ,
1: तो हम लोग मैसेज भेजते हैं, स्टोरी पोएम लिख के भेजते हैं।
0: अरे वाह, आप लिखती भी हैं? आपको लिखने का शौक
1: हाँ,
0: है?
1: लिखती भी है। इस बार
0: अच्छा
1: भी हम भेजे,
0: अच्छा अच्छा
1: घर में मेरा पेड़ पौधे लगाए लगी हुई है,
0: हाँ, अरे
1: और
0: वाह।
1: मेरा घर में बहुत सारी चीजें है, जो पेड़ ओड़ है फूल का, उसमें रात को रहते हैं, उन लोग को हम दाना देते हैं,
0: बहुत अच्छी बात
1: तीन
0: है।
1: टाइम सबको दाना देते हैं हम।
0: अच्छा, तो आप इस चीज को बिल्कुल छोड़िएगा नहीं, आप लिखते रहिए, अच्छी अच्छी कहानियां लिखिए, पोयम लिखिए, कविताएं लिखिए, है
1: हाँ।
0: ना? और बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: संजम फिल्म का जू जू जू, जसोदा का नंदलाला, ब्रिज की उजाला है।
0: ठीक है, तो सुनवाते हैं आपको आपके पसंद का ये गीत।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का प्यार भरा स्वागत करती हूँ मैं आरती श्रीवास्तव। जरा ध्यान से सुनिए, ये फोन आपके संदेशों को हम तक पहुँचाने के लिए मीठी सी धुन सुना रहा है। हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली।
0: तो बताइए पहले अपना नाम और फिर अपने शहर का।
1: आओ सुंदर शहर बनाएं, डगर डगर पर वृक्ष लगाएं।
0: अरे वाह, क्या बात है, क्या शुरुआत करी है आपने, बहुत अच्छी बात कही है। एक मैसेज दिया आपने ना।
1: हसीना भी मंसूरी बोल रही, फालदाना का इंदौर से।
0: इंदौर से बोल रही हैं आप, हसीना मंसूरी? हाँ
1: जी जी,
0: बहुत अच्छा लगा। बताइए कि आपको क्या पसंद है, मुझे लग रहा है ना आपको कई सारी चीजें पसंद होंगी करनी, है ना। सबसे पहले तो आपको बातें करनी पसंद होंगी, जहाँ तक मुझे लगता है।
1: जी, बातें बहुत अच्छे करते हैं मैडम, और गाना भी सुनने का बहुत शौक। रेडियो चलता रहता दिन भर, मतलब कम से कम 2002 से तो हम रेडियो रेगुलर सुनते, कभी मिस नहीं करते मैडम।
0: अच्छा।
1: और रेडियो मतलब खाना छोड़ देते हैं मगर फोन जरूर लगाते हैं।
0: तो आपको कौन से प्रोग्राम पसंद है सबसे ज्यादा?
1: सबसे ज्यादा तो ये हेलो सहेली है, और पहले तो सच्ची सहेली आता तो उसमें लेटर भी शामिल किया करते थे मैडम, तो अगर वो मिलती थी अगर शामिल हो जाए तो बहुत अच्छा, क्योंकि हम लोग हमेशा भी लिखते थे उसमें, रिसेप्शन भी लिखते थे पहले, तो आप लोग बहुत शामिल भी करते थे, अच्छी अच्छी बातें लिखते थे हम लोग। ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात रहेगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सब तक पहुंच रही है। तो बताइए और क्या क्या करती हैं, आपको क्या पसंद है करना ये बताइए।
1: सिलाई करती है मैडम मेरा अधिकतर, तो ज्यादातर, और घर में काम भी, छुट्टी होती है तो घर में काम करना भी अच्छा लगता है।
0: ये तो बहुत जरूरी चीज है,
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: तो ये बताइए आप क्या क्या सिल लेती हैं?
1: ये गहने टेक का काम करते हैं मैडम, जूट का होता है।
0: अच्छा अच्छा, तो इसमें आप क्या मतलब क्या करना होता है, क्या बनाती हैं आप?
1: इसमें मशीन से रिपेयरिंग होता है, नहीं होता मशीन से नहीं चलता तो फिर हाथ से रिपेयरिंग करते हैं मैडम।
0: अच्छा, आप हाथ से भी कर लेती हैं?
1: हाँ, इससे रफो होता है मैडम।
0: अच्छा अच्छा, तो बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी काबिलियत है। बताइए आपको और क्या करना अच्छा लगता है?
1: अच्छा लगता है मैडम, आप लोगों से बात करना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
0: कुछ गाना गाना नहीं अच्छा लगता आपको? आवाज से लग रहा है मुझे
1: गाना गाना अच्छा लगता ना मैडम, आके बताते।
0: देखा ना, मैंने आपकी आवाज से पहचान लिया।
1: जी जी, फिल्म का नाम है फूल और अंगार, और मेरी फरमाइश भी है ये, और गाने के बोल हैं, चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे, अपना तुझे हम बनाएंगे, धीरे धीरे पास तेरे आएंगे, आके दूर फिर न जाएंगे। ये सुना दीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो सुनाते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और किस शहर से बोल रही हैं?
1: हेलो सही, हम बड़ागांव जिले में ना चंचल नाकर बोल रहे हैं।
0: आप क्या करती हैं?
1: मैं
0: आपके
1: 10th क्लास पढ़ती हूँ।
0: अच्छा 10th में आप पढ़ाई कर रही हैं, तो कौन से विषय से आप पढ़ाई कर रही हैं? आपको कौन सा विषय सबसे ज्यादा अच्छा लगता है?
1: हमको सबसे अच्छा विज्ञान लगता है, मतलब
0: विज्ञान? अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। और बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके आपके शौक क्या है? जो आप पढ़ाई के बाद आपका जो समय बचता है तो उसमें आप क्या करना पसंद करती हैं?
1: मुझको मतलब मेरा शौक ये है कि मैं आगे चल के डॉक्टर बन जाऊं।
0: डॉक्टर बनना है आपको? अरे वाह, बहुत अच्छी बात है भाई। ये तो कि आप लोगों की सेवा करना चाहती हैं, डॉक्टरी करना चाहती हैं। बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
1: हम सुनी सुनी सॉन्ग सुनना चाहते हैं, सलमान खान का।
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली।
1: हेलो सहेली मैम, नमस्कार।
0: नमस्कार। तो बताइए आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: मैं ग्राम प्रति पोस्ट कर जिला चंदौली से इंद्रजी यादव बोल रही हूँ। आप बोल रही हैं आरती श्रीवास्तव।
0: पहचान लिया आपने। तो सबसे पहले बताइए आप आपको क्या करना पसंद है?
1: मुझे मैं घर में रहती हूँ, थोड़ा बहुत घर का काम करती हूँ। मैम रेडियो के प्रोग्राम में सुनती हूँ, मैं ब्लाइंड हूँ।
0: अच्छा, तो प्रोग्राम सुनती हैं, तो आपको कौन सा प्रोग्राम सबसे ज्यादा पसंद है?
1: सभी प्रोग्राम अच्छा लगता है, और खासकर हमें सबकी सहेली सुनना बहुत अच्छा लगता है। जब आप लोग बातें करते हैं और हंसते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: आपको बहुत अच्छी बात है, ये आपको सखी सहेली अच्छा लगता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बताइए आप, जैसे कि आप गाने सुनती हैं, तो आपको कैसे, क्लासिकल गाने ज्यादा पसंद हैं या फिर आज के समय के?
1: जी नहीं, हर तरह के गीत पसंद है, नए हो पुराने हो, भक्ति हो या हिंदी हो, मुझे हर तरह के गीत पसंद है। और रेडियो सुनना मैं कभी नहीं छोड़ती हूँ। रेडियो से बहुत जो हमें कहीं से
0: हाँ,
1: खुशी नहीं मिलती वो रेडियो से मिलती है।
0: ये तो सही बात है। अगर संगीत जो होता है ना, वो एक दूसरे से बांध देता है ना,
1: जी
0: और
1: मैम,
0: साथ ही हमारे सारी परेशानियों को थोड़ी समय के लिए सही लेकिन दूर कर देता है। और आप जो ये प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे संगीत पे बेस्ड बहुत सारे प्रोग्राम है जो रागों के ऊपर होते हैं, क्लासिकल
1: जी
0: संगीत के
1: मैम,
0: प्रोग्राम है, वो सब भी आप सुनती हैं?
1: जी मैं हर तरह के गीत पसंद है और गाते भी हैं थोड़ा सा रेडियो के साथ में।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी चीज है। गाना जब हम गाते हैं ना, तो सोचिए अपने अंदर के एकदम ऐसा लगता है ना कि अपने अंदर का भी जो भी चीजें हैं, जो भी हमारे अंदर तनाव था, जो परेशानियां थी, वो खत्म हो रही है, धीरे धीरे खत्म हो रही है, रिलैक्स हो जाते हैं ना
1: जी
0: एकदम, ऐसा लगता है ना।
1: जी अच्छा लगता है।
0: तो आपको जो गाना सुनना है ना, वो आप गा के सुना दीजिए। बता दीजिए हमें।
1: मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है।
0: बहुत बहुत अच्छा, बहुत प्यारी आवाज है आपकी। तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: अबू है, दो बहने हैं, भाई है, सब है हमारे घर में।
1: अच्छा, तो बताइए आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपके क्या शौक है?
0: मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है,
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहती हैं?
0: और गाने के बोल उठा ले जाऊंगा तुझे मैं डोली में।
1: ओ ठीक है, तो आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली
0: आप कौन बोल रही हैं और कौन से शहर से बोल रही हैं?
1: जी, मैं मीनू अग्रवाल बोल रही हूँ, मथुरा से। मैं
0: अच्छा, तो बताइए मीनू जी, आप क्या करते हैं? आपको क्या करना पसंद है?
1: घर में भी रहती हूँ और मैं घर पे ट्यूशन लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और बाकी का मेरा मेरा जो इंटरेस्ट है ना, वो जैसे कि पेंटिंग है
0: हाँ
1: ना,
0: हाँ
1: और सबसे ज्यादा कुकिंग में है मुझे इंटरेस्ट। तो
0: अरे वाह, बहुत अच्छी
1: मुझे,
0: बात है।
1: हाँ, तरह तरह का खाना बनाना अच्छा लगता है
0: कौन कौन से तरीके के खाना बना लेती हैं आप?
1: जी। मैं वैसे तो अपना यही इंडियन फूड ही ज्यादा बनाती हूँ। और बाकी का, हाँ, बाकी का ये है कि और भी चीजें लेकर आती हैं, जैसे साउथ इंडियन डोसा, इडली, सांभर वगैरह, ये सब
0: अरे वाह,
1: चीजें।
0: क्या बात कर रहे हैं आप! इतनी तरीके की चीजें आप बना लेती हैं घर में?
1: हाँ जी, बिल्कुल।
0: तब तो आपके फैमिली, आपके जो परिवार है, सब लोग आपसे बहुत खुश रहते होंगे, है ना? आप बना बना के
1: हाँ
0: अच्छी अच्छी
1: जी,
0: चीजें खिलाती
1: कहते
0: होंगी।
1: हैं ना, हाँ जी, कहते हैं ना कि इंसान की जो पहली पसंद होती है।

0: घर में जो मेंबर्स होते हैं उनकी पहली पसंद होती है खाना. अगर उनको खाना हमने अच्छा दे दिया ना बना के, तो बस मैंने अभी बताया था पेंटिंग कुकिंग वगैरह है, तो मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाती हूँ और सेल भी होती है, ऐसी बात नहीं है मेरी पेंटिंग्स वगैरह.
1: बहुत ही, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. आप ड्राइंग कर लेती हैं, आप पेंटिंग बनाती हैं, आप खाने तरह तरह की बना लेती हैं, बहुत अच्छी बात है ये तो. और आप ऐसी ही बढ़िया बढ़िया चीजें बनाइए और किसी दिन हमें भी आप बुलाइए.

आज के हेलो सहेली कार्यक्रम का समय जैसे पंख लगाकर तेजी से निकल गया। आपकी इतनी प्यारी प्यारी बातों और सुरीले गीतों की पसंद ने तो हमें बांध ही लिया और पता भी नहीं चला कि कार्यक्रम अपनी समाप्ति के मोड़ पर आ गया। तो आज की हमारी मुलाकात बस इतनी, चलते चलते आपको जरूरी जानकारी दे देते हैं। आपकी कॉल्स की रिकॉर्डिंग प्रत्येक मंगलवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक की जाती है और आप हेलो सहेली कार्यक्रम में इन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं जो है 4002-4662 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 4002-4662 और एसटीडी कोड है 022। अब दूसरा फोन नंबर भी नोट कर लीजिए जो है 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022 यानी 2867-0288 और मुंबई का एसटीडी कोड है 022। तो इन नंबर्स पर कॉल लगाने के लिए कीजिए बस अगले मंगलवार तक का इंतजार। और हाँ, एक बात और याद दिला दे, हेलो सहेली कार्यक्रम हर शुक्रवार को 3 बजे से 4 बजे तक प्रसारित होता है, तो आपसे आग्रह है कि सुनना भूलिएगा नहीं। और हमारी जिन भी सखियों की कॉल आज नहीं लग पाई वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो, आप अगले मंगलवार को एक बार फिर से प्रयास कीजिएगा। और ध्यान रहे, लगातार किए जाने वाले प्रयास कभी न कभी कामयाब जरूर होते हैं और जिन सखियों का प्रयास आज सफल हो गया था उनसे भी हमारा प्यार भरा आग्रह है कि आप अगले 2 महीनों तक कॉल न लगाएं और अपनी सखियों को अवसर दें अपनी बात कहने का। तो आपको बता दें कि आज का हेलो सहेली का सफर तय किया आपने अपनी सखी आरती श्रीवास्तव के साथ। इस सफर में हमें सहयोग मिला रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले जी का, साथ ही संपादन में सहयोगी बनी है नम्रता टिकोले और विविध भारती की ओर से हेलो सहेली की प्रस्तुतकर्ता हैं अनुश्री पाठक। तो अब आरती श्रीवास्तव को दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: सुन रहे देश की सुरीली धड़कन विविध भारती कार्यक्रम गीतों भरी कहानी बस थोड़ी ही देर के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज हम आपको सुनवा रहे हैं श्याम महेश्वरी की कहानी भाई हो तो ऐसा। वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का।
1: अज्जू विज्जू की जोड़ी हमेशा चर्चा में रहती। परिवार में कहीं भी कुछ भी काम हो, जन्म मरण, शादी ब्याह, दोनों भाई लगकर काम करते। अज्जू माने अजय बड़ा भाई और विज्जू माने विजय छोटा भाई। 8 साल का अंतर था दोनों में, लेकिन दोनों की पट्टी बहुत। पटने का कारण था बड़े भैया अजय। विज्जू का बड़ा ध्यान रखते और विज्जू बड़े भैया को भगवान मानता। माने भी क्यों ना, पिक्चर जाना हो, वो भगत जी की रबड़ी जलेबी खाना हो या कुछ और, बड़े भैया अज्जू ही बंदोबस्त लगाते। विज्जू को पिताजी से बड़ा डर लगता, लेकिन अज्जू भैया में कुछ बात थी, पिताजी उनकी बात मान ही जाते। दोनों के बीच में दो बहनें, वो बड़ी वाली बड़े भैया की चमची और छोटी वाली विज्जू की सहेली। पूरा कुनबा बाहर से चाक चौबंद दिखता और अंदर से उससे भी ज्यादा मजबूत।

उस दिन विज्जू ने बड़ा खेल कर दिया। स्कूल से एक पत्र मिला था चेतावनी वाला, यदि विजय 6 मासी परीक्षा के किसी भी विषय में फेल हुआ तो फाइनल एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा। विजय बाबू ने चतुराई से उस चेतावनी पत्र पर पिताजी के हस्ताक्षर खुद कर दिए। 6 मासी परीक्षा हुई और विजय बाबू फेल हो गए। पत्र के आधार पर पिताजी को तलब किया गया। अब पिताजी को कहां से और कैसे ले आए विजय? परीक्षा वरीक्षा तो बात की बात थी, पिताजी तो इस कृत्य पे विजय की पहले ही जान ले लेते। ये बात बड़े भैया अज्जू को बताई गई और वो पहुंचे स्कूल विज्जू के अभिभावक बन के। बड़े भैया के इशारे पर विज्जू प्रिंसिपल मैडम के पैर में लोट गया, लेकिन प्रिंसिपल मैडम टस से मस ना हो। फिर अचानक पता नहीं क्या सूझी भैया को, बड़े ड्रामेटिक अंदाज में खुद पैरों पर गिर पड़े प्रिंसिपल मैडम के और माफी मांगने लगे। प्रिंसिपल मैडम की तो हंसी छूट गई, वो फिर हिदायतें देकर माफ भी कर दिया विज्जू को। विज्जू परीक्षा में फिर पास भी हो गया, लेकिन उस वाक्य को याद करके आज भी आंखें गीली हो जाती है अपने भैया की उदारता।

विजय कुछ 18-19 साल का रहा होगा। बड़े भैया अब दुनिया की आपाधापी में उलझ गए थे, 4-5 तरीके के धंधों में हाथ आजमाया, लेकिन कहीं कुछ बात बनी नहीं। उम्र हो गई थी सो उनकी शादी की बात चल निकली थी, और ऐसे में काम का ना होना और बड़ी दिक्कत दे रहा था। भैया के किए सारे एहसानों का विजू को स्मरण हो आया। यही वजह रही होगी शायद, भैया जो बोलते विजू कर डालता। मतलब वो दादाजी के खेत संभालने की जिम्मेदारी आई विजू पे, तो भैया के कहने पर वो भी कर दिया। वो जो नहीं बोलते विजू वो भी कर देता। वो कचरे से बिजली बनाने का काम किया भैया ने, तो विजू फैक्ट्रियों में घूम घूम के कचरा भी लाद लाद के इकट्ठा करता रहा। बड़ी बहन हालांकि बड़े भैया से छोटी थी, लेकिन उनकी शादी बड़े भैया की शादी से पहले हो गई। विजू शादी में इतना काम कर चुका था कि बहन की विदाई का समय आते आते वो कहीं पसर के सो गया। बड़े भैया ने ही आकर जगाया, बोले दीदी विदा हो रही है, आ जा, उनको बाय बोलकर सो जाना। मम्मी और बड़े भैया खूब रोए दीदी के विदाई पे। विजू को दीदी के जाने का रोना तो नहीं आया, लेकिन भैया को इतना रोते देख वो भी रो दिया। बैंड वाले ने वो विदाई वाला गाना बजा के माहौल और भी गमगीन कर दिया था।

बड़ी बहन की शादी के बाद दादाजी चल बसे। अज्जू भैया का वो बिजली उत्पादन कारखाना भी बंद हो गया, मतलब वो चालू था लेकिन भैया वहाँ जाते नहीं थे। पता नहीं पार्टनर्स लोगों से कुछ झगड़ा हुआ था शायद, पता नहीं। बिज्जू कभी भैया से सवाल नहीं करता था, उसे लगता था भैया जो कर रहे हैं वो सही ही है। दादाजी के जाने के बाद पिताजी और बड़े भैया एक दिन बिज्जू के पास आए कुछ प्रॉपर्टी के कागजातों के साथ। उन्होंने बिज्जू से उन कागजातों पर 8-10 जगह साइन करवाए। बिज्जू को याद आया उसे नदी में तैरना सिखाया बड़े भैया ने। वो पानी में थोड़ा दूर जाकर खड़े हो जाते और बिज्जू से कहते, कूद जा मैं खड़ा हूं तुझे संभाल लूंगा, और बिज्जू कूद जाता। बिज्जू हाथ पैर मार के उन तक पहुंचता तो वो और पीछे चले जाते, और बस यही खेल कर करके तैरना सिखा दिया भैया ने उसे। अब तो भैया कहें इस कुएं में कूद जा तो वो कूद जाए। इन कागजातों पर हस्ताक्षर कौन सी बड़ी बात थी? भैया के भावों से बिज्जू को हमेशा यही लगता जैसे कह रहे हो तो चिंता मत कर मैं

बड़े भैया की शादी की बात चल निकली, उनके लिए लड़की ऐसे ढूंढी जा रही थी कि बस राजकुमारी मिल जाए। भैया ठहरे भी गोरे चिट्टे स्मार्ट, दुल्हन अच्छी मिली, मतलब भैया जितनी गोरी तो नहीं लेकिन शांत स्वभाव की दिखी। हंसने में थोड़ी कंजूस मालूम पड़ती थी लेकिन विजय अपनी हंसी में उनको शामिल कर ही लेगा। इतना जोर जोर से हंसता है, कहां तक बचेगी भाभी प्यारी। सबसे ज्यादा उछलना विजय को आया भाभी के आने का। अलग अलग पकवान तरकारी खिलाएगी, गप्पे लड़ाएगी, ताश खेलेंगे घंटों बैठकर, और वो नदी किनारे पानी पूरी खाने जाएंगे और पता नहीं क्या क्या नाच नाच के काम किया विज्जू ने शादी में। विज्जू से बड़ी बहन की शादी, मतलब वो जो तीसरे नंबर की बहन, उसकी शादी भी साथ ही में हो गई। सहेली जैसी बहन गई तो सहेली जैसी भाभी आ गई। विज्जू अलग अलग तरीकों से बार बार बोलता, मेरी भाभी। ये बोलने में उसे बड़ा मजा आता। कारण तो नहीं पता लेकिन बेवजह ही इस उद्बोधन को हर बात में ले आता। मेरी भाभी ये, मेरी भाभी वो, मेरी

विभिन्न पत्रिकाओं में अलग अलग तरह की व्यंजन विधियां आती और विज्जू लाल आकर भाभी को देता। कभी मकई की टिक्की, कभी मखाने की खीर, कभी मेथी मटर के कोफ्ते मलाई वाली सब्जी। लेकिन एक के बाद एक भाभी ने कुछ नहीं बनाया। शादी के बाद विज्जू उनके चेहरे पर हंसी तो नहीं ला पाया, उल्टा जो एक हल्की सी वो मोनालिसा मुस्कान दिखती थी कभी, वो भी गायब हो गई। उम्र कम थी विज्जू की, लेकिन समझ में आ रहा था कि उसकी मां और भाभी की पट्टी नहीं थी, वही वो सास बहू वाला एंगल कह सकते हैं। विज्जू का दिल टूट गया। सुख बुघाट ये भी थी कि भैया का कुछ काम जम नहीं रहा था। अब वो तेल का धंधा कर रहे थे कुछ, आसपास वाले बताते हैं कि शायद तेल का सट्टा कर रहे थे। विज्जू के लिए सब कुछ समझ से परे था। आदतन कोई सवाल तो विज्जू करता नहीं था भैया से, लेकिन कुछ शंकाएं जरूर आई उसके मन में। अब घर में चुप्पी सी रहने लगी थी, अशांति वाली चुप्पी। विज्जू हंसमुख मिजाज का सरल लड़का रहा, ये सब कैसे भाता उसे। घर में टूटे तार बिखरे पसरे दिखने लगे, टिमटिमाती चमक लिए विज्जू की आंखों में अब सूनापन दिखने

0: भरी कहानी में आज आप सुन रहे हैं श्याम माहेश्वरी की लिखी कहानी भाई हो तो ऐसा।
1: विज्जू बड़ा हो गया था, फिल्म लाइन में आने का मौका मिला तो बंबई आ गया। आज का मुंबई कल बंबई ही था। अच्छा काम जमा लिया उसने। कालचक्र का पहिया भी अजीब है। बात कुछ ऐसी बैठी कि बड़े भैया का भी वहां काम जोरदार चल निकला और उससे भी बड़ी बात उन्हें हर सप्ताह मुंबई आना पड़ता अपने काम के सिलसिले में। मुंबई में आकर विज्जू के घर ही रहते हर हफ्ते 4-5 दिन। विज्जू को लगा तो यही था कि अपने गांव से दूर इस पराये शहर में भी भैया के आ जाने की वजह से वही अपनापन फिर लौट आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। भैया तनाव में ही दिखते हमेशा। पैसा आता है तो बरकत आ जाती है, लेकिन भैया के साथ उलट हुआ। भाभी का शांत स्वभाव सुना है अब ज्वालामुखी हो गया है। दोनों दीदियां बताती हैं अब वहां भाभी का ही राज चलता है। मम्मी पलंग पर आ लगी है और पिताजी को भगवान के सामने बैठने पर मजबूर कर दिया है

सालों साल निकल गए इस आपाधापी में। ये शहर अब बंबई से मुंबई हो गया। कोरोना काल में स्वास्थ्य की दृष्टि से तो विजय सही सलामत रहा, लेकिन कोई पिक्चर बनाई उसने जिसमें कमर टूट गई उसकी। नौबत यहां तक आ गई कि बिज्जू का घर बिक गया। और उधर गांव में सुना बड़े भैया ने बहुत पैसा जमा कर लिया था। मुंबई आने की अब जरूरत भी खत्म हो गई थी, इसलिए वे नहीं के बराबर ही आते, और आते भी तो बिज्जू के घर नहीं रुकते, वो कहीं किसी होटल में रुकते थे। आजकल बिज्जू को उनके हाव भाव व्यवहार से समझ आ रहा था कि उन्होंने इसलिए मुंबई आना बंद नहीं किया था कि उनकी जरूरतें पूरी हो गई थी, बल्कि

इसलिए बंद किया था कि भैया अब विज्जू से मिलने से कतरा रहे थे। उन्हें शायद ये डर सता रहा हो कि विज्जू इतने सालों मुंबई में रखने की कीमत न मांग बैठे। कठिन समय में अपने ही याद आते हैं, और वो अजय भैया जैसे अपने हो तो ज्यादा याद आते हैं।

विजय अभी भी अपने तो अपने होते हैं कि भावों से निकल नहीं पाया था पूरी तरह, लेकिन भैया ने तयशुदा पूरी तरह भुला दिया था बिज्जू को। चलो उसे भुला देते तो भी ठीक था, लेकिन इस वक्त जरूरत में था वो। यही सोचकर मेहरबानी समझ ही मदद का हाथ बढ़ा देते उसकी तरफ, पर ऐसा हुआ नहीं। तब विजय को याद आई अपने दादाजी की जमीन, वही जो दादाजी ने अजय और विजय के नाम कर दी थी और जिन कागजातों पर तब हस्ताक्षर करवाए थे विजय से, वो इसी जमीन को बेचने के कागजात थे। और उसी जमीन को बेच के भैया ने कपड़े की दुकान ली थी अपनी, जिसने आज

यहां तक पहुंचा दिया उन्हें। सुना है कुछ लाखों में बेची वो जमीन आज करोड़ों की हो गई है। नंगे के नवग्रह बलवान विजय ने सोचा और तय किया कि उस जमीन का अपना हिस्सा भैया से अब मांग लेगा। उनके पास बहुत है ही और इसके पास सब खत्म हो गया है, तो ये सही समय है अपनी हक की गुहार लगाने का।

मीडिया से बात की बिज्जू ने तो वे साफ मुकर गए। तर किए कि उस जमीन को बेचना तो छोटी सी बात थी, मेन बात तो यह थी कि उनकी मेहनत थी जिसकी वजह से आज ये मिल्कियत खड़ी हो पाई। तर्क नहीं कुतर्क था ये, विजय की तो सिट्टे पिट्टे गुम हो गई। इतने सालों उन पैसों को भोगने के बाद वो अपने ही हो जाते हैं। बड़ा कठिन हो जाता है उन पैसों पर से अपना मोह जाने देना। पैसों का चरित्र कुछ ऐसा ही है, नकारात्मकता बहुत जल्दी आ जाती है। रुआब और रुतबा तो बढ़ता है लेकिन घमंड और लालच भी बढ़ जाता है। पैसों के शुद्धिकरण के लिए बड़ा दान धर्म करना पड़ता है, तब पछता है पैसा। भैया छोटे भाई को उसके हक का छोड़ो उसकी जरूरत का नहीं दे पा रहे थे तो दान धर्म कहां से करते? कहां से चले थे अज्जू भैया, कहां पहुंच गए? और कहां से चला था रिश्ता, कहां पहुंच गए?

विजय ने खूब गुहार लगाई अपने नाते रिश्तेदारों के पास जाकर, अपने हक का गान बखान किया, लेकिन भैया के खिलाफ कौन खड़ा होता। समरत को नहीं दोष गोसाई, पैसे वालों की कहां कभी कोई गलती होती है। विजय को अपना हक नहीं मिलना उतना नहीं चुभ रहा था जितना उस भरोसे का टूटना जो उसने भैया पे दिखाया था। जान लुटाता था वो बड़े भैया पे। कोई अभी भी कह दे कि ये सब झूठ है, अभी भी बड़े भैया आएंगे सांता बन के उसको सरप्राइज गिफ्ट देने, पर वो नहीं आए। विजय के इतने साल जीवन का अहम हिस्सा झूठा साबित हो गया। अब वो किसी पे भी भरोसा कैसे करेगा, और दूसरों पर तो जाने दीजिए खुद पर भी भरोसा कैसे करेगा।

0: बड़ी।
1: आज विजय बेघर है, दिन भर बैठा रोता रहता है, रातों को सो नहीं पाता। इधर गरीबी की मार और उधर विश्वास का खंजर, शूल से चुभन हिस्सा बन गई है जीवन का। कलयुग की यह घटना कितनों के ही साथ हुई है। संवेदनशील विजय कई तरीकों से अपने आप को संभालने का प्रयास करता रहा।

प्रयास करते रहने की एक विशेषता है। मुश्किलों से जूझने के लिए हिम्मत मिलती रहती है। प्रयासों की खुराक सुबह दोपहर शाम लेना शुरू कर दिया उसने दवाई की तरह, कहीं ज्ञान की बात सुनता तो कहीं ध्यान की कोई क्रिया करता। ऐसे ही एक ज्ञान में यह समझ आया कि पिछले जन्म का कोई हिसाब किताब बचा रहा होगा बड़े भैया से, जो इस जन्म में पूरा हो रहा है। इस ज्ञान ने उसे हौसला दिया और नतीजा भी तुरंत निकला। विजय का बेटा अंधेरे में रोशनी की किरण लेकर आया, अच्छी पढ़ाई करके अच्छी नौकरी पा गया और सबसे महत्वपूर्ण, विजय के प्रति पूरा समर्पित। कलयुगी भाई गया तो सतयुगी बेटा आ गया। कुछ जाता है तो कुछ आता भी है। अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब

अभी रात है तो कल सवेरा होगा ही। जीवन के इस हिसाब किताब को समझने के बाद आज विजय शांत है। एक रिश्ते के सामने जीवन का ज्ञान पा जाना उसे भगवान का दिया उत्तम न्याय लगा। आज विजय भैया के लिए नरम हो चुका है। कल तक ये सोचने वाला विजय कि भाई हो तो ऐसा ना हो कि जगह सोच रहा है, भाई हो तो ऐसा

भाई हो तो ऐसा ये गीतों भरी कहानी अभी आपने सुनी। लेखक थे श्याम महेश्वरी, संपादक स्नेहल भिसे, वाचन स्वर श्याम महेश्वरी का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी।

101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। शाम के 5 बजे हैं। आप सभी श्रोताओं का हमारी सायंकालीन सभा में स्वागत है। आइए अब आपको अवगत करवाते हैं हमारी आज की सायंकालीन एवं कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित एवं अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण से।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक। वहीं शाम 7 बजे समय रहेगा किसान श्रोताओं का कार्यक्रम चौपाल का। सदाबहार नगमों के कार्यक्रम फिल्म संगीत में आपको लेकर चलेंगे रात्रि 10 बजे।

विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे शाम 5:30 पर एवं रात्रि 9:00। वहीं आकाशवाणी के जयपुर से कार्यक्रम से प्रसारित सुन पाएंगे आप शाम 7:30 पर।

हमारी शाम की सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। शाम 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार एवं 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। वहीं रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 11:00 हिंदी में समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

कल की प्रातःकालीन सभा में चिंतन सुनेंगे आप प्रातः 6:05 पर और कार्यक्रम वंदना आप सुनेंगे प्रातः 6:10 पर आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से। हमारे स्टूडियो से प्रसारित कार्यक्रमों में प्रातः 6:30 पर समय रहेगा कार्यक्रम रामचरितमानस गान का। वहीं किसान भाइयों का कार्यक्रम खेती निवाद आप सुनेंगे प्रातः 6:45 पर और आदिवासी लोक संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 6:50 पर।

कार्यक्रम वातान आप सुनेंगे प्रातः 7:20 पर। वहीं दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से का समय रहेगा प्रातः 8:15 पर। दिल्ली जज्बातों का कार्यक्रम कुछ दिल से आप सुनेंगे प्रातः 8:15 पर। वहीं कार्यक्रम सुगम संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 9:10 पर और प्रातः 11:00। वहीं सदाबहार नगमों का कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे प्रातः 11:30 पर।

विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे प्रातः 7:30 पर, प्रातः 9:30 पर एवं दोपहर 12 बजे। हमारी कल की प्रातःकालीन सभा में समाचारों का समय कुछ यूं रहेगा। प्रातः 6 बजे हिंदी में समाचार एवं प्रातः 8 बजे समाचार प्रभात आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। वहीं प्रातः 9 बजे आप सुनेंगे आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी आज की प्रातःकालीन एवं सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण, जो यहीं संपन्न हुआ। शाम के 5:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक।

जानकारी हमारे लिए परेशानी का सबब बन सकती है, तो आइए जानें कैसे। मानो जानकारी जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा जानकारी उलझन पैदा कर देती है। इससे हमें फैसला लेने में समय लगता है। हम समझ नहीं पाते कि हमें क्या जरूरी है हमारे लिए और क्या नहीं। ऐसे समय पर बात करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें पहले से ही तय कर लेना चाहिए कि हमारे लिए कितनी जानकारी जरूरी है, क्योंकि ज्यादा जानकारी जुटाना भी हमारे लिए सही नहीं होता। एक सीमा तय करके ही अपने शोध कार्य को प्रारंभ करें, फिर आगे कार्य करना प्रारंभ करें। सही समय पर फैसला लेकर आगे बढ़ें और अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का प्रयास करें। इसी के साथ नारी लोक कार्यक्रम सुनने वाली सभी श्रोता बहनों को अपनी बहन तस्लीम कौसर का प्यार भरा नमस्कार। तो आइए बहनों, अब रुख करते हैं चर्चा की ओर। आज का हमारा विषय है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, जो आज ही के दिन यानी 17 जुलाई को मनाया जाता है। बहनों, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर वर्ष 17 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिन 17 जुलाई 1998 को रोम संधि अपनाए जाने की याद दिलाता है।

तो आपको बड़े बैग में उन्हें टटोलने की जरूरत ना रहे। दोनों अपने बैग की जेबों को सही उपयोग करें, अलग अलग जेबों में अलग अलग सामान रखें, जैसे एक जेब में पैसे रखें, दूसरी में अपने आईडी कार्ड्स वगैरह रखने का प्रयास करें। इसी तरह से भारी और हल्की चीजों को संतुलित रखें, जैसे हमेशा भारी सामान जैसे किताबें या हमारे पास अगर लैपटॉप उपलब्ध है साथ में रखते हैं तो उसे अपनी पीठ के सबसे करीब रखें, इससे आपको कंधे पर अधिक दबाव नहीं पड़ेगा। पानी की बोतल की जब हम बात करें तो उन्हें हमेशा बाहर वाली जेब में ही रखें, तभी कभी अगर पानी लीकेज होता है तो अंदर रखे सामान आपके जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब होने से बच जाएंगे। इसी तरह अपने बैग को हमेशा व्यवस्थित रखें ताकि आपको समय रहते सभी सामान व्यवस्थित एवं सही तरीके से आपको मिल जाया करे। तो बहनों, अगर आप अपने बैग को सही तरीके से रखना चाहते हैं तो अवश्य ही समय समय पर उसकी साथ संभाल करते रहें, उसकी सफाई करते हुए नेसेसरी जो चीजें होती हैं उन्हें ही बैग में रखने का प्रयास करें, अन्यथा उन्हें निकाल देवें। तो बहनों, बातचीत हम आपसे और भी बहुत सी करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर घड़ी पर हमारी नजर जाए तो पता चलता है कि हमारा कार्यक्रम का समय जो है वो समाप्ति की ओर है। फिर मिलने के वादे के साथ दीजिए अपनी बहन तस्लीम को इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे महिला श्रोताओं का कार्यक्रम नारी लोक, जो यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं विविध भारती के मुंबई केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम तराने नए पुराने।

कार्यक्रम तराने नए पुराने सुनने वाले सभी नए पुराने दोस्तों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, शुभ संध्या। आवाज की दुनिया के दोस्तों, आप हैं हमारे साथ और हम हैं आपके साथ। और कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए लता मंगेशकर की आवाज में। गीतकार हैं देव कोहली, संगीतकार हैं राम लक्ष्मण। फिल्म का नाम है मैंने प्यार किया।

अभिनेत्री जरीना वहाब को उनके जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ साथियों आइए सुना जाए ये गीत येसुदास की आवाज में। गीतकार संगीतकार है रविंद्र जैन, फिल्म का नाम है नैया।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: विविध भारती, हर पल साथ, हर पल खास।
0: बेचारा
2: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
1: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक,
2: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
1: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
3: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर। सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
2: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
1: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
2: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
4: विविध भारती के चाहने वालों के लिए अगला गीत है अमिताभ बच्चन, एस जानकी, शब्बीर कुमार और अनु मलिक की आवाजों में। गीतकार है राजेंद्र कृष्ण, संगीत है अनु मलिक का, फिल्म का नाम है मर्द।

प्यार हो

0: कहाँ के लौकी बोला? हाँ, बात में बहुत दम है। छाती ठोक ठोक के बोला।
1: हे मैं तेरी टांग पाली।

ਪੰਜਾਬ।

साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है येसुदास की आवाज में। गीतकार संगीतकार है रविंद्र जैन। फिल्म का नाम है चित चोर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य कनेक्टिविटी को मजबूत करना, यात्रियों की सुविधा में सुधार करना और क्षेत्र में आर्थिक विकास को गति देना है। उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्निर्मित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र की एनडीए सरकार भारत के प्रत्येक नागरिक की सेवा को प्राथमिकता देती है, उनके जीवन को सुगम बनाती है और उन्हें प्रगति के नए अवसर प्रदान करती है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र और 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। उन्होंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज और सेक्टर 46 के सरकारी कॉलेज में छात्रावास भवनों का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसारावपेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं, ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। संसद के मॉनसून सत्र से पहले मंत्रियों के समूह की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने की 13 तारीख तक चलेगा।

0: शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 965 अंक बढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। निफ्टी 262 अंक की बढ़त के साथ 24,334 पर पहुंच गया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारत की टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। साथियों, एक बार फिर तराने नए पुराने कार्यक्रम के शेष भाग में आप सभी का अभिनंदन है। आनंद बख्शी का लिखा गीत सुनिए, एस जानकी, किशोर कुमार, जावेद जाफरी और साथियों की आवाजों में। संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम है मेरी जंग।
2: Welcome, friends, to the show that never ends. I've taken the chance to make you dance. You will move your feet and groove. So then, which beat would you like? Dosto, kaun sa dance pasand karenge aap? Rumba?
3: No! No!
2: Samba?
3: No! No!
2: Rumba?
3: No!
2: Samba?
3: No!
2: Tequila?
3: No!
2: Tango?
3: No!
2: Charleston?
3: No!
2: Polka?
3: No!
2: No?
3: No!
2: Phir kya ho? One!
3: No!

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का,
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं अलका याग्निक और कुमार सानू की। नगमा निगार है समीर, संगीतकार है आनंद मिलन, फिल्म का नाम है अनाड़ी।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: साथियों, अगला गीत आपको सुनवाते हैं एस जानकी और बप्पी लहरी की आवाजों में। गीतकार है अनजान, संगीत है बप्पी लहरी का, फिल्म का नाम है साहिब।

भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस ने वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद सोनीपत के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन चालित ट्रेन को आज रवाना किया। उन्होंने हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने

0: 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। 157 किलोमीटर लंबे दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे को राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी का रेल परिवहन हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी से संचालित होगा। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है। अब तक जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका में ही ये सुविधा उपलब्ध है। 10 कोच वाली इस ट्रेन में 2600 यात्रियों के सफर करने की क्षमता है, जबकि दूसरे देशों में हाइड्रोजन ट्रेन 2 या 3 डिब्बों की होती है। इससे भारत में स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वदेशी तकनीक से बनी 3200 हॉर्स पावर वाली इस ट्रेन को रेलवे इंजीनियरिंग की उत्कृष्ट उपलब्धि बताया। उन्होंने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत कहा।
1: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नमो ग्रीन रेल की प्रौद्योगिकी को पर्यावरण अनुकूल बताया। उन्होंने कहा कि इस ट्रेन में डीजल की जरूरत नहीं होती है।
2: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
0: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क क्षेत्र की करीब 4,700 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसके बाद श्री मोदी ने देशभर में पुनर्विकसित 75 रेलवे स्टेशनों का जालंधर कैंट से वर्चुअल उद्घाटन किया। इसमें प्रदेश के 8 रेलवे स्टेशन जैसलमेर, बाड़मेर, दौसा, डीग, गंगापुर सिटी, गोटन, खैरथल और सोमेसर शामिल है। इन स्टेशनों पर आयोजित कार्यक्रम से स्थानीय प्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में लोग जुड़े। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर जिले के गोटन रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम से पुनर्विकसित अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के लोकार्पण समारोह से जुड़े। इस मौके पर श्री शर्मा ने कहा कि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है, उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। मुद्रास्फीति और रुपया स्थिर और सामान्य बना हुआ है। डीडी न्यूज के साथ विशेष बातचीत में श्री मल्होत्रा ने भारतीय अर्थव्यवस्था और मौद्रिक नीति के बारे में विस्तार से चर्चा की। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि भारत का सेवा निर्यात, रिकॉर्ड विदेशी निवेश, एफडीआई और नए व्यापार समझौते अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति में बाधाओं से महंगाई का दबाव है। अनिश्चितता की इस स्थिति में भारत सभी क्षेत्रों में मजबूत बना हुआ है।
4: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी एमपीसी की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूं।
0: कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग की ओर से आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाया गया। इसमें 50 से अधिक कंपनियों ने विभिन्न पदों के लिए सैकड़ों आशार्थियों का चयन किया।

0: उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने रोजगार सहायता शिविर को संबोधित किया। उन्होंने स्थानीय स्तर पर ही युवाओं को कौशल आधारित रोजगार देने की बात कही। श्री राठौड़ ने बताया कि सरकार अब तक 24 रोजगार मेले आयोजित कर चुकी है।
1: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे, और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार दे।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आज भरतपुर के भुसावर में नए कृषि महाविद्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान श्री बागड़े ने विभिन्न विकास कार्यों की भी सौगात दी। राज्यपाल ने महाविद्यालय परिसर का भ्रमण कर विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने किसानों से जैविक खेती को लेकर भी चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉ किरोड़ी लाल मीणा भी शामिल हुए। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। इससे पहले आज नई दिल्ली में एनडीए के मंत्रियों के समूह की बैठक हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, केंजराबू राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में मौजूद रहे। बैठक में संसदीय सत्र की रणनीति पर चर्चा की गई। मॉनसून सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा और उन्हें पारित करवाने का कार्यक्रम है। सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किसी भी तरह की वित्तीय और अन्य गड़बड़ियों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। इसके तहत बीते 3 महीनों में 51 संबद्ध अस्पतालों को योजना से निलंबित किया गया है। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खेवसर ने बताया कि सरकार अनियमितता करने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 1 महीने में 24 अस्पतालों पर कार्रवाई कर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चिकित्सा विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने बताया कि इन अस्पतालों की ऑडिट में कई गंभीर वित्तीय गड़बड़ियां सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ऑडिट प्रणाली को और मजबूत किया जाएगा। राजस्थान पुलिस की ओर से साइबर अपराधियों पर नकेल कसने के लिए ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर सहित कई विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं। इनके जरिए साइबर ठगों की गतिविधियों का पता लगाने के साथ ही संदिग्ध बैंक खातों, सिम कार्ड्स और अवैध मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया जा रहा है। भिवाड़ी में कल डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट का डर दिखाकर लोगों से ठगी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया। भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक ब्रजेश उपाध्याय ने बताया कि इस गिरोह ने कई राज्यों में लोगों को अपना शिकार बनाया। ये कार्रवाई भिवाड़ी एसएचओ सचिन शर्मा की अगुवाई में की गई।
2: ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर आज से नई दिल्ली में राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 2 दिन का ये आयोजन राष्ट्रीय महिला आयोग की ओर से रखा गया है। इस अवसर पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए कार्यस्थलों पर सुरक्षित और गरिमापूर्ण माहौल आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक महिला को बिना डर के काम करने का अधिकार है। सुरक्षित कार्य वातावरण बनाना सरकार, संस्थानों और नियोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी है। आज दहेज प्रतिषेध दिवस है। लोगों को दहेज प्रथा के खिलाफ जागरूक करने के लिए इस दिन कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दहेज यानी शादी के लिए किसी भी तरह की संपत्ति या कीमती वस्तु मांगना एक सामाजिक कुरीति होने के साथ ही दंडनीय अपराध है। दहेज निषेध अधिनियम के तहत जुर्माने और सजा दोनों का प्रावधान है। दहेज प्रतिषेध दिवस के मौके पर पाली के राजकीय कन्या महाविद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। इसमें छात्राओं को इस सामाजिक कुरीति के नुकसान के बारे में बताया गया और दहेज मुक्त समाज के निर्माण का संदेश दिया गया। भारत टैक्स 2026 का आज नई दिल्ली में समापन हुआ। 4 दिन के इस सम्मेलन में वस्त्र निर्माण, नवाचार और निवेश को मजबूत करने के लिए मंथन किया गया। सम्मेलन में 138 देशों के 1600 से अधिक प्रदर्शकों ने हिस्सा लिया।

0: 11,000 से ज्यादा खरीददारों ने भाग लिया, जिनमें 6,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत हाइड्रोजन से ट्रेन चलाने वाला दुनिया का पांचवा देश बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे आत्मनिर्भर भारत और हरित ऊर्जा संकल्प की जीत बताया। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा, पश्चिम एशिया तनाव के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार ने आरजीएचएस में वित्तीय गड़बड़ियां करने पर बीते 3 महीनों में 51 अस्पतालों को योजना से निलंबित किया। और राजस्थान पुलिस ने भिवाड़ी से साइबर अपराधियों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से राजसमंद जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख दिनेश श्रोत्रिय ने तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पचपदरा में रिफाइनरी उद्घाटन समारोह का लाइव प्रसारण राजसमंद में भी दिखाया गया। जिला स्तरीय समारोह में राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर जिले में 402 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र और वेलकम किट वितरित किए गए। जिले में पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नौचौकी पाल पर जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला प्रशासन और आयुर्वेद विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में 2,390 योग साधकों ने सामूहिक योग कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम में सांसद महिमा कुमारी मेवाड़, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा और पुलिस अधीक्षक हेमंत कलाल सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। हल्दीघाटी की ऐतिहासिक धरती पर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर अरण्य बाग परिसर में 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और त्याग को याद किया गया। वहीं चेतक की स्मृति में अश्व प्रतियोगिता भी हुई। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर मचींद गांव में राणा पूंजा पर्यटन स्थल पर 2 दिन का मेला लगाया गया। पहाड़ चढ़ाई प्रतियोगिता के साथ मेले में भील समाज की वीरता और संस्कृति की झलक देखने को मिली। तीरंदाजी, रस्साकशी, कबड्डी सहित प्रतियोगिताओं में लोगों ने उत्साह से भाग लिया। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने विश्व धरोहर कुंभलगढ़ दुर्ग का बीते दिनों अवलोकन किया। राज्यपाल दुर्ग परिसर में बनी महाराणा प्रताप की जन्मस्थली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुर्ग का पैदल ही अवलोकन करते हुए ऐतिहासिक धरोहर की भव्यता और स्थापत्य कला को नजदीक से देखा। राज्यपाल ने दुर्ग की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की। इसके संरक्षण तथा संवर्धन के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। राजसमंद पुलिस की ओर से देवगढ़ में साइबर जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों ने सोशल मीडिया, मजबूत पासवर्ड, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। राजसमंद के भीम उपखंड में डिजिटल प्रहरी प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया। साइबर पुलिस ने युवाओं को फर्जी ऐप, एपीके फाइल और ऑनलाइन ठगी से बचने के उपाय बताए। नाथद्वारा में प्रज्ञानम टेक्नोफेस्ट 2026 के तहत शिक्षा क्षेत्र में बड़ी पहल की गई। सांसद महिमा कुमारी मेवाड़ और विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ की संयुक्त पहल से जिले के 100 सरकारी स्कूलों में प्रगति और स्टीम लैब स्थापित होंगी। इन लैबों में विद्यार्थियों को एआई, रोबोटिक्स, कोडिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी और 3D प्रिंटिंग जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। पिछले दिनों नाथद्वारा में आयोजित शहरी सेवा शिविर का जिला प्रभारी सचिव आरती डोगरा ने निरीक्षण किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को आमजन के कामों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए। राजसमंद में रिजर्व पुलिस लाइन में पुलिस संपर्क सभा का आयोजन किया गया। सभा में पुलिस जवानों ने अपनी सेवा संबंधी आवास, स्वास्थ्य और ड्यूटी प्रबंधन से जुड़ी समस्याएं रखी। पुलिस अधीक्षक ने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए कई मामलों का मौके पर समाधान किया और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नए प्रवेश द्वार का निर्माण किया जाएगा। लक्ष्मी विलास धर्मशाला के पास बनने वाले इस द्वार का भूमि पूजन वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। जिले में निर्जला एकादशी

0: दिवसीय पर्व श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मेवाड़ के प्रसिद्ध धाम चारभुजानाथ मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। व्रतधारी महिलाओं ने मंगल गीत गाते हुए जल कलश अर्पित किए और परिवार की सुख समृद्धि की कामना की। इसी के साथ राजसमंद जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत हाइड्रोजन और रेल चलावन वालो दुनिया रो पांचवो देश बनियो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्हें खुद रेपाण उबो भारत बनावन और हरित ऊर्जा संकल्प री जीत बतायो। आरबीआई रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो, पश्चिम एशिया में तनातनी रा हालात रे बावजूद देश री माली व्यवस्था मजबूत। राज्य सरकार आरजीएचएस में माली गड़बड़ियां करण रा आरोप में लाडला तीन महीना में 51 अस्पताल ने योजनाओं हटाया। और राजस्थान पुलिस भिवाड़ियों साइबर अपराधियों रा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह रो भंडाफोड़ किनो। समाचारों सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन और चालन वाली देश की पहली रेलगाड़ी ने आज हरियाणा में जींद रवाना की। आ गाड़ी जींद सोनीपत बीच चलाई जा रही है। इस मौके श्री मोदी 12,470 करोड़ रुपयों भत्ता खर्च वाली नेशनल हाईवे परियोजना वाली शुरुआत की और पूरा भिया काम जनता ने सौंपया। प्रधानमंत्री कहो कि लाडला 12 साल में रेलवे में खास बदलाव करी चिया। श्री मोदी कहो कि 21वीं सदी री रेल व्यवस्था हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी चलेला। प्रधानमंत्री कहो कि मौजूदा दौर में दुनिया रा केवल 3-4 देशों के नई हाइड्रोजन ट्रेन चलावन रोबूतो है। इस आगे भारत हाइड्रोजन और रेल चलावन वालों पांचवो देश बन क्यों है। हाल ताई जर्मनी जापान चीन और अमरीका में ही सुबितो है। 10 डिब्बों वाली इन रेलगाड़ी में 2600 मुसाफिर सफर कर सके है। दूजा देशों में हाइड्रोजन चलाई जावन वाली रेलगाड़ियां में 2 या 3 डिब्बा फै है। प्रधानमंत्री कहो के 3200 हॉर्स पावर बूता वाली भारत री हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया री सब ताकतवर और हाइड्रोजन चालन वाली लंबी रेलगाड़ियां में शामिल है।
2: 20वीं सदी की पहचान डीजल और बिजली से चलने वाली रेल बनी और अब 21वीं सदी की रेल हाइड्रोजन से चलने वाली है। आज भारतीय रेल ने भी 21वीं सदी की इस टेक्नोलॉजी में एक बड़ा स्टेप लिया है। आज हाइड्रोजन ट्रेन चली है। अभी ये सफर 90 किलोमीटर का है, लेकिन भविष्य में इसका विस्तार होने की बहुत संभावनाएं हैं।
1: इस मौके रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हाइड्रोजन और चालन वाले नमो ग्रीन रेलगाड़ी री शुरुआत ने देश री तकनीकी बरकत में ऐतिहासिक उपलब्धि बतायो। श्री वैष्णव कहो कि आ गाड़ी पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल है और इनमें डीजल री जरूरत नहीं है।
3: ये देश के लिए गौरव की बात है, विशेषकर इंजीनियर्स के लिए गौरव की बात है कि देश में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है। न्यू एनर्जी है, न्यू फ्यूल है, इस फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज हो, उसकी टेक्नोलॉजी भारत में कैसे डेवलप हो, आत्मनिर्भर भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी ये बनाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आज एक बड़ा माइलस्टोन है रेलवे के लिए कि पूरी टेक्नोलॉजी भारत में बनी, आईपी राइट्स भारत में। इसमें सेफ्टी सिस्टम्स का बहुत लंबे समय से बहुत एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट किया गया है।
1: प्रधानमंत्री आज ही चंडीगढ़ में स्वास्थ्य भणाई लिखाई और सड़क हलकाओं जुड़ी विकास री करीब 4,700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं री शुरुआत की। इन पाछे श्री मोदी देश भर में और बेहतर बनाई जा 75 रेलवे स्टेशन रो पंजाब रा जालंधर कैंट वर्चुअल तरीका उद्घाटन किनो। आमाय राज्य रा जैसलमेर बाड़मेर दौसा डीग गंगापुर सिटी गोटन खेरथल और सोमेसरी शामिल है। आम टेसना माथे राखी जा कार्यक्रम माई वठेरा जनता रा नुमाइंदा अहलकार और मोटी तादाद माई लोग भेड़ा फिया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्माई नागौर जिला रा गोटम रेलवे स्टेशन माथे राखी जा कार्यक्रम माई शामिल फिया। इस मौके श्री शर्मा कहो कि ओ विकसित भारत बनावन

0: तो संकल्प सांचो करण रे दिशा में खास कदम है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत का जो विजन है उस संकल्प के साथ गति देने के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य आज हुआ है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि भारत के रेलवे स्टेशन, ट्रेनें, रेल की पटरियां और सुरक्षा की दृष्टि से हमारा ये रेलवे विभाग किस तरह से मजबूत हो सकता है और राजस्थान और देश में किस तरह से इसकी प्रगति हो रही है।
0: भारतीय रिजर्व बैंक रा गवर्नर संजय मल्होत्रा कहो है कि मध्य पूर्व में उपजी तनातनी रे बावजूद भारत री माली व्यवस्था मजबूत बनी है। डीडी न्यूज चैनल सागे बातचीत करता थकन श्री मल्होत्रा कहो कि भारत का न्यू दिशावर में भांत भांत री सेवा मुहैया करावनो, रिकॉर्ड प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI और नुआ कारोबारी करार माली व्यवस्था ने मजबूत बना रहा है। वह कहो कि अनिश्चितता रा हालात में आई भारत सगड़ा हल्का में मजबूत बनियोड़ो है।
2: पश्चिम एशिया और विभिन्न अनिश्चितताएं जो पिछले हाल के समय में हमने देखी हैं, उसके बावजूद आपको मालूम है कई वर्षों से और पिछले वर्ष भी हमारी आर्थिक वृद्धि दर 7% से अधिक रही है। पिछले वर्ष 7.7% थी और इस वर्ष भी हमारा अनुमान है, जो हमने अपनी MPC की आखिरी बैठक में हमने जब अनुमान दिया तो इस वर्ष भी हमने अनुमान लगाया है कि 6.6%। अधिक अनिश्चितता के बावजूद एक अच्छा आंकड़ा मैं मानता हूं।
0: कौशल रोजगार और उद्यमिता विभाग री ओर आज जयपुर में रोजगार सहायता शिविर लगाइचियो। इनमें 50-32 कंपनियां न्यारा न्यारा ओहदा सारू उम्मीदवारा ने नौकरी रा प्रस्ताव दीना। इस मौके उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ स्थानीय स्तर में थई नौजवानों ने कौशल आधारित रोजगार देवन रियरज की। कर्नल राठौड़ बतायो कि सरकार हाल ताई 24 रोजगार मेला लगा चुकी है।
3: काम सीखेंगे तो जीवन में और आगे बढ़ेंगे, और ये आप सीढ़ी मान लीजिए कि सीढ़ी का सबसे पहला कदम है आज का रोजगार मेला। इस रोजगार मेले में पहला कदम लोगे, संभव है किसी और के लिए आज नौकरी शुरू करोगे लेकिन कल खुद का रोजगार लगाओगे और दूसरों को रोजगार देंगे।
0: राज्यपाल हरिभाव बागड़े आज भरतपुर जिला रा भुसावर में एग्रीकल्चर कॉलेज रो नव भवन जनता ने सौंपियो। इस मौके राज्यपाल कॉलेज परिसर रो दौरो कर वछे मुहैया कराया जा रहा न्यारा न्यारा सुविधा रो जायजो लीनो। वह किसाना सागर जैविक खेती रे बारा में चर्चा की। कार्यक्रम में कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणाई मौजूद रहा। संसद रो पावस सत्र 20 जुलाई शुरू भेला। इनु पहले आज नई दिल्ली में NDA रा मंत्रियों रा समूह री मीटिंग रखी जी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, किंजरापुर राम मोहन नायडू और किरेन रिजिजू मीटिंग में शामिल हुआ। मीटिंग में संसदीय सत्र री रणनीति रे बारा में चर्चा करी जी। सत्रों पहली 19 जुलाई ने सगली पार्टियां री मीटिंग बुलाई ची है। समाचार आप आकाशवाणी

0: 26 जुलाई ने सगली पार्टियां री मीटिंग बुलाई ची है। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। राज्य सरकार राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम RGHS माय साफ कोई और जवाबदेही तय करण सारू अपनाई ची जीरो टॉलरेंस नीति रा तहत लाडला तीन महीना माय 51 संबद्ध अस्पताल ने योजनाओं हटाती ना। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर बतायो कि लाडला महीना 24 अस्पताल माथे गड़बड़ियां रा आरोप माय करीब 3 करोड़ रूपये रो जुर्मानो लगाई चियो। चिकित्सा विभाग री प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ बतायो कि आ अस्पताल री ऑडिट माय कई माली गड़बड़ियां सामने आई। साइबर अपराधियां माथे काबू करण सारू राजस्थान पुलिस री ओर ऑपरेशन साइबर शील्ड और म्यूल हंटर समेत कई खास अभियान चलाया जा रहा है। इरे जरिए साइबर ठगा ने करतूता ने ठा करण सा गई शंका वाला बैंक खाता मोबाइल सिम कार्ड्स और गैर कानूनी तरीकों चलाया जा रहा मोबाइल नंबर ब्लॉक कराया जा रहा है। दुनियारा न्यारा न्यारा हलका माए डिजिटल अरेस्ट और फर्जी वारंट रोडर बतार ठगी करण वाला एक गिरोह रो भिवाड़ी रा SHO सचिन शर्मा री अगुवाई माए भंडाफोड़ करी चियो। भिवाड़ी रा SP ब्रिजेश उपाध्याय बतायो के ओ गिरोह कई राज्य माए ठगीरी वारदाता की नी।
1: ये जो गिरोह है इसने अभी तक इसने जो कबूला अभी प्रथम दृष्टया $1,00,000 से ज्यादा का मतलब 96 लाख आज की अगर करेंसी रेट देखें उससे ज्यादा का फ्रॉड तो हमें खुलासा हो चुका है। इसके पीछे और भी क्या लेयर हैं और भी कितने लोग इन्वॉल्व हैं और कितने और लोगों को ठगा जा रहा है उसका अनुसंधान जारी है।
0: कार्यस्थल पर महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण कानून 2013 बारह माए आज नई दिल्ली माए राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम शुरू हो। 2 दिन रो ओ कार्यक्रम राष्ट्रीय महिला आयोग री ओर राख्यो जा रियो है। ई मौके केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कहो के महिलाओं री अगुवाई माए विकास रा संकल्प ने आगे बढ़ावन सारू काम री ठौड़ सुरक्षित और मान वालो माहौल जरूरी है। वे कहो के हर महिला ने बिना डर काम करण रो हक है और काम रो सुरक्षित वातावरण बनावनो सरकार संस्थाना और नौकरी देवन वाला री भेली जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार खिलाड़ियों का नियम रोक लगायोड़ी दवाइयां काम लेवन में रोकन सारू राष्ट्रीय डोपिंग रोधी कानून 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन कानून 2025 लागू करण रो ऐलान कीनो है। वो कानून देश रा डोपिंग रोधी ढांचा ने वैश्विक मानका ने मुजब मजबूत बनावे है और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने जांच रो हक देवे है। कपड़ा हलकाओं जुड़ियो भारत टैक्स 2026 सम्मेलन आज नई दिल्ली माई पूरो फेंक्यो 4 दिन रा

0: फसलें भी रुपी किस्म के मक्का है, बाजरा है, मूंग है, अड़द है, तिल है, खूबी फसलें कर भी क्योंकि हुआ कम पानी में भी थी।
1: बिल्कुल कम पानी में पकवा बारी
0: अपना जिम के पहले हार करता था, अभी हार लगभग लगभग नती था थी।
1: जी जी
0: एनो कारण हुआ इनमें पानी अवल हुए, पानी भरलो हुए, अभी भी स्थिति तो है नहीं कि पानी बरसात खाए बार बार, अभी आप फसल एवं करो कि कम पानी में पैदा थी जाए। ने एनो बीजो उपाय है कि कम से कम अपने इन्हें फवारा सिंचाई जिम के फवारा जगह पानी पड़े।
1: अच्छा
0: इन जगह फसल ने पानी नहीं बचत था, कम पानी में फसल अच्छी था।
1: बिल्कुल
0: के पानी नो सदुपयोग भी था, फसल भी अच्छी थी जा।
1: आप फवारा सिंचाई जे तुम्हें बता रही है तो आधुनिक नवीन तकनीक है।
0: बिल्कुल नवीन तकनीक,
1: आड़त में पानी भी पौधे ने पवाई जा भाई फवारा ने माध्यम दी कम पहले पहले आज नहर में छोड़ देता था ना कौन है तो खेतों पवाई जातो ना अवरता जातो तो।
0: बिल्कुल
1: आप विधि बता रही है वास्तव में अच्छी कारगर विधि है।
0: मैंने दीप ने फव्वारा सिंचाई पद्धति भी कही।
1: अच्छा
0: की कम पानी में अच्छी फसल ने जिन सब फसल ने जब पानी जुड़े सही मात्रा में पानी मिले।
1: बिल्कुल
0: इन्हें मैं से घास फूस रहने इन्हें कोई मतलब नतीजे फसल है। ड्रिप सिंचाई योजना तो इतनी अच्छी है कि इन्हें पौधा ने इन्हें जड़ में पानी पड़ेगा।
1: जी जी
0: इन्हें जे जुएगा इस पानी पड़ेगा
1: आप मैंने भाई वो डाया भाई देखो हमने आप फव्वारा विधि जे बता रही है आता सब बल्ले उपयोगी है पास हुए।
0: बिल्कुल हर फसल हर उपयोगी ने पानी आलो नो मैं समय रहे।
1: जी जी
0: एक पानी आलो ते फसल ने सुबह सुबह आलो या इन्हें हाजे आलो ताकि इन वाष्पीकरण कम था कम सुबह हाजे अगर पानी पंग आपड़े फसल में तो इन पानी नो भी सदुपयोग था गा ने पौधे ने भी जी मलूज लाभ मलूज भी मिलेगा।
1: देखो दया भाई आज आप बता रही रहो पर अजी भी भाई ने जो बुआई कर दी रही है ना फसलें उभी जकी हैं तो एना में आज नमी बनावी राखवा बल्ले किसान भाई कई विधि अपनावे के अवड़े भी मान लो बैसा दाड़ा पानी नहीं आवे तो इन स्थिति में अपनी फसलें जीवित रहे जिंदा रही सके तो नमी बनावा बल्ले आप कई कई विधि है।
0: नमी बनावा हारू हमने जो फसल आधुनिक तकनीक थकी कर रहा है जी ये है एक मल्चिंग करीन आवे
1: मल्चिंग
0: मल्चिंग ये हुआ खेत में नमी ने वाष्पीकरण जे है इन रोको हारू फसल ने बे साइड में या तो पत्ती थकी ढाकी दे
1: जी जी
0: या पुआल रहे या सूखी पत्ती नो मान लो
1: जी
0: इन्हें इन्हें बे साइड में ढाकी देगा फसल सिर्फ मेन पौधो ही सुबह रहेगा बेन साइड में ढाकेलो रहेगा
1: तभी
0: वाष्पीकरण नहीं था ये नमी रहेगा तो पौधो जल्दी वृद्धि करेगा।
1: देखो एक अपने किसान नो जो वेरी कहवा खरपतवार जे अनावश्यक घास है उगी आवे तो एना बल्ले भी किसान भाई ने हमें चुनौती रहे कि भाई आने खरपतवार नियंत्रण करीने अपनी फसल ये मोटी करा तो एना बल्ले भी किसान भाई ने आज खरपतवार नियंत्रण बल्ले हूँ करवो
0: खरपतवार ने काढ़वा हारू सब तक एक उपाय इन्हें समय समय में तो निराई गुड़ाई करनी जरूरी है।
1: अच्छा अच्छा
0: अगर खरपतवार रहेगा तो फसल ने बढ़वा नहीं देगा खरपतवार मोटो थी जाएगा आ जाते हैं। देखो इन्हें बार बार निराई गुड़ाई सब तक सही उपाय है दवाई ना छिड़काव भी उपयोग कर रहा है कीटनाशक ना उपयोग भी कर रहा है जिनमें जो खरपतवार है खत्म थी जा आधुनिक तकनीकी आ गई पर अपना यूं क्या हुआ किसान भाई ने कि कम से कम कीटनाशक उपयोग कम करे कम तक कम करे
1: जी
0: अपने निराई गुड़ी से मेहनत तक काम थी रू इस सही काम थी रू बाकी तो घना तरीका अच्छा कृषि में निकली गए पर ये उपाय करवा थे मतलब नहीं कीटनाशक।
1: देखो दया भाई आप बात बता रही है मतलब लाख रुपये की सही बात बता रही रहो थोड़ा ऊपर आप लोग किसान भाई के कार्यक्रम में ये हमरी भी जा सकता है पर मान लो न करे नारायण ने अपनी फसलें जो हैं ये आप बुआई तो कर दी थी मैगा नो बीज लाइवा खातर लाइवा सब कर दी दो बारिश मान लो ने सावी तो एना बल्ले अपनी फसल तो बर्बाद थी गई तो एना बल्ले सरकार की ये भी घनी योजनाएं हैं।
0: बिल्कुल
1: ये किसान भाई ने वापस ऊपर उठावा बल्ले भी योजनाएं चाली रही है तो अपने किसान भाई ने मान लो अभी स्थिति थी गई तो हूँ करव
0: मोटे इस वो सब किसान भाई ने पहली बात अपने जो फसल करी ना फसल बीमा जरूरी है।
1: जी जी
0: देखो क्योंकि फसल कई बार पूरी था का इन्हें कोई गारंटी तो है।
1: बिल्कुल
0: देखो कई बार बरसात अवल थे जा तो बगड़ी जा नहीं कई बार नहीं था तो बगड़ी जा
1: जी
0: तो अपने हारू सरकार अपने ने किसान ने फायदा हारू एटली उपाय करी है कि फसल ना बीमो कराओ तो तुमने इन मुआवजो मिलेगा कम से कम जे भी नुकसान भरपाई तक करवा सप्पा नहीं मिले से तो कुछ अर्धो भी मिली गयो इनो भी कम मिली गयो तो कम से कम किसान इवी स्थिति में जाकर फिर फसल नहीं कर सके ये वो नियम हो।
1: बिल्कुल तो आप जो कहो चाहिए जाओ कि फसल ऊपर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
0: हाँ बिल्कुल
1: एनो फायदो लेवा बल्ले किसान भाई ने बीमा करा
0: बीमो
1: बीज ताकि किसान भाई निश्चिंत थी जाए
0: निश्चिंत थी जाए
1: मान लो कहीं सूखा स्थिति आई या अति

0: या अनावृष्टि के वो कहीं भी छूट
1: कहीं भी छूट अगर इन्हें बीमा है
0: तो किसान बिल्कुल आ सकते किसान भाई करवो हुए देखो दया भाई आप आज थोड़ा ऊपर आवीन आटली बढ़िया जानकारी हमारे भाई ने ली है एना बल्ले आपने खूब खूब धन्यवाद राम राम राम राम।
2: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: किसान भाइयों, देखो ढायलाल जी ने जो बात हती कितनी बढ़िया जानकारी इन्हें आली ने, वास्तव में चिंता नहीं लकीर तो हर किसी ने थी रही, पर किसान भाई ने आशावादी रहू पड़ेगा। पहले से बात करिए ने निश्चित पानी आवेगा। किसान भाई देखो सोलह पूरा भरो थको है ना, मार साहब भी बैठा है, सब भाई बैठा है, बहन जी भी सोलह ऊपर आई हुए हैं आज ने। आ हंजेवे टाइम में बढ़िया सो एक पहले भाई ने भजन हमरावा, भजन हमरी ने पसे अगर समय रहे तो आप थकी बात करूंगा। पहले भजन दई ने हमरो

0: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल है शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग। और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
1: किसान भाइयों देखो कितना बढ़िया भजन अपने हमरे वास्तव में दिल खुश थे जो भाई आका दाड़ानी जे कामनी थकान हती खेत्र नी ये आवा भजन हमरी ने थकान भी दूर थी गी ने आपने सबने आ मार्ग अपना बो पड़ेगा। थोड़ो सो भक्ति नो मार्ग है इन्हें भी आपने अपना बो पड़ेगा। देखो खेती नी बात में आपने पपीता नी खेती ने बारे में आधे बात करिए, खरपतवार नियंत्रण नी बात करिए, एना हिसाब से कि किसान भाई अगर काम करेगा तो इन्होंने निश्चित फायदो रहे ई थई शके। कार्यक्रम नो टेम आई पूरो थई रह्यो हता, आजे तो वालजी भाई ने आज्ञा आलो काले सोरा ऊपर फेरी नवी जानकारी नाते मलंगा ए आवजू।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी बांसवाड़ा के माही चैनल से किसान भाइयों का कार्यक्रम चौपाल, जो यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 61.3 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के जयपुर केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे जयपुर से प्रसारित कार्यक्रम।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
0: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: खेतीबाड़ी सुन बड़ा सगला काश्तकार भयान है विशाल गोडरा घना घना राम राम और अदिति बेन थन भी राम राम।
3: राम राम विशाल भाई और सुनबाड़ा सगला श्रोतावा ने अदिति भट्टरो ने भरियो नमस्कार और राम राम सा।
2: तो अदिति बेन आज मगे काश्तकार भयान कई बार अंत जानकारी देशो।
3: तो देखो सा जानकारी तो कोने पर छोटी सी बात है जो की अगर करसा बाहर बहना ध्यान रखे तो कोई अनहोनी अगर हो बाड़ी होवे तो पहली सावचेत हो जावा आपा और जागरूकता सु आगे बढ़ा। देखो बिरखा रो मौसम छे,
2: मौसम तो छे लेकिन बिरखा बरसे इंद्र देवता कद मेहरबान हुए।
3: देखो सा वो भी होवे ला ध्यावस राखो सब्र को फल मीठो होवे छे और जद बिरखा बरसे लीना जद देखो सब जगह रेलम पेल

0: और उमेर हरियाली छा जा वाली और ये टाइम पे आपने जो खेती खलिहानी का जो काम छे वह तो बढ़ ही जावेला सागे ही आपनो ध्यान रखनो छे आपनो जो घर परिवार छे घर में रह बाड़ा जो सदस्य छे आपना जो पशु गो सासर छे बाको भी ध्यान आपने रखनो पड़ेलो तो ये सावचेती अगर आप पहली बरत लेवा कि आपने किण भात को व्यवहार आपने बिरखा आ रही छे ऊ टाइम करनो छे तो कशी एक बात रहे
1: बहुत ही चौकी बात रहे सा और देखो जी यहाँ थे बता रहे होगी बरसात रो मौसम तो भी यहाँ हो गयो शुरू अब बरसात कद भी बरस सके तो आपन कई सावधानियां रखनी है जका में जी यहाँ रात में घर में लाइट चली जावे तो एक लालटेन होनी चीज है एक अलावा जी यहाँ टॉर्च हुआ करे टॉर्च भी आपने सग रखनी चीज है और एक अलावा जी आपने बरसात रो पानी है वो आपने भेड़ो करनू है
0: तो वे आपा वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सु आपा कर सका हा और सागे ही जो आपना फालतू पड़े जो सामान छे जी में बिरखारो पानी एक ठो होर उमे माचर पनप सके छे तो अहिया पनप सकवा वाली जो स्थितियां छे ना वो आपने पैदा ही नहीं होना देनी
1: हाँ जी आपन कहीं सावधानी ये चीज की रखनी है स्वच्छता अपन पूरी बनाई रखनी है जी आजकल आप देखा टायर वगैरह हुए और भी कई प्रकार का सामान हुए अटाला हुए बम अगर बरसात को अगर पानी से ले जावे तो बहु मच्छर पनप सके फिर भी मच्छर आपने घर में बीमारी भी ला सके
0: जी सर
1: तो वजह ही तेजो की जानकारी बता रहे हो
0: सागे ही आपा और भी ध्यान रखा कि खाना में आपा पौष्टिकता सु भरपूर आपा खानो खावा अगर कोई उघाड़ो मिलो कोई खानो है तो उन्हें आपा नहीं खावा ढक्यो खानो खावा पौष्टिकता सु भरपूर खावा और ताजो बनियो जो खानो है या नहीं कि एक दिन पुराणो या दो दिन पुराणो कोई सामान छे उन्हें आपा चारो जरा सो खा लेवा चोखो चखर ही देखा छा कि कूड़ा खराब तो नहीं हो गयो तो ये कदम तो आपा ने बिल्कुल ही नहीं उठानो छे
1: जी सर बिल्कुल ही बढ़िया बात थे बताई तो अब आप अपने कार्यक्रम में बढ़ावा आ गए और सुना एक चौकी सी लोक रचना
0: चलो सुनवा दियो सर और अपनी बात चीता तो चलती रहे वाली
1: जी।

0: भंवरलाल और साथियों की आवाज में आभार आप भजन सुनिया और सागे ही अब जानकारी रा मोती पिरोबा को बखत हो आयो छे तो लेवा जानकारी
1: श्रोतावा कार्यक्रम में आपने सागे है डॉक्टर श्री राम करीर सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर PGIVER जयपुर में आप पदस्थापित हो और जी महत्वपूर्ण विषय माथे आज मैं आपसे जानकारी लेशा वो विषय है वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण। तो डॉक्टर साहब स्टूडियो में आपको खूब खूब स्वागत। राम राम सा।
2: राम राम सा।
1: जैकि डॉक्टर साहब आपनो विषय है कि वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण, तो सर सबसे पहले तो आप आई बात बताओ कि वर्षा ऋतु में टीकाकरण क्यों जरूरी है।
2: आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो हर पशु और किसान भाइयों के लिए अत्यंत जरूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशुपालन का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे पशु हमारे सहायक और हमारी आजीविका का आधार है। इनका जो स्वास्थ्य है वो न केवल हमारे परिवार के लिए बल्कि समाज और देश के लिए भी बहुत

0: आवश्यक है। तो अपन अभी देखते हैं कि पशुओं में वर्षा ऋतु में टीकाकरण जरूरी क्यों है। तो देखिए, इसके लिए जब वर्षा ऋतु आती है तो वो अपने साथ कई प्रकार की चुनौतियां लेकर आती है। इस मौसम में नमी अधिक रहती है, तो दूसरा चारों ओर कीचड़ और गंदगी फैल जाती है, कई प्रकार के कीटाणु बैक्टीरिया वायरस सक्रिय हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि पशुओं में रोगों का खतरा बढ़ जाता है, और हम सभी जानते हैं जो रोगों से बचाव है वो उपचार से बहुत ही बेहतर होता है। तो टीकाकरण भी इसी सिद्धांत का पालन करते हैं, वो पशुओं में क्या है कि रोग होने से बचाव करते हैं। एक बात और कि कुछ जो रोग है, जो पशु रोग है, वो जूनोटिक टाइप के होते हैं, यानी कि वो पशुओं से इंसानों में भी फैल सकते हैं, और वर्षा ऋतु के दौरान ये संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि ब्रूसोलिसिस हो गया, रेबीज हो गया। तो टीकाकरण क्या है कि ऐसे जो रोग है उनको नियंत्रित करके जन स्वास्थ्य को भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि वर्षा ऋतु में टीकाकरण न केवल पशुओं को बीमारियों से बचाता है, बल्कि किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाकर उनकी आजीविका भी सुरक्षित करता है।
1: वाह सर, डॉक्टर साहब बहुत ही सहज और सरल शब्दों में आप बताया कि टीकाकरण वर्षा ऋतु को मायने क्यों जरूरी है। देखो भैया, तो सर टीकाकरण जो है हर अवस्था में और हर समय जरूरी हुआ करे है। जी हाँ, अपना टाबरा को बालपना से ही टीका को ध्यान रखा हाँ, ताकि आबाला समय में आपनो टाबर बीमारियां से बचुरे हुए। वे ही अपना पशु है, वे भी अपना टाबरा की जियान है, अपना परिवार का सदस्य है। तो आरंभ से ही बाका टीका को आपा ध्यान रखा हाँ, पर वर्षा काल का मायने या वर्षा ऋतु में ही क्यों खासकर जरूरी है, तो यो आप बताया कि भाई वर्षा ऋतु का मायने संक्रमण और बहुत सारी बीमारियों को खतरों ज्यादा बढ़ जावे है।
0: बिल्कुल,
1: तो या तो आप बहुचो की बात बताया। अब वे कौन कौन सा टीका है जो आपने अपना पशुओं के लगवाना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, देखिए इसके लिए जो गाय भैंस है उनमें सामान्यतः 6 बीमारियों के बचाव के लिए टीके लगाए जाते हैं।
1: जी,
0: अब देखो पहला जो टीका है वो गलगोटू रोग के लिए लगाया जाता है, और उसका जो टीका होता है उसका नाम HS वैक्सीन के नाम से आता है। ये साल में एक बार लगता है और ये मानसून शुरू होने के पहले लगता है, जैसे मई जून के महीने में लगता है। दूसरा टीका जो है वो लंगड़ी बुखार का लगता है, इसके टीके का नाम BQ वैक्सीन होता है, और ये भी साल में एक बार ही लगता है और मानसून से जस्ट पहले लगता है। तीसरी बीमारी जो है वो है खुरपका या मुंह पका, इसका जो टीका आता है उसका नाम FMD वैक्सीन होता है, और ये साल में दो बार लगता है, एक बार तो मानसून से जस्ट पहले लगेगा और एक बार दिसंबर या जनवरी माह के बीच में लगेगा। चौथा रोग है गिल्टी रोग, इसको एंथ्रेक्स भी बोलते हैं, और इसका जो टीका आता है उस टीके का नाम होता है एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन, ये साल में एक बार लगता है और मानसून से पहले लगता है। पांचवी बीमारी है ब्रुसेलोसिस, ये जो ब्रुसेलोसिस बीमारी है वो कॉमन होती है या सामान्य होती है जानवरों में, तो इसका लिए जो टीका होता है वो जीवन में केवल एक बार लगवाना होता है, उसके बाद उसको दोबारा लगवाने की जरूरत नहीं होती, और ये किसी भी समय अपन लगवा सकते हैं।
1: जी,
0: और छठवां जो रोग है वो अभी जो कॉमन हुआ था पहले, लंपी स्किन रोग, ये भी रोग, ये जो टीका है इसका साल में एक बार ही लगता है, और या तो ये मानसून से जस्ट पहले लगता है या फिर जब रोग का प्रकोप ज्यादा हो तब लगता है। ऐसे ही भेड़ बकरी के लिए मुख्यतः 4 बीमारियों के लिए टीके लगाए जाते हैं। पहला भी रोग है फड़किया रोग, जिसको ईटी भी बोलते हैं, ये साल में दो बार लगता है ये टीका, एक तो जून के महीने में लगेगा और एक दिसंबर के महीने में लगता है। दूसरी बीमारी है बकरी प्लेग, जिसको PPR भी बोलते हैं, ये क्या है कि जीवन में एक बार लगता है इसका टीका और किसी भी समय इसको अपन लगवा सकते हैं। तीसरी बीमारी है खुरपका और मुंह पका रोग, ये साल में एक बार लगता है इसका टीका, और ये कुछ टाइम पहले या कुछ 15 दिन पहले लगता है, मई जून के महीने में। जो गलगोटू बीमारी है चौथी बीमारी, वो साल में एक बार ही लगती है और मानसून के एक माह के बाद में लगती है, यानी मानसून स्टार्ट होने के बाद में इसका टीका लगता है।
1: जी डॉक्टर साहब, यह तो आप बता दिया कि टीका कौन कौन सा आपने लगवाना चाहिए। अब टीकाकरण के दौरान वे कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपना पशुपालक भाई बहन जो आपने सुन लिया है, कौन कौन सी सावचेती रखे ताकि टीकाकरण के दौरान कोई समस्या नहीं आवे।
0: जी देखिए, आपका बहुत अच्छा सवाल है, तो मैं बताना चाहूंगा किसान भाइयों को कि टीकाकरण से कम एक सप्ताह पहले पशुओं को जो पेट के कीड़े मारने की दवा है जिसको डिवर्मिंग बोलते हैं वो दे देनी चाहिए। टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक पशु को तनाव मुक्त स्थान पर रखना चाहिए, और पशु जो है वो किसी भी रोगी पशु के संपर्क में आने से रोका जाना चाहिए। तीसरा है कि जो यदि कोई पशु जैसे ज्यादा ज्यादा बीमार है, ज्यादा वीक दुर्बल हो गया है या फिर वृद्धावस्था में है, तो उसको टीकाकरण अपने को नहीं करवाना चाहिए। और एक और बात है कि टीकाकरण के 2 सप्ताह बाद तक

0: पशु को उपचार हेतु ये जो एंटीबायोटिक औषधियां होती है जैसे सल्फा औषधियां हो गई या कृमिनाशक हो गए या फिर जो प्रतिरक्षा तंत्र को कमजोर करती है ऐसी औषधियों का सेवन नहीं करना चाहिए, उनका प्रयोग नहीं करवाना चाहिए। और एक बात और है कि दूध का जो सेवन है वो रोकने की जरूरत नहीं होती टीकाकरण में, टीकाकरण बस ये है कि दूध को है अच्छे से उबाल के बाद में उसका उपयोग किया जाए। और एक है कि डॉक्टर या प्रशिक्षित व्यक्ति से ही टीका हमेशा लगवाना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, या तो आप बताएं कि वर्षा ऋतु को मायने आपने टीकाकरण करवाना ही चाहिए क्योंकि संक्रमण रोगा को खतरो वर्षा ऋतु को मायने ज्यादा रेवे है, कौन कौन सा लगवाना चाहिए और के सावचेती रखनी चाहिए या भी आप बता दिया, पर ऐसी कौन सी खास बात है कि जो आपने या अपना जो पशुपालक भाई बहन है माना ओ बेरो पड़ जाए कि टीकाकरण करवाना अनिवार्य है, कितना जरूरी है, वैसे कौन सा मोटा फायदा है, और अगर पशु ने फायदो है पशु निरोगी रेसी तो अपने पशुपालक भाई बहन भी लाभान्वित रेसी, माने भी कोई समस्या को सामना कौन करना पड़ सी, तो वे कौन सा बड़ा फायदा है टीकाकरण से, आ बताओ सर।
0: जी बिल्कुल, देखिए जो पशुओं के टीकाकरण करवाने के बहुत सारे फायदे हैं जिनको किसान भाइयों या पशुपालक भाइयों को पता होना चाहिए, ध्यान में उनको रहना चाहिए। जैसे कि पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती है, उनसे टीकाकरण सुरक्षा प्रदान करवाता है, यदि टीकाकरण होया हुआ है तो बीमारियों के होने के चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर। दूसरा क्या है कि जो टीकाकरण है वो पशुओं की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, और ये जो पशुओं में मृत्यु दर होती है इसको भी बहुत एक हद तक कम कर देता है। और एक कि ये रोगों को फैलने से रोकता है, यदि टीकाकरण होया हुआ है तो वहां यदि कोई बीमारी आ रही है तो वो फैलेगी नहीं वहां पे, क्योंकि वो पहले से ही उनके टीके लगे हुए हैं तो उस बीमारी का वो सामना कर पाएंगे, उनका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो उसको सामना करके उसको परास्त कर देगा। एक जो दूध उत्पादन है वो जो कार्य क्षमता है वो यदि टीकाकरण करवाया हुआ है तो उसमें क्या होता है कि वो मेंटेन रहता है, वो बराबर बना हुआ रहता है, कम नहीं होता है। और जैसे राष्ट्रीय स्तर पर कई रोगों का जो नियंत्रण करते हैं उनमें बहुत अच्छी मदद मिलती है टीकाकरण के माध्यम से। जैसे और कई जो सरकारी योजनाएं हैं अपने राजस्थान गवर्नमेंट की जो योजनाएं हैं या फिर जो बीमा है उनके लाभ लेने में बहुत मदद मिलता है, क्योंकि जो कुछ सरकारी योजनाएं हैं या जो बीमा है वो ये बोलते हैं कि आपके पशु का टीकाकरण होना अनिवार्य है तो टीकाकरण जरूर करवा लेना चाहिए। तो अपन यूं कह सकते हैं कि टीकाकरण एक छोटा खर्च है लेकिन इसका बड़ा बहुत बड़ा लाभ है।
1: जी डॉक्टर साहब, टीकाकरण के अलावा और कौन सी बात है जो कि बिरखा ऋतु का मायने अपने ध्यान में रखनी चाहिए?
0: जी बिल्कुल, देखिए वर्षा ऋतु में केवल टीकाकरण ही नहीं बल्कि बहुत सारी अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना चाहिए किसान भाई या पशुपालक भाई को। इसमें जैसे अपन पहले बात करें जैसे कि उसका जो आश्रय व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। आश्रय व्यवस्था अच्छी होने से क्या तात्पर्य है कि जो छत है वहां से पानी नहीं टपकना चाहिए। ये क्या होगा कि यदि छत से पानी टपकता रहेगा तो वो जानवर के ऊपर गिरेगा तो जानवर उससे क्या होगा कि तनाव में चला जाएगा, इससे सारा उसका सिस्टम है या जो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो भी कमजोर होगा और उसका जो दूध उत्पादन है वो भी कम हो जाएगा। एक क्या है कि जो फर्श है वो ऊंचा और ढलानदार होना चाहिए ताकि जो पानी और मलमूत्र है वो वहां एक जगह इकट्ठा ना हो, सारा का सारा बाहर निकल जाए। और जो पशुशाला है वो हवादार होनी चाहिए, यानी वहां पे जो वेंटिलेशन है हवा का आदान प्रदान है वो बराबर होना चाहिए ताकि पशु बाहर की ताजी हवा ले सके। एक है वहां पे कीचड़ इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए। ये कुछ बातें थी जो आश्रय व्यवस्था में अपने को ध्यान रखनी थी। अब अपन बात कर रहे हैं उसकी स्वस्थता और संक्रमण में कि क्या होना चाहिए कि स्वस्थता और संक्रमण का अच्छे से नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए पशुशाला की क्या है कि रोजाना सफाई होनी चाहिए, मच्छर मक्खियों के नियंत्रण के लिए चूना या कीटनाशकों की उचित मात्रा में छिड़काव कर देना चाहिए अपने को, पानी के नाले की नियमित रूप से अपने को सफाई कर देनी चाहिए, और जो चारा और पानी है उसकी भी अच्छे से देखभाल होनी चाहिए, यानी गीला सड़ा गला चारा उसका उपयोग अपने को पशुओं के लिए बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मौसम के अनुसार संतुलित आहार भी उसको देना चाहिए, साफ और ताजा पानी पशु को हमेशा पिलाना चाहिए। और एक और बात अपन ध्यान रखना चाहिए कि जो परजीवी है उनका नियंत्रण होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि जो अंदरूनी कीड़े हैं उनकी दवा जो वर्षा ऋतु के शुरुआत में ही दे देनी चाहिए जिसको अपन डिवर्मिंग बोलते हैं। एक है कि भारी परजीवी जैसे कि चीचड़ी टिक आदि को मारने के लिए जो दवा है उसका छिड़काव करना चाहिए पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार।
1: जी डॉक्टर साहब, बात करा आप डिवर्मिंग की, तो यो डिवर्मिंग कहीं है जो अपना पशु है बाने देनो चाहिए कि नहीं देनो चाहिए?
0: जी देखिए बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है कि डीवर्मिंग क्या है, ये देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई या पशुपालक भाई इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो देखिए डीवर्मिंग है क्या, पहले तो ये देखो, इसको बोलते हैं पेट के कीड़ों की दवा। यानी जो डीवर्मिंग है उसका तात्पर्य है कि जो पशुओं के पेट और उसके आंतों में रहने

0: जो परजीवी है जैसे कि गोलकर्मी हो गए, फीताकर्मी हो गए, फ्लूक हो गए आदि को मार के शरीर से बाहर निकालना, ताकि जो भी पोषण पशु ले रहा है उसका पूर्णतः उपयोग पशु खुद ही कर पाए। अन्यथा क्या होगा कि ये जो अंदरूनी कीड़े हैं वो पोषण के एक हिस्से का खुद उपयोग कर लेंगे, पशु पूर्णतया खुद के लिए उपयोग नहीं कर पाएगा उनको। और जब पूर्णतया पशु जो खाना पानी ले रहा है उसका खुद उपयोग नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, उसके दूध और मांस उत्पादन में भी वृद्धि नहीं हो पाएगी, और क्या होगा, पशु के खून की कमी होने लग जाएगी, पशु का प्रतिरक्षा तंत्र जो है या जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाएगी और उसके दस्त लगने लग जाएंगे बार बार। कुल मिला के क्या है कि धीरे धीरे पशु का स्वास्थ्य बिगड़ने लग जाएगा और पशु अस्वस्थ होने लग जाएगा। इससे सीधा आर्थिक नुकसान होगा किसान भाई को, क्योंकि जब दूध उत्पादन कम हो जाएगा तो वो सीधा का सीधा आर्थिक नुकसान पे जाता है। तो अपन क्या है कि अब ये कह सकते हैं कि जो प्रत्येक पशु है उसको हर 6 महीने में एक बार पेट के कीड़े की दवाई जरूर देनी चाहिए, और जो बछड़े छोटे बछड़े बछड़िया हैं उनको प्रत्येक 3 माह में एक बार देनी चाहिए। और इसकी डोज कितनी देनी चाहिए खुद के हिसाब से नहीं है, पशु चिकित्सक की परामर्श के अनुसार ही देना चाहिए, क्योंकि ये जो डिवर्मिंग की दवाई है कि बॉडी जो कितना वजन है शरीर का उसके अनुसार ही दी जाती है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि जो डिवर्मिंग है, डिवर्मिंग का मतलब हो गया कि आंतरिक कीड़ों से बिल्कुल छुटकारा मिलना, और यदि आंतरिक कीड़ों से सारा छुटकारा मिल गया तो पशु बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा, और स्वस्थ हो गया तो पशु का उत्पादन भी बहुत बढ़ जाएगा या बहुत अच्छा हो जाएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, तो पशुपालक भाई बहन जो आपने सुन रहे हैं, तो डिवर्मिंग कहीं अपना पशु ना आपने देना चाहिए कितना समय का अंतराल में, तो सारा ध्यान रखो, और बहुत बढ़िया जानकारी डॉक्टर साहब आपने दे रहा है। डॉक्टर साहब, टीकाकरण की जरा आप बात बताया, सावचेती बताया और कद कद लगवाना चाहिए यह आप बताया, तो आप लंपी स्किन रोग का बारे में भी बताया, और आप गेल का दिना की बात करा, तो लंपी स्किन जो रोग है वो आपना पशु में इतना फैल गया हो कि एक तरीके से महामारी का रूप में आप ये रोग ने देखा। तो सर, अब वर्तमान की अगर आप बात करा तो एकाध जो मामला है लंपी स्किन का वे आपने देख पाने मिल रहा है
0: जी।
1: तो वे कौन कौन सी सावचेती है जो आप रखा या के बचाव करा ताकि यो जो लंपी स्किन रोग है वर्तमान समय में वापस अपनो प्रकोप नहीं फैला सके या पशुओं में वापस यू नहीं फैल सके।
0: कि देखो, पहले तो लंपी स्किन रोग है क्या, ये लंपी स्किन रोग एक वायरस जनित रोग है जो कि मुख्य रूप से गाय और भैंस में फैलता है। ये रोग मुख्य रूप से पशुओं की त्वचा को प्रभावित करता है, और साथ ही साथ ये जो पशुओं में लिम्फ नोड होते हैं और आंतरिक जो अंग होते हैं उनको भी एक हद तक प्रभावित करता है। ये रोग मुख्य रूप से मच्छर, मक्खी, जू आदि के द्वारा फैलता है, साथ ही संक्रमित पशु के संपर्क में आने से तथा दूषित चारे व पानी के सेवन से भी फैल सकता है। तो ये जब किसान, ये जब रोग होता है तो किसान भाई इसको पहचानेंगे कैसे, तो इसके कुछ लक्षण है, जैसे कि 104 डिग्री फारेनहाइट से ज्यादा का बुखार आता है गाय या भैंस को, त्वचा पर छोटी छोटी बहुत सारी गांठें बन जाती है, और एक

0: गांठें बन जाती है और एक समय के बाद ये गांठें फूटने लग जाती है और इस समय वर्षा ऋतु में ये मक्खियों का प्रकोप ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये मक्खियां वहां बैठ के अंडे दे देती है और वहां पे फिर कीड़े पड़ने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और इसमें क्या है कि नाक और मुंह से पानी गिरना शुरू हो जाता है, गाय भैंस के आंखों से भी पानी आता है, दूध के उत्पादन में भारी गिरावट होती है, यानी जो दूध यदि कोई गाय या भैंस से 4 लीटर दूध दे रही है तो 2 लीटर से भी नीचे तक आ जाएगी। और उसमें क्या होता है कि भूख लगना बंद हो जाती है जानवर को। तो इसके बचाव के लिए किसान भाइयों को क्या करना चाहिए? इसके बचाव के लिए पहले तो टीकाकरण सबसे महत्वपूर्ण या प्रभावी तरीका है, बचाव में साबित हो सकता है। इसमें क्या है कि हर 6 माह की उम्र से ऊपर की जो भी पशु है उन सभी पशुओं को टीका लगवा देना चाहिए। मच्छर मक्खियां है उनका नियंत्रण होना चाहिए ताकि एक जानवर से दूसरे जानवर तक वो बीमारी पहुंच नहीं पाए। संक्रमित पशु को अलग ही रखना चाहिए ताकि जो स्वस्थ पशु है उसमें उस बीमारी का जो वायरस है वो नहीं पहुंच पाए। और यदि कुछ तरह के लक्षण दिखते हैं तो पशु चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए बिना किसी देरी के।
1: वर्षा ऋतु में पशुओं का टीकाकरण, ई महत्वपूर्ण विषय माथे आपने जानकारी दिया। डॉक्टर श्री राम करीर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर PGIVER जयपुर में आप पदस्थापित हो। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो तक आया और पशुपालक भाई बहना ने, श्रोतावा ने और करसा भाई बहना ने इतनी महती जानकारी आप दिया, एक ताई आप रो घना मानसू, धन्यवाद सा।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है, ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी EMI गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान EMI के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
4: इतनी बढ़िया जानकारी दिलावा के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद और धन्यवाद री भेट स्वरूप सुना चाहिए मीठो सो गीत।

0: प्रिया सैनी की मीठी सी आवाज के सागर सागर खेती बाड़ी कार्यक्रम को समय पूरा होते जा रहे हो तो देव अदिति ने
1: और विशाल ने आज्ञा
0: चाला और करा राम राम सा।

1.51 मीटर यानी 603 किलो हर्ट्ज और एफएम बैंड 101.2 मेगा हर्ट्ज पर। शाम के 8 बज रहे हैं और अब श्रोताओं के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

फिल्म संगीत का पहला गीत आवाजें हैं लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की, बोल राजा महेंद्रलाल कहानका और संगीत मदन मोहन का।

0: मेरे कब खुशी भूलना आज
1: फिल्म वो कौन थी से सुना आपने ये गीत।
2: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
3: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मनापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
2: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मनापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
1: फिल्म संगीत कार्यक्रम का अगला गीत सुनिए, आराधना फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, बोल आनंद बख्शी की और संगीत है एसडी बर्मन का।

0: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
1: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग

0: बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मणप्पुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
2: फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए, ब्लैकमेल फिल्म सी। आवाज है किशोर कुमार की, संगीत कल्याण जी आनंद का और बोल है राजेंद्र कृष्णन की।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए, ये वादा रहा फिल्म सी, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, संगीत आरडी बर्मन का और बोल गुलशन बावरा की।

0: फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर की आमेर चैनल से।
1: फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी बिना बताए आ सकती है। ऐसे वक्त में एक स्मार्ट डिसीजन हर मुश्किल को आसानी से पार करने में मदद करता है।
2: स्मार्ट डिसीजन लेने वालों के लिए मन्नापुरम फाइनेंस लेकर आया है इजी ईएमआई गोल्ड लोन स्कीम, जहां आप हर महीने आसान ईएमआई के थ्रू इंटरेस्ट पे कर सकते हैं और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बना सकते हैं और भी स्मार्ट।
1: ज्यादा जानकारी के लिए अपनी नियरेस्ट मन्नापुरम फाइनेंस ब्रांच पर विजिट करें या टोल फ्री नंबर 1-800-420-2233 पर कॉल करें।
0: फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए साजन फिल्म से एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज में, बोल समीर के, संगीत नदीम श्रवण का।

फिल्म संगीत का अगला गीत सुनिए, कयामत से कयामत तक फिल्म से, आवाज उदित नारायण की, बोल मजरूह की और संगीत आनंद मिलिंद का।

इसी गीत के साथ फिल्म संगीत का हमारा ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। रात के 8:30 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में सुनिएगा कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन, इसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।

नमस्कार। स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम

0: का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नजर स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। पीवी सिंधु ने जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में जगह बनाई। हॉकी इंडिया ने आगामी हॉकी विश्व कप के लिए भारतीय महिला टीम की घोषणा की। सलीमा टेटे को टीम की कमान सौंपी। हंसिका लांबा ने बुडापेस्ट रेसलिंग सीरीज में रजत पदक जीता। नेहा और मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, केंद्र सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स में युवाओं को हर सुविधा प्रदान करेगी। इंग्लैंड ने दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत को 4 विकेट से हराया, श्रृंखला 1-1 से बराबर की। और फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने इंडोनेशिया को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से, जहां अनुभवी खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: भारत की स्टार शटलर पीवी सिंधु ने जापान ओपन सुपर 750 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में सिंधु का मुकाबला नोजोमी ओकुहारा से होना था, लेकिन वह चोट के कारण मैच में हिस्सा नहीं ले सकी। ये इस सीजन में सिंधु का 30वां सेमीफाइनल है। इससे पहले वे मलेशिया सुपर 1000 और ऑस्ट्रेलिया सुपर 500 के सेमीफाइनल में पहुंची थी। इसके साथ ही 2023 डेनमार्क ओपन के बाद ये उनका पहला सुपर 750 सेमीफाइनल है। 31 वर्षीय खिलाड़ी पीवी सिंधु की निगाहें इस सीजन का पहला खिताब जीतने पर होगी। सेमीफाइनल मुकाबले में उनका सामना टोक्यो ओलंपिक चैंपियन और विश्व की चौथी नंबर खिलाड़ी चीन की चेन युफई से होगा। सिंधु और चेन युफई के बीच अब तक कड़ा मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु उनसे 6-8 से पीछे हैं। सिंधु को युफई के खिलाफ पिछले 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। सेमीफाइनल में जीत न केवल सिंधु के हारने के इस सिलसिले को खत्म करेगी, बल्कि लगभग 3 साल में उनके पहले सुपर 750 फाइनल में पहुंचने का रास्ता भी साफ होगा। अब भारतीय प्रशंसकों की निगाहें 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु पर ही टिकी होंगी, क्योंकि इस प्रतियोगिता में सिंधु अब भारत की एकमात्र दावेदार हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन।
0: हालांकि हेड टू हेड रिकॉर्ड में सिंधु 6-8 से पीछे हैं, लेकिन कल भारतीय प्रशंसकों की निगाहें सिंधु के अच्छे खेल प्रदर्शन पर होंगी और उम्मीद करें कि वो फाइनल का टिकट अपना पक्का कर लें। और अब बात करते हैं हॉकी पर। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। सुनते हैं किन खिलाड़ियों को टीम में शामिल किया गया।
2: बेंगलुरु में नेशनल कैंप में ट्रेनिंग कर रही इस महिला टीम में अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा खिलाड़ियों का संगम है। इन युवा खिलाड़ियों ने हाल के इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में सभी को प्रभावित किया है। खासकर पिछले महीने न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में टीम का प्रदर्शन दमदार रहा था और भारत ने बिना कोई मैच हारे खिताब पर कब्जा जमाया था। विश्व कप के लिए टीम में सविता और विचू देवी खारीबम को गोलकीपर के तौर पर शामिल किया गया है, जबकि डिफेंस यूनिट में इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, लालथंत लुंग, ज्योति और शिल्पी डबास शामिल हैं। मिडफील्ड में कप्तान सलीमा के साथ निक्की प्रधान, साक्षी राणा, सुनेलिता टोप्पू, नेहा और दीपिका सोरेंग को रखा गया है। वहीं फॉरवर्ड लाइन में लाल रेमसियामी, ऋतुजा दादासु पिसल, नवनीत कौर, दीपिका, ईशिका, बलजीत कौर और ब्यूटी डुंगडुंग को जगह दी गई है। विश्व कप के लिए चुनी गई टीम को लेकर कोच मारिजाने ने कहा कि हमने खिलाड़ियों का एक संतुलित ग्रुप चुना है। टीम ने टूर्नामेंट से पहले कड़ी मेहनत की है और हमें इस ग्रुप की काबिलियत पर पूरा भरोसा है। हम दुनिया की बेहतरीन टीमों के खिलाफ खेलने और सबसे बड़े मंच पर शानदार प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित हैं। भारतीय कोच ने कहा कि ये विश्व कप आगामी प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारियों के लिए बेहद अहम है।
3: I take it as a preparation and I think I said we are going to the World Cup to perform and the performance will help us to be at our best at the Asian Games because at the end we will want to win the Asian Games for the qualification. So it's not just won the World Cup will, the information from the World Cup will help us in at the Asian Games. But yeah, performing a vote would be great.
2: भारतीय टीम को चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका के साथ पूल डी में रखा गया है. टीम अपने सभी पूल स्टेज मैच नीदरलैंड्स के एम्स्टेलवीन में वागेनर हॉकी स्टेडियम में खेलेगी. भारतीय टीम अपने अभियान की शुरुआत 16 अगस्त को चीन के खिलाफ करेगी. इसके बाद 18 अगस्त को साउथ अफ्रीका और 20 अगस्त को इंग्लैंड के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करेगी. विशाल शर्मा.

0: स्पोर्ट्स कैस्ट।
1: भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड में हुए FIH नेशंस कप में दमदार प्रदर्शन किया था और भारतीय प्रशंसकों को अब उम्मीद होगी कि भारत इस विश्व कप में अच्छा प्रदर्शन करे ताकि अंतर्राष्ट्रीय आगामी टूर्नामेंट्स में भी उनकी मजबूत दावेदारी पेश होते रहे। अब सीधे चलते हैं बॉक्सिंग कुश्ती रिंग की ओर। बुडापेस्ट में भारतीय महिला पहलवान हंसिका लांबा ने पोलियाक इमरे वर्गा जानूस और कोजमा इस्तवान मेमोरियल 2026 रेसलिंग टूर्नामेंट में रजत पदक जीता। इस प्रतियोगिता को बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज भी कहा जाता है। 59 किलोग्राम महिला वर्ग में नेहा और 62 किलोग्राम वर्ग में मानसी स्वर्ण पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगी। साथ ही इसी भार वर्ग में सविता भी कांस्य पदक के लिए अपनी दावेदारी पेश करेंगी। एक रिपोर्ट।
2: बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में महिलाओं के 55 किलोग्राम स्पर्धा में हंसिका लांबा ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता। 19 वर्षीय हंसिका को महिलाओं की फ्री स्टाइल कैटेगरी के फाइनल में यूक्रेन की नतालिया क्लियुचुत्स्का से 5-0 से हार का सामना करना पड़ा। हंसिका लांबा ने क्वार्टर फाइनल में तुर्की की तूबा डेमिर को 8-4 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की और फिर सेमीफाइनल में पिछड़ने के बाद जर्मनी की अनास्तासिया ब्लेवास को 10-7 से हराया। महिलाओं के 50 किलोग्राम वर्ग में भारत के प्रियांशी प्रजापत कांस्य पदक जीतने से बस एक जीत दूर रह गई। पुरुषों के 125 किलोग्राम वर्ग में रजत रोहल ने कांस्य पदक जीता। उन्हें यह पदक तब मिला जब उनके प्रतिद्वंदी अमेरिका के मेसन पेरिस ने चोट के कारण भारतीय रेसलर को वॉकओवर दे दिया। रजत क्वार्टर फाइनल में पोलैंड के कामिल कोसियोलेक से हार गए थे, लेकिन रेपेशाज राउंड में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के ग्वानु किम को 8-4 से हराकर पदक मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में भारत के पदकों की संख्या अब 5 हो गई है। गुरुवार को मिले 2 पदकों के अलावा ओलंपिक मेडलिस्ट अमन सहरावत ने बुधवार को पुरुषों के 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता, जबकि दीपक ने 61 और विशाल कालिरमाना ने 65 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीते। वर्ल्ड चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता अंतिम पंघाल कल महिलाओं के 53 किलोग्राम डिवीजन में मुकाबला करेंगी। जया भारती, स्पोर्ट्स कैंप।
1: भारतीय पहलवानों ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है और अब सबकी निगाहें नेहा, मानसी, सविता और अंतिम पंघाल पर होंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जालंधर में विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
3: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट्स इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वर्ष 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करेगा। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी भारत पूरी तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी आयोजित की जाएंगी।
3: साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स को होस्ट करने वाला है। 2036 में ओलंपिक गेम्स भारत में हो, इसके लिए भी हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हर खिलाड़ी को जोरदार तैयारी करनी है, पूरा दमखम लगाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि डबल इंजन की बीजेपी सरकार आपको हर सुविधा देगी। आने वाले समय में अहमदाबाद में वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स भी होने वाली है। आप इसके लिए भी खूब तैयारी कीजिए। मुझे पक्का विश्वास है हरियाणा के बेटे बेटियां हमेशा की तरह इनमें भी अपना परचम लहराएंगे।
1: अब सीधे चलते हैं बास्केटबॉल कोर्ट की ओर, जहां भारतीय महिला टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन कर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। फीबा बास्केटबॉल अंडर 18 महिला एशिया कप में भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में भारत ने इंडोनेशिया को 79-46 से हराकर ग्रुप ए में शीर्ष स्थान हासिल किया। भारत का सेमीफाइनल मुकाबला कल थाईलैंड के बैंकॉक में खेला जाएगा। भारत ने इस प्रतियोगिता में थाईलैंड और ओमान को हराकर दमदार प्रदर्शन किया है। भारतीय टीम ने अपने ओपनिंग मुकाबले में थाईलैंड को 106-62 से और दूसरे मैच में ओमान को 99-17 से हराया था। अब सीधे रुख कर लेते हैं क्रिकेट के मैदान की ओर। कार्डिफ में खेले

0: के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर कर ली है। दिग्गज बल्लेबाज जो रूट को नाबाद 99 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
1: पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने सदी हुई शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने रोहित शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 44 रन की साझेदारी की। गिल 31 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन जोड़े। रोहित ने टीम के खाते में 26 रन का योगदान दिया। 111 के स्कोर पर ईशान किशन के रूप में 3रा विकेट गिरा। इसके बाद श्रेयस अय्यर ने विराट कोहली के साथ 4थे विकेट के लिए 67 रन की साझेदारी करते हुए टीम का स्कोर 178 रन तक पहुँचाया। लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया। कोहली ने 66 गेंद में 8 चौकों के साथ 65 रन की पारी खेली, जबकि अय्यर 71 गेंद में 7 चौकों के साथ 66 रन बनाकर आउट हुए। जसप्रीत बुमराह ने 13 गेंद में नाबाद 20 रन बनाए। भारतीय पारी 44 ओवर में केवल 233 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से जोफ्रा आर्चर और गस एटकिंसन ने 3-3 विकेट लिए। 234 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत निराशाजनक रही। बेन डकेट पहली ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह का शिकार बने। इसके बाद जैकब बेथेल भी जल्दी ही पवेलियन लौट गए। इसके बाद जो रूट ने मोर्चा संभाला। रूट ने विल जैक्स के साथ 6थे विकेट के लिए 72 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया। रूट ने गस एटकिंसन के साथ 7वीं विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 45वें ओवर में आसान जीत दिलाई। मैच के बाद जो रूट ने कहा कि हम लगातार एक दिवसीय प्रारूप में बेहतर खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं।
2: In Sri Lanka, you know, the first team to win there for 4 years, and similarly to that series, we lost the first game, learned lessons, and evolved and got better and adapted. And that's exactly what we did again today. The challenge is, can we do it at Lords when the pressure's on against another, again, a brilliant team, the number one ranked team in the world? For us to stand up and play like that, I think shows where we are, and it's a good benchmark for us. So, you know, let's back it up again at Lords, and then I think there's a very different look to or perception to where this team is.
1: भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि मध्य क्रम में लगातार विकेट गिरना हार का कारण बना।
3: Quite disappointing, to be honest. You know, we thought 300-310 would be a good total after 25 overs. We were at a good position, but you know, we lost too many wickets in the middle overs. We know our tail enders are not the best batsmen, but I think we expected a bit more from our lower mid order, and we were not able to capitalize on the start that we got. But hopefully, you know, the next time we get there, we'll try to build some small partnerships and take it on from there.
1: श्रृंखला का अंतिम और निर्णायक मैच 19 जुलाई को लंदन के लॉर्ड्स में खेला जाएगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: बुलावायो में दूसरे T20 क्रिकेट मुकाबले में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 186 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 152 रन पर ही सिमट गई। 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 से बराबर है। पहले मुकाबले में जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को 32 रन से हराया था। उधर मध्य प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश ने सारंग ने कल भारतीय महिला क्रिकेट टीम की इंग्लैंड पर लॉर्ड्स में ऐतिहासिक जीत में अहम भूमिका निभाने वाली तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को सम्मानित किया। मध्य प्रदेश की रहने वाली क्रांति गौड़ ने टेस्ट मैच में कुल 7 विकेट लेकर भारत की 270 रन की शानदार जीत में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगियों की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, आप sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
4: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और

0: अफसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की तीन देशों की यात्रा पर रवाना होंगी। नीति आयोग ने निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया, गुजरात शीर्ष पर, इसके बाद महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनः विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअली रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें SAS नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
1: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा NDA सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
0: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में विफल रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है।
1: साथियों, केंद्र सरकार अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही है कि पंजाब की जनता को केंद्र की हर स्कीम का लाभ मिले, लेकिन कट्टर बेईमान पार्टी की सरकार में यहाँ लूट का खुला खेल चल रहा है। बीते 12 वर्षों में केंद्र से पंजाब को लाखों करोड़ रुपए भेजे गए। इस पैसे से गांव के रास्ते बनते, नहरें बनती, मंडियां बनती, लेकिन पंजाब सरकार ने उस पैसे को सही जगह खर्च नहीं किया।
0: श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
1: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आज स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार पंजाब में रेलवे की कई बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रही है।
2: आज पंजाब में करीब 30,000 करोड़ रुपए के रेलवे के काम चल रहे हैं। 1,800 करोड़ रुपए की लागत से 30 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। अब तक जालंधर कैंट, आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और मोहाली स्टेशन का उद्घाटन हो चुका है। 12 वंदे भारत सर्विसेज चल रही है, 4 अमृत भारत सर्विसेज चल रही है और पंजाब में पूरा 100% इलेक्ट्रीफाई कर दिया है रेलवे के नेटवर्क को।
0: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने PGI चंडीगढ़ में PM आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों

0: अनेक गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने कहा कि चंडीगढ़ के विकास का लाभ हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लोगों तक भी पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री ने चंडीगढ़ को नियोजित शहरी विकास का एक मानक बताया।
1: चंडीगढ़ एक ऐसा शहर है जहां एजुकेशन, इंजीनियरिंग, मेडिकल साइंस और रिसर्च से जुड़े बड़े संस्थान एक साथ मौजूद है। बहुत कम शहरों के पास ऐसा सामर्थ्य होता है। आने वाले समय में यही संस्थान नई टेक्नोलॉजी, हेल्थ केयर, स्टार्टअप्स और इनोवेशन के बड़े केंद्र बन सकते हैं। आज एजुकेशन से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं भी इस यात्रा को नई गति दे रही है।
0: हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। इससे पहले आज मंत्रियों के समूह की बैठक नई दिल्ली में हुई। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, राजीव रंजन सिंह, के राममोहन नायडू और किरेन रिजिजू बैठक में उपस्थित थे। इस दौरान आगामी संसदीय सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। संसद का मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है।
2: ये राजकीय यात्राएं मोल्दोवा गणराज्य, उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य और रोमानिया के राष्ट्रपतियों के निमंत्रण पर की जा रही हैं। तीन देशों की ये यात्रा ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा गणराज्य और उत्तरी मैसेडोनिया गणराज्य की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। रोमानिया की यात्रा 3 दशकों से भी ज्यादा समय में किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली राजकीय यात्रा होगी।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य प्रत्येक गांव और हर पात्र नागरिक तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना है। आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले के नरसाराव पेटा में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री वर्ष 2014 से ही हर गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं ताकि किसानों, कृषि और हथकरघा श्रमिकों तथा अन्य व्यवसाय से जुड़े लोगों को संस्थागत बैंकिंग सुविधाएं मिल सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने आज कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सफर संगठित स्वैच्छिक कार्यों की शक्ति और निस्वार्थ सेवा के चिरस्थायी मूल्यों का प्रमाण है। नई दिल्ली में श्याम जाजू और अनुपम त्रिवेदी की पुस्तक आरएसएस 800 सेवा एकता और बलिदान की एक शताब्दी का विमोचन करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निस्वार्थ सेवा और राष्ट्र निर्माण के माध्यम से एकता और राष्ट्रीय चेतना के आदर्शों को मजबूत किया है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आरएसएस ने हर प्रतिकूल परिस्थिति में राष्ट्रीय हितों, सेवा और लोकतंत्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना बन गई है। इस योजना के अंतर्गत देशभर में 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक के कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पश्चिम बंगाल के कर्ण सुबर्ण रेलवे स्टेशन के पास आज स्कूल वैन और यात्री रेलगाड़ी की टक्कर में 2 स्कूली बच्चों सहित 3 लोगों की मौत हो गई। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दुर्घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। पूर्वी रेलवे ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच समिति गठित करने का आदेश दिया है। कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न की रोकथाम निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर राष्ट्रीय महिला आयोग का दो दिन का राष्ट्रीय जागरूकता कार्यक्रम आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस अवसर पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिला नेतृत्व वाले विकास के दृष्टिकोण

को साकार करने के लिए सुरक्षित, गरिमापूर्ण और समावेशी कार्यस्थल सुनिश्चित करना आवश्यक है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। इसके बाद महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गोवा और ओडिशा भी शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। इसमें वर्ष 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का

0: निवेश आकर्षित करने की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति वाले राज्यों का उल्लेख है। समुद्री प्रशासन महानिदेशालय ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक होर्मुज जलडमरू मध्य से होकर गुजरने वाले जहाजों पर भारतीय नाविकों की तैनाती न की जाए। इस संबंध में जहाज मालिकों, जहाज प्रबंधकों और भर्ती तथा नियुक्ति सेवा लाइसेंस प्राप्त कंपनियों के लिए नया परामर्श जारी किया गया है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
1: घरेलू शेयर बाजार के मुख्य सूचकांकों में आज 1% से अधिक की बढ़त देखी गई। सेंसेक्स 965 अंक ऊपर चढ़कर 78,151 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 262 अंक के उछाल के साथ 24,334 पर पहुंच गया। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 7 पैसे ऊपर आकर 96.28 रुपए पर बंद हुआ।
0: सरकार ने देश में खेलों के लिए कानूनी और संस्थागत ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ये अधिनियम खेलों में डोपिंग को रोकने, खिलाड़ियों के अधिकारों की रक्षा करने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत डोपिंग रोधी मानकों के अनुसार खेल प्रतियोगिताओं की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए एक व्यापक वैधानिक आधार प्रदान करता है। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट ऑलराउंडर गैरी सोबार्स का आज निधन हो गया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने का भी कारनामा अपने नाम किया। सर गारफील्ड सोबर्स ने वेस्टइंडीज के लिए 93 टेस्ट मैच में 8,032 रन और 235 विकेट लिए। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। ये प्रतियोगिता 15 से 30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड्स की संयुक्त मेजबानी में खेली जाएगी। पीवी सिंधु जापान ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिंधु को जापान की पूर्व विश्व चैंपियन नोजोमी ओकुहारा के क्वार्टर फाइनल से हटने के बाद वॉकओवर मिला। सेमीफाइनल में सिंधु का मुकाबला विश्व की चौथे नंबर की चीन की खिलाड़ी चेन युफई से होगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में रविवार तक तेज बारिश की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ से लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जींद से हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली रेलगाड़ी को रवाना किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार नागरिक देवो भव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रविवार से मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की 3 देशों की यात्रा पर होंगी। वेस्टइंडीज के महान क्रिकेट गैरी सोबर्स का निधन। और FIH महिला हॉकी विश्व कप के लिए सलीमा टेटे के नेतृत्व में भारतीय टीम की घोषणा। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम आपके लिए में सभी सुनने वालों को सलमा का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, कार्यक्रम का पहला गीत हम लाए हैं आपके लिए कानन देवी की आवाज में। गीतकार हैं पंडित मधुर, संगीतकार हैं कमल दास गुप्ता और फिल्म का नाम है जवाब।

आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में अगला गीत। शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में इस गीत को लिखा है शैलेंद्र ने। फिल्म का नाम है कन्हैया।

0: कल रात की तौबा।
1: सुन रहे हैं विविध भारती।
2: विविध भारती हर पल साथ हर पल खास।
1: बेचारा
3: भारत की आवाज, भारत का दिल, भारत का साथ।
2: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
3: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
2: सुनिए आपके पसंदीदा गाने, दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
4: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ, हृदयनाथ मंगेशकर, सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार, खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
3: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ।
2: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
3: विविध भारती, जो हर पल है आपके पास।
5: साथियों, कार्यक्रम का अगला गीत है तलत महमूद की आवाज में। नगमा निगार है मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है सुजाता।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए सुनते हैं गायक और संगीतकार हेमंत कुमार की आवाज में अगला गीत। बोल है शकील बदायूनी के, फिल्म का नाम है 20 साल बाद।
3: जरा नजरों से

ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए चितलकर और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीत लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, संगीतकार है सी रामचंद्र, फिल्म का नाम है आजाद।

कार्यक्रम का अगला गीत है हेमंत कुमार की आवाज में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है सचिन देव बर्मन, फिल्म का नाम है जाल।

कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश है गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में। नगमा निगार है जानिसार अख्तर, संगीतकार है ओपी नैयर, फिल्म का नाम है छू मंतर।

लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत में एक नजर के लिए, नजर मिला के मोहब्बत

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: घुंघरू की तरह बजता ही रहा हूं।
2: किसने कहा है? किशोरदान एक लड़का आया है कलकत्ते से, गाना सुन लो उसका, अगर तुमको ठीक लगे तो गा ले।
0: संगीतकार रविंद्र जैन।
2: किशोरदा ने कहा मैं गाना नहीं सुनूंगा, उसको बोला रिकॉर्डिंग रख लेगा। 9 बजे किशोरदा आ गए सुबह सुबह, मुझे गाने का मुखड़ा सुना दे। पहले मैं कहता था, अब मेरे लिए कहते हैं लोग, ये वही है कि जो बजता रहा घुंघरू की तरह।
3: कभी इस पग में

नमस्कार। आज बातें एक ऐसी अदाकारा और गायिका की जिन्होंने अपने आगमन से ही फिल्मी दुनिया में मचा दी थी हलचल। उनकी आवाज के सभी थे इतने कायल कि हर गाना होता था सुपरहिट। पर उन्होंने फिल्मी दुनिया में तब कदम रखा था जब फिल्में होती थी बेआवाज। उन्होंने जीता दिल क्योंकि था उनका अलग ही अंदाज। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज बातें होंगी अभिनेत्री और गायिका कानन देवी की।

आनंद देवी एक अदाकारा और गायिका ही नहीं थी, बल्कि वो तो फिल्मी दुनिया में महिलाओं के लिए एक पहल बनकर आई, क्योंकि ये वो दौर था जब तथाकथित सभ्य समाज की महिलाओं का फिल्मी दुनिया में आना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाता था। कानन देवी आगे चलकर भी फिल्मी दुनिया में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने में अग्रणी रही और कई काम भी उन्होंने इसके लिए किए, लेकिन वो बातें बाद में। अभी पहले सुन लेते हैं कानन देवी की वो आवाज़ जिसने अपने नाम कर ली थी लाखों दिलों की।

नित्यानंद देवी ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत मात्र 10 साल की उम्र से ही कर ली। वो दौर मूक फिल्मों का था। मूक फिल्मों से आगे बढ़ते हुए उन्होंने बोलने वाली फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। वो बांग्ला की पहली स्टार कही जाती रही हैं। पहली फिल्म 1926 में आई, जिसका नाम था जयदेव। बोलने वाली फिल्मों के दौर में कानन देवी ऐसी अभिनेत्रियों में भी अग्रिम पंक्ति में आती हैं, जो पर्दे पर खुद के लिए गाया भी करती थी।

चार दशकों तक कानन देवी फिल्मी दुनिया में सक्रिय रही। मूक फिल्मों से उन्होंने बांग्ला फिल्मों की ओर अपने करियर को आगे बढ़ाया। वो कई बड़े निर्माता निर्देशकों के साथ फिल्में

करती रही। वो दौर ऐसा था जब अभिनेता अभिनेत्री फिल्म थिएटर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में काम किया करते थे, जिसमें उनका प्रति महीने का एक निश्चित वेतन तय किया जाता था और इसके बदले एक निश्चित समय के लिए अभिनेता अभिनेत्री उनके अलावा किसी और के साथ काम नहीं किया करते थे। इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कानन देवी ने उस समय कोलकाता के मशहूर फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर के साथ करार किया। इसके पहले और बाद में भी अन्य कई बैनर्स के साथ वो करार में रही, जैसे मदन थिएटर, ज्योति थिएटर, राधा थिएटर आदि। उन्हें इस दौर की अभिनेत्रियों से ज्यादा मेहनताना भी दिया जाता था, क्योंकि कानन देवी के अभिनय के साथ साथ उनके गीत सफलता के अलग पायदान छुआ करते।

यहाँ कानन देवी के सफलता के किस्से सुनकर हम उनके कायल हो रहे हैं, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उन्होंने सफलता के शिखर को छूने के लिए कड़ी मेहनत से काम लिया। 22 अप्रैल 1916 को पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जन्मी कानन देवी का बचपन कठिनाइयों से भरा था। पिता के व्यसन की आदत के कारण पहले गरीबी का सामना करना पड़ा और बाद में पिता के गुजर जाने के बाद नन्ही कानन देवी पर बचपन से ही माँ और स्वयं के जीवन यापन का बोझ भी आ गया। यहीं से शुरुआत हुई उनके अभिनय जीवन की।

0: छोटी सी उम्र से ही फिल्मी पर्दे पर मूक फिल्मों में काम की शुरुआत करने के कारण कानन देवी ने तो ठीक से पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। अपनी आत्मकथा में उन्होंने कई बातों का उल्लेख किया है, जिसमें उस दौर में फिल्मी दुनिया में आई महिलाओं की स्थिति पर भी उन्होंने प्रकाश डाला है। उन्होंने बेबाक अंदाज में अपने कई सह अभिनेताओं की असुरक्षा की भावना का भी उल्लेख किया है। कानन देवी उन पहली अभिनेत्रियों में से एक रही जिन्होंने हिट फिल्मों के फायदे में एक हिस्से की बात निर्माता निर्देशकों के सामने रखी। उनकी आत्मकथा शोबेर आमिनोमी यानी सभी को मेरा नमन से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अपनी बात रखने में निडर थी।
1: तुम बिना कल न आवे मोहे, तुम बिना कल न आवे कथा हो।

कानन देवी अपने अभिनय जीवन में एक लंबे समय तक बांग्ला फिल्मों में सक्रिय रहीं। उसके बाद उन्होंने हिंदी फिल्मी दुनिया का रुख किया। ये उनके जीवन का वो समय भी रहा जब उन्होंने खुद को हर करार से मुक्त करके अलग अलग निर्माता निर्देशकों की फिल्मों में काम करने का साहस किया। आगे चलकर

कानन देवी की कई फिल्में बांग्ला और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ बनी और दोनों ही इंडस्ट्री में हिट भी रही। उनके कुछ ऐसे ही फिल्मों में शामिल हैं विद्यापति, मुक्ति, स्ट्रीट सिंगर, लगन, सपेरा, जवाब और अनन्य। कानन बाला के नाम से फिल्मी करियर की शुरुआत करने के बाद धीरे धीरे उन्हें कानन देवी का नाम मिल गया और वो इसी नाम से मशहूर हैं। कानन देवी उस जमाने के तकरीबन सभी मशहूर सितारों के साथ फिल्मों में नजर आईं। इनमें नाम शामिल हैं कुंदनलाल सहगल, पंकज मलिक, पहाड़ी सान्याल, छवि बिस्वास, पृथ्वीराज कपूर के छोटे भाई त्रिलोक कपूर, अशोक कुमार और न्यू थिएटर के मालिक प्रथमेश चंद्र बरुआ, जिनके साथ उनकी कई फिल्में आईं।

कानन देवी संगीत से पहले ही जुड़ी हुई थीं और उनकी आवाज भी लोगों के दिलों तक पहुंचा करती थी। लेकिन उनके संगीत जीवन में एक मोड़ तब आया जब वो मिली संगीत के जादूगर रायचंद बोराल से। आरसी बोराल ने कानन देवी को हिंदी की बारीकियां भी सिखाई और उन्हें शास्त्रीय संगीत के साथ साथ पश्चिमी संगीत और भारतीय संगीत सीखने के लिए भी प्रेरित किया। कानन देवी ने उस्ताद अल्लाह रखा से संगीत की तालीम ली। उनकी आवाज में अब मधुरता के साथ साथ रियाज का जादू भी नजर आने लगा। बात जब कानन देवी के गायन की हो रही है तो यहाँ जवाब फिल्म में उनका गाया वो गीत याद आता है जिसने सफलता के सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए थे। तो चलिए सुनते हैं वो गीत।

आनंद देवी की आवाज में ये इकलौता ऐसा गीत नहीं है जिसे चाहने वालों ने रातों रात प्रसिद्ध कर दिया। उन्होंने ये काम इसके बाद भी कई बार किया। एक समय आया जब कानन देवी को अभिनय से अलग एक गायिका के रूप में सम्मान मिला और ये वो समय था जब मेगाफोन ग्रामोफोन ने एक गायिका के रूप में उन्हें रिकॉर्ड्स के लिए अनुबंधित किया। सफलता एक ओर लोगों के मन में घमंड भी ले आती है, लेकिन कानन देवी ऐसी नहीं थी। मौका मिला तो उन्होंने इसे जिम्मेदारी समझी और तैयारी के लिए उन्होंने भीमसेन चटर्जी और आनंदी दस्तीदार से संगीत की तालीम ली। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक समय ऐसा भी आया जब कानन देवी को उस दौर में उनके गीतों के रिकॉर्ड्स की बिक्री के कारण हर 3 महीने में रॉयल्टी के 25,000 रुपए मिलते थे।

कानन देवी एक ओर जहां लगातार सफलता हासिल कर रही थीं, वहीं वो फिल्मी दुनिया और समाज में महिलाओं की स्थिति पर भी लगातार विचार कर रही थीं। उन्होंने फिल्मी दुनिया में काम करने वाली वृद्ध अभिनेत्रियों के भरण पोषण के लिए महिला शिल्पी महल नामक संस्था की स्थापना की और उसे अपने खर्च पर लंबे समय तक चलाती रहीं। उन्होंने अपने काम में खुद को आगे बढ़ाने के लिए हिंदी के साथ साथ संस्कृत साहित्य की शिक्षा, संगीत की शिक्षा, अंग्रेजी सीखना, विदेश में जाकर फिल्मों से जुड़े कई विषयों की शिक्षा भी ली। ये बताता है कि वो केवल सफलता के पायदान ही नहीं चढ़ रही थीं, बल्कि अपने निजी उत्थान और खुद को तराशने की दिशा में भी काम कर रही थीं, जिसका असर भी पूरी तरह नजर आ रहा था।

0: आनंद देवी ने अपने जीवन में जब भी ये महसूस किया कि उनके साथ कोई अन्याय हुआ तो उन्होंने उस ओर कोई न कोई ऐसा निर्णय भी लिया जिससे आगे आने वाली अभिनेत्रियों के सामने एक मिसाल कायम हुई। जैसे कि उन्होंने जब फिल्मी दुनिया में अभिनेताओं के समान मेहनत आने की बात की तो उन्हें मना कर दिया गया। ये बात उन्हें नागवार गुजरी और उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपना काम करने की ठान ली। उनका ये कदम उनके सशक्त व्यक्तित्व को दर्शाता है।
1: वन में भी जो महके फूल रोग सुहाना ही हो।

अपनी खूबसूरती, अदाकारी और गीतों के लिए मशहूर कानन देवी ने फिल्मों में भी अलग अलग किरदार निभाए। उस जमाने में प्रचलित घरेलू और बेचारी महिला का किरदार उन्होंने जितनी आसानी से निभाया, उतनी ही सरलता से वो एक मॉडर्न और सशक्त विचारों वाली महिला के किरदारों में भी ढली। पर्दे पर उनके किरदार महिलाओं के लिए भी एक मिसाल बनकर सामने आया करते। वो निजी जीवन में भी इसी तरह सशक्त, प्रगतिशील विचारों का आईना बनकर सामने आती।

कानन देवी की प्रसिद्धि का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जब 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली तो लंदन के हाई कमीशन में इस समारोह में मुख्य अतिथियों में से एक बनकर वो शामिल हुई। उनके गीत और भाषण इस समारोह में भारतीय गर्व को बढ़ा रहे थे। कानन देवी एक बहुचर्चित सोप कंपनी के विज्ञापन में भी ली गई, जिसे आज तक केवल चर्चित अभिनेत्रियों को शामिल करने के लिए जाना जाता है।

नंदन देवी को फिल्मी दुनिया में उनके योगदान के लिए 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1976 में उन्हें फिल्मी दुनिया के प्रसिद्ध पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा भी समय समय पर वो कई सम्मान पाती रहीं। कानन देवी 17 जुलाई 1992 को इस दुनिया से रुखसत हो गईं और अपने पीछे छोड़ गईं अपनी बहुमूल्य विरासत और सशक्त सोच।

0: आज के फनकार। ये कार्यक्रम आज केंद्रित था अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री और गायिका कानन देवी पर। शोध, आलेख और स्वर नेहा शर्मा का। कार्यक्रम का संपादन सौरव घारू। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुंह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त।

0: तो जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक सात नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया, तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। रात्रि के 10 बजे हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं गाते गुनगुनाते सदाबहार नगमों के सफर पर।

गीतों के सफर का आगाज किया है मखदूम के लिखे इस गीत के साथ, इसको मौसीकी से सजाया है खयाम ने। आवाज है लता मंगेशकर और तलत अजीज की, फिल्म बाजार।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म बाजार से लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म मेरे हम सफर से, आवाज लता मंगेशकर और मुकेश की। गीत में बोल हैं आनंद दोषी के, धुन कल्याण जी आनंद जी की।

मस्ती में गाए दिल को।

ये गीत सुन रहे थे आप लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में फिल्म आरोप से। गीत में बोलते हैं आनंद बख्शी के, धुन थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म घर से। आवाज को गीत में बोल हैं गुलजार के, धुन आर डी बर्मन की।

हृदयनाथ मंगेशकर के संगीत से सजाए गीत आप सुन रहे थे फिल्म लेकिन से लता मंगेशकर की आवाज में। गीत में बोल थे गुलजार के। आइए राजा मेहदी अली खान का लिखा हुआ अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म वो कौन थी से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत में संगीत है मदन मोहन का।

ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म महबूबा से लता मंगेशकर की आवाज में। आइए अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। गीत में बोल हैं मजरू सुल्तानपुरी के धुन आर डी बर्मन की और फिल्म है मेला।

0: दोस्तों आकाशवाणी बांसवाड़ा का FM माहिर चैनल सुनने के लिए अब आपको कहीं जाने की दरकार नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकते हो आकाशवाणी बांसवाड़ा का अपना FM माहिर चैनल। आपको करना बस इतना सा है, अपने मोबाइल फोन में प्ले स्टोर में जाइए, टाइप कीजिए न्यूज ऑन AIR बिना किसी स्पेस के, NEWSONAIR न्यूज ऑन AIR। आप जैसे ही टाइप करेंगे यही है वो ऐप जिसके जरिए आप सुन सकते हैं आकाशवाणी बांसवाड़ा का माई चैनल। याद रखिएगा, प्ले स्टोर में जाकर आपको सर्च करना है न्यूज ऑन AIR। हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। नमस्कार।
1: आइए अब आपको सुनवाते हैं आज के कार्यक्रम फिल्म संगीत का अंतिम गीत लता मंगेशकर की आवाज में। फिल्म है रेशमा और शेरा।

0: बालकवि बैरागी का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे जयदेव के संगीत में। आवाज लता मंगेशकर की फिल्म थी रेशमा और शेरा। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11 बजने को हैं। आइए अब आपको लेकर चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर, जहां से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।
1: नरेंद्र मोदी ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में लगभग 25,000 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने जलंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न रेल और सड़क अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। श्री मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जलंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का शुभारंभ किया। उन्होंने 20 राज्यों में स्थित पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल रूप से लोकार्पण भी किया। इनमें एसएएस नगर मोहाली रेलवे स्टेशन, श्री मुक्तसर साहिब रेलवे स्टेशन और श्री आनंदपुर साहिब रेलवे स्टेशन शामिल हैं। श्री मोदी ने संत रविदास एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। ये अमृतसर और वाराणसी को जोड़ने वाली पहली सीधी रेल सेवा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिक देवोभव की भावना के साथ सभी के जीवन को आसान बनाने और नए अवसरों के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब के विकास के लिए लगातार काम कर रही है।
2: आज भारत सरकार कनेक्टिविटी के, इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक ऐसे प्रोजेक्ट पर पंजाब में काम कर रही है। पंजाब में भाजपा सरकार नहीं है, लेकिन हमारा पंजाब विकसित हो इसके लिए केंद्र की भाजपा एनडीए सरकार कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है।
1: प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार केंद्र सरकार की निधियों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में नाकाम रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं को अपनी बताकर पेश कर रही है। श्री मोदी ने पंजाब के युवाओं से खेलों से जुड़ने की अपील की।
2: मैं पूरे पंजाब के युवा साथियों से कहना चाहता हूं, ये आपके लिए अवसरों का समय है। खेलो इंडिया स्पोर्ट पॉलिसी आपके लिए लाई गई है। आज भारत में नई स्पोर्ट इकोनॉमी विकसित की जा रही है। इस नई इकोनॉमी के केंद्र में जालंधर का स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है। मैं सभी युवाओं से कहूंगा, आप स्पोर्ट्स से जुड़िए, स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना परचम लहराइए। हमारी सरकार हर तरह से आपके साथ है।
1: इससे पहले चंडीगढ़ में श्री मोदी ने स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगभग 4,700 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने 500 करोड़ रुपए से

0: इलाके से निर्मित अत्याधुनिक मातृ और शिशु देखभाल केंद्र तथा 440 करोड़ रुपए की लागत से तैयार उन्नत तंत्रिका विज्ञान केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में पीएम आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के अंतर्गत 259 बिस्तरों वाले गहन चिकित्सा कक्ष की आधारशिला भी रखी। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने जींद रेलवे स्टेशन से सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना किया। श्री मोदी ने हरियाणा में 12,470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने 157 किलोमीटर लंबा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। सरकार ने संसद के मानसून सत्र से पहले रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर अगले महीने 13 अगस्त तक चलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 से 25 जुलाई तक तीन देशों मोल्दोवा, उत्तरी मैसेडोनिया और रोमानिया की राजकीय यात्रा पर रहेंगी। नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि ये यात्रा मध्य और पूर्वी यूरोप के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी को दर्शाती है। गुजरात निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 में देश के शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है। नीति आयोग ने आज नई दिल्ली में निवेश अनुकूलता सूचकांक 2026 जारी किया। हॉकी इंडिया ने आगामी महिला हॉकी विश्व कप के लिए 20 सदस्यीय भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। सलीमा टेटे टीम की कप्तान होंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। हमारी अगली सभा कल सुबह प्रातः 5:51 पर आरंभ होगी। तब तक आज्ञा दीजिए रेडियो शोभना परवीन को। शुभ रात्रि, शुभ खैर, जय हिंद।